मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, वेव्स ओटीटी और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 19वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 10 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार होंगे जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्य घर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली

0: बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें लोबिया की खेती इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम लोबिया की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी खेती के लिए दोमट मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है। खेत पूरी तरह से समतल होना चाहिए ताकि खेत में एक समान नमी मौजूद रहे। मिट्टी में जल निकास की भी व्यवस्था होना ज़रूरी है, क्योंकि खेत में पानी लग जाने से एक तो अंकुरण सही ढंग से नहीं हो पाता है और दूसरे यदि जमा हो भी जाता है तो ज़्यादा नमी की स्थिति में फसल की बढ़वार भी सुचारू रूप से नहीं हो पाती। खेत का सही चुनाव करने के बाद उसकी एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके 2 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए। बगैर उर्वरकों के प्रयोग के कोई भी खेत तैयार नहीं कहा जा सकता। अतः लोबिया की सफल खेती के लिए 10 से 15 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से तत्व के रूप में, यानी कि 25 किलोग्राम यूरिया एवं 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरक के रूप में देना चाहिए। इतना करने के बाद खेत तैयार हो जाता है और फिर काम शुरू होता है बुआई का। इसकी जो उन्नतशील प्रजातियाँ हैं उनमें प्रमुख हैं टाइप 5,269।

0: टाइप 2 और यूपीसी 4200, इनमें से जो भी प्रजाति मिल जाए लेकर के बुआई करें। एक हेक्टेयर में बुआई के लिए 30 किलोग्राम बीज लगता है। अगर दाने के लिए खेती करना है तो टाइप 2 प्रजाति लेना चाहिए। एक हेक्टेयर में बोने के लिए इसका 30 किलोग्राम बीज लगता है तथा इससे एक हेक्टेयर में 14 से 16 कुंटल दाना मिल जाता है। यह प्रजाति 130 से 135 दिन में तैयार हो जाती है। जब अच्छी प्रजाति का बीज उचित मात्रा में मिल जाए तो बोने से पहले इसको शोधित कर लेना चाहिए, पहले थीरम नामक रसायन से और फिर विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से। थीरम की 25 ग्राम मात्रा 10 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए आवश्यक होती है। किसी घड़े में बीज एवं आवश्यक दवा की मात्रा डालकर घड़े का मुंह किसी पॉलीथीन से बांधकर घड़े को अच्छी तरह से झकझोर देते हैं। ऐसा करने से दवा बीज पर अच्छी तरह लग जाती है। फिर राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित कर लेते हैं। 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट पर्याप्त होता है। इसके लिए आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल करके फिर इस घोल को बीज में अच्छी तरह से मिला करके और फिर बुआई करते हैं। दाना व हरी फलियां प्राप्त करने के लिए बीज की बुआई पंक्तियों में ही करनी चाहिए, यानी दाने वाली टाइप 2 प्रजाति की बुआई के लिए लाइन से लाइन की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर तथा टाइप 5269 जो कि फलियां प्राप्त करने के लिए होती है, इसकी बुआई के लिए लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अगर चारे अथवा हरी खाद के लिए लोबिया बोते हैं तो बुआई छिटक कर सकते हैं। बरसात में सिंचाई की आवश्यकता तो होती नहीं है, हाँ यदि सूखे की स्थिति हो तो एक या दो सिंचाई कर देनी चाहिए। बुआई के 20 से 25 दिन बाद यदि आवश्यक हो तो एक निकाई गुड़ाई भी कर देनी चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर लोबिया की खेती करनी चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें लोबिया की खेती विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

ज्योति वह अमूल्य उपहार है जो आप ही दे सकते हैं। दृष्टि के आनंद को बांटिए। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। जगत पालनहार है माँ, मुक्ति का धाम है माँ, हमारी भक्ति का आधार है माँ, सबकी रक्षा की अवतार है माँ।

भगवान शिव सौम्य एवं रुद्र दोनों ही रूपों के लिए जाने जाते हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए महादेव कहे जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। आज के कलाकार थे संजय तलवार, तुलसी कुमार और चंदू आत्मा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है गांधी चर्चा, बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। वाचन एवं प्रस्तुति है अरुण पांडे की।

गांधी चर्चा कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। आज सुनिए इसकी 137वीं कड़ी।

चंपारण की जांच का विवरण देने का अर्थ है चंपारण के किसानों का इतिहास देना। ऐसा विवरण इन प्रकरणों में नहीं दिया जा सकता। फिर चंपारण की जांच का अर्थ है अहिंसा और सत्य का एक बड़ा प्रयोग। इसके संबंध की जितनी बातें मुझे प्रति सप्ताह सूझती हैं उतनी देता रहता हूं। उसका विशेष विवरण तो पाठकों को बाबू राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित इस सत्याग्रह के इतिहास में और युग धर्म प्रेस द्वारा प्रकाशित उसके गुजराती अनुवाद में ही मिल सकता है। अब मैं इस प्रकरण के विषय पर आता हूं। यदि गोरख बाबू के घर रहकर ये जांच चलाई जाती तो उन्हें अपना घर खाली करना पड़ता। मोतिहारी में अभी लोग इतने निर्भय नहीं हुए थे कि मांगने पर कोई तुरंत अपना मकान किराए पर दे दे। किंतु चतुर ब्रिजकिशोर बाबू ने एक लंबे चौड़े अहाते वाला मकान किराए पर लिया और हम उसमें रहने गए। स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम बिल्कुल बिना पैसे के अपना काम चला सकें। आज तक की प्रथा सार्वजनिक काम के लिए जनता से धन प्राप्त करने की नहीं थी। ब्रजकिशोर बाबू का मंडल मुख्यतः वकीलों का मंडल था, अतः वे जरूरत पड़ने पर अपनी जेब से खर्च कर लेते थे और कुछ मित्रों से भी मांग लेते थे। उनकी भावना ये थी कि जो लोग स्वयं पैसे टके से सुखी हों वे लोगों से द्रव्य की भिक्षा क्यों मांगे। मेरा ये दृढ़ निश्चय था कि चंपारण की रेयस से एक कौड़ी भी न ली जाए। यदि ली जाती तो उसके गलत अर्थ लगाए जाते। ये भी निश्चय था कि इस जांच के लिए हिंदुस्तान में सार्वजनिक चंदा न किया जाए। वैसा करने पर यह जांच राष्ट्रीय और राजनीतिक रूप धारण कर लेती। बंबई के मित्रों ने 15,000 रुपये की मदद का तार भेजा। उनकी ये मदद सधन्यवाद अस्वीकार की गई। निश्चय ये हुआ कि ब्रजकिशोर बाबू का मंडल चंपारण के बाहर से लेकिन बिहार के ही खुशहाल लोगों से जितनी मदद ले सके ले, और कम पड़ने वाली रकम मैं डॉक्टर प्राण जीवन दास मेहता से प्राप्त कर लूं। डॉक्टर मेहता ने लिखा कि जितने रुपयों की जरूरत हो मंगा लीजिए। अतः द्रव्य के विषय में हम निश्चिंत हो गए। गरीबी से कम खर्च करते हुए लड़ाई चलानी थी, अतः अधिक द्रव्य की आवश्यकता पड़ने की संभावना नहीं थी। असल में पड़ी भी नहीं। मेरा ख्याल है कि कुल मिलाकर 2 या 3 हजार से अधिक खर्च नहीं हुआ था। जो द्रव्य इकट्ठा किया गया उसमें 500 या 1,000 रुपये बच गए थे, ऐसा मुझे याद है। शुरू शुरू के दिनों में हमारी रहन सहन विचित्र थी और मेरे लिए वो रोज के विनोद का विषय बन गई थी। वकील मंडल में हर एक का अपना एक रसोईया था और हर एक के लिए अलग रसोई बनती थी। वे रात 12 बजे तक भी भोजन करते थे। वे सब महाशय रहते तो मैं अपने खर्च से ही थे, परंतु मेरे लिए उनकी ये रहन सहन उपाधि रूप थी। मेरे और मेरे साथियों के बीच इतनी मजबूत प्रेम गांठ बंध गई थी कि हमने कभी गलत फहमी हो ही नहीं सकती थी हमारे बीच में। वे मेरे शब्द बाणों को प्रेम पूर्वक सहते थे। आखिर ये तय हुआ कि नौकरों को छुट्टी दे दी जाए, सब एक साथ भोजन करें और भोजन के नियमों का पालन करें। सब निरामिषाहारी नहीं थे और 2 रसोई घर चलाने में खर्च बढ़ता था, अतः निश्चय हुआ कि निरामिष भोजन ही बनाया जाए और 1 रसोई घर रखा जाए। भोजन भी सादा रखने का आग्रह था। इसमें खर्च की बहुत बचत हुई, काम करने की शक्ति बढ़ी और समय भी बचा। अधिक शक्ति की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि किसानों के दल अपनी कहानी लिखाने के लिए आने लगे थे। इससे मकान का अहाता और बगीचा सहज ही भर जाता था। मुझे दर्शनार्थियों से सुरक्षित रखने के लिए साथ ही

भारी प्रयत्न करते और विफल हो जाते। एक निश्चित समय पर मुझे दर्शन देने के लिए बाहर निकलने के सिवा कोई चारा न रह जाता था। कहानी लिखने वाले भी 5-7 बराबर बने ही रहते थे तो भी दिन के अंत में सबके बयान पूरे नहीं हो पाते थे। इतने सारे बयानों की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी बयान लेने से लोगों को संतोष होता और मुझे उनकी भावना का पता चलता था। कहानी लिखने वालों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता था, जैसे हर एक किसान से जिरह की जाए, जिरह में जो उखड़ जाए उनका बयान न लिया जाए, जिसकी बात भूल में ही यानी मूल में ही बेबुनियाद मालूम हो उसके बयान न लिखे जाएं। इस तरह नियमों के पालन में यद्यपि थोड़ा अधिक समय खर्च होता था, फिर भी बयान बहुत सच्चे और साबित हो सकने वाले मिलते थे। इन बयानों के लेने के समय खुफिया पुलिस का कोई न कोई अधिकारी हाजिर रहता ही था। इन अधिकारियों को आने से रोका जा सकता था, पर हमने शुरू से ही निश्चय कर लिया था कि उन्हें सिर्फ हम आने से नहीं रोकेंगे बल्कि उनके प्रति विनय का बर्ताव रखेंगे और दे सकने योग्य खबरें भी उन्हें देते रहेंगे। उनके सुनने और देखते ही सारे बयान लिखे जाते थे। इसका एक लाभ यह हुआ कि लोगों में अधिक निर्भयता आई। खुफिया पुलिस से लोग बहुत डरते थे, ऐसा करने से वो डर चला गया और उनकी आंखों के सामने दिए जाने वाले बयानों में अतिशयोक्ति का डर कम रहता था। इस डर से कि झूठ बोलने पर अधिकारी कहीं उन्हें फांद न ले, उन्हें सावधानी से बोलना पड़ता था। मैं निलहों को खिजाना नहीं चाहता था, बल्कि मुझे तो उन्हें विनय द्वारा जीतने का प्रयत्न करना था। इसलिए जिसके विरुद्ध विशेष शिकायतें आती उसे मैं पत्र लिखता और उससे मिलने का प्रयत्न भी करता था। निलहों के मंडल से भी मैं मिला था और रैयत की शिकायतें उनके सामने रखकर मैंने उनकी बातें भी सुन ली थीं। उनमें से कुछ मेरा तिरस्कार करते थे, कुछ उदासीन रहते थे और कोई कोई मेरे साथ सभ्यता और नम्रता का व्यवहार करते थे।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। वाचन एवं प्रस्तुति थी अरुण पांडे की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

अयोध्या में श्री राम के अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। संध्या समय हर्षित मन से महाराज दशरथ कैकेयी के महल में पहुंचे, किंतु वहां रानी के कोप भवन में होने का समाचार सुनते ही सहम गए। आशंका ने उनके पांव बांध लिए। जिनकी भुजाओं में इंद्र का बल है, राजे जिनका मुंह जोहते रहते हैं, वही राजा पत्नी के क्रोध की कल्पना करके सूख से गए। आशंकित अवस्था में वो रानी के पास पहुंचे, जो मोटे मलिन वस्त्र धारण कर भूमि पर लेटी थीं, आभूषण शरीर से उतार फेंके थे। राजा ने रानी से रूठने का

कारण पूछा। उसे रुष्ट करने वाले मनुष्य तो क्या देवताओं का भी विनाश कर देने का वचन देते हैं। अपना वचन निभाने के लिए श्री राम की सौगंध उठाते हैं। राजा के वचन तथा राम की सौगंध का विचार कर रानी उठकर गहने पहनने लगी, जैसे कोई वन्य कन्या मृग को देखकर उसके लिए फंदा तैयार करने लगी हो। राजा पुलकित हुए और अगले दिन राम को युवराज पद देने का शुभ समाचार सुनाया। यह सुनकर कैकई के कठोर हृदय में ऐसी टीस उठी जैसे किसी ने पका हुआ फोड़ा छू दिया हो।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज के कलाकार थे ए हरिहरन और साथी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर और दोपहर 12:45 पर आप सुनेंगे बांसुरी वादन। कलाकार होंगे डॉक्टर शनीश कुमार ग्यावाली। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 7:31 पर सुनिएगा अमरेंद्र मिश्रा का सितार वादन।

रात्रि 10 बजे सुनिएगा विज्ञान पत्रिका, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह की भेंट वार्ता, सौंदर्य प्रसाधनों के पीछे का विज्ञान। और इसी कार्यक्रम में डॉक्टर नीरू सिंह की वार्ता हम आपको सुनवाएंगे। विषय होगा भविष्य के ईंधन। गैर फिल्मी गीत एवं गजल के कार्यक्रम अंजुमन का समय होगा रात्रि 9:30। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे एवं दोपहर 12:30 पर कलाकार होंगी प्रिया गुप्ता। सुबह 9:50 पर और दिन 1:45 पर लोक संगीत में कलाकार होंगे शिवापति मिश्रा। इनके गाए लोकगीत का आनंद आप कृषि जगत कार्यक्रम में भी ले सकते हैं। समय होगा शाम 6:30। कृषि जगत कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे धान के फसल में लगने वाले प्रमुख कीट एवं उनका प्रबंधन, इस विषय पर बातचीत। युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे शाम 5:15 पर, जिसमें आज के आकर्षण होंगे आज की बात, सिने दर्पण, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। दिन 1:15 पर बहनें सुनेंगी कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, जिसमें चर्चा और गीत संगीत के साथ ही सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम। विषय होगा क्या आप भी विज्ञापन देखकर करते हैं खरीददारी। कार्यक्रम एक ही कलाकार आप सुनेंगे दिन 2:30 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 10 बजे झंकार में, शाम 5 बजे, शाम 6:10 पर, शाम 7 बजे, शाम 7:31 पर रसरंग में, और शाम रात्रि 8:15 पर रस माधुरी में। सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा का समय होगा सुबह 8:45 पर। और अब से थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एकविंशति शताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति। विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयम् ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबद्धानां अपूर्वगमितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्री एंथनी एल्बनीज अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमण्डल स्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिन्द प्रशांत क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, आज हम

नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम बनारस। सुबह के 7 बज चुके हैं और आपके रेडियो सेट पर आपने ट्यून इन किया है आपका अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। तारीख है आज 10 जुलाई, शुक्रवार का दिन है और वीकेंड बस एक ही कदम दूर है। आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त शिखा। तो बनारस, बाहर का मौसम देखा आपने? ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया पूरी तरह से कलरफुल हो चुकी है। जुलाई की इस रिमझिम बारिश ने शहर का टेम्परेचर तो थोड़ा गिराया ही है, साथ ही हमारे कल के सारे स्ट्रेस को भी धोकर साफ कर दिया है। ये जो मौसम है ना बनारस, ये सिर्फ सोने के लिए नहीं बल्कि आलस छोड़कर अपने सपनों के लिए दौड़ने वाला मौसम है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो वाइब भी बिल्कुल परफेक्ट है। अपने स्पोर्ट्स शूज निकालिए और इस खूबसूरत मौसम में थोड़ी चहलकदमी कराइए और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग बनारस आकाशवाणी वाराणसी के संग। अगर अभी भी आप सुबह सुबह उठकर बस फोन ही स्क्रॉल किए जा रहे हैं ना, तो

इस सुहाने सुबह को यूं ही जाया कर रहे हैं। भाई इस प्यारे से मौसम का फायदा उठाइए, एक कड़क गर्मा गर्म चाय के साथ अपनी लाइफ की रील को सुपरहिट बनाने के लिए तैयार हो जाइए। एक काम की बात बताऊं, आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है और उसे देखकर हम अक्सर खुद को कम आंकने लगते हैं, होता है ना ऐसा? लगता है जैसे सभी कितना घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं और हम कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं, लगता है ना कभी कभी ऐसा? लेकिन सच तो ये है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। उसका दूसरा पहलू भी होता है जो शायद दिखाया नहीं जाता। तो बात बस इतनी सी है कि किसी की भी लाइफ

वेलकम बैक बनारस। आपसे मैंने एक ऐसे बिजली चोर के बारे में बताया था जो चुपके से आपकी जेब पर डाका डाल रहा है और हर महीने आपका बिजली का बिल बढ़ा रहा है। जरा अपने कमरे की दीवार पर लगे उस स्विच बोर्ड को देखिए। फोन चार्ज हो गया, आपने फोन तो निकाल लिया लेकिन चार्जर का स्विच अभी भी ऑन है ना। हम में से 90% लोग यही करते हैं, चार्जर को प्लग में ही लगा छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि फोन निकाल दिया तो बिजली तो खर्च होगी नहीं, लेकिन यहीं पर हम गलत हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसे कहते हैं फैंटम लोड या वैम्पायर पावर। चार्जर प्लग में लगे लगे चुपके से बिजली खर्च बढ़ाते रहते हैं। दरअसल आज के मॉडर्न चार्जर के अंदर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है। जब तक स्विच ऑन रहेगा वो ट्रांसफार्मर बिजली खींचता रहेगा और उसे हीट यानी कि गर्मी में बदलता रहेगा। भले ही वो बहुत कम मात्रा में हो लेकिन बिजली लगातार खर्च होती रहती है। अब सोचिए अकेले आपके घर में कितने चार्जर होंगे, चाहे मोबाइल का हो, लैपटॉप का हो या कोई भी मशीन हो। हर वक्त ये चार्जर यदि ऑन रहते होंगे, और पूरे देश में ऐसे करोड़ों घर हैं, ये छोटी सी लापरवाही हर साल अरबों यूनिट बिजली बर्बाद कर देती है और आपका बिजली का बिल भी बढ़ाती है। इसके अलावा लगातार ऑन रहने से चार्जर की उम्र भी कम होती रहती है और शॉर्ट सर्किट का खतरा भी बना रहता है। तो आज से एक नियम बना लीजिए, काम खत्म स्विच बंद, फोन हटते ही स्विच तुरंत ऑफ कर दीजिए। छोटी सी आदत है लेकिन देश की बिजली और आपके पैसे दोनों ही बचाएगी। और अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप भी गर्व करेंगे। तो सात समंदर पार लंदन से एक ऐसी ही खबर आई है जिससे हर देशवासी गर्व करेगा, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया है। जी हाँ, लंदन में घोषित हुए प्रतिष्ठित वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज की टॉप 10 शॉर्टलिस्ट आ चुकी है और इतिहास गवाह बन गया है कि भारत के एक या दो नहीं बल्कि पूरे 7 स्कूलों ने इस वैश्विक सूची में जगह बनाई है। और आपको बता दूं, इस साल इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला भारत दुनिया का इकलौता देश बन गया है। इस कमाल के रिकॉर्ड ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है। आज तक किसी भी देश के इतने सारे स्कूल्स एक साथ टॉप 10 में नहीं आए, यानी पढ़ाई लिखाई के मामले में हमारे देश ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया है। भाई, इसे कहते हैं बैक बेंचर से सीधे ग्लोबल टॉपर बनने का स्वैग। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे देश के ये सुपर 7 रत्न कौन कौन से हैं? चलिए आपकी उत्सुकता दूर कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनोवेशन यानी कुछ नया करने की कैटेगरी की। इसमें पुणे का सरकारी PCMC छत्रपति शाहू जी महाराज इंग्लिश मीडियम स्कूल और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की वादियों से आर्मी गुडविल स्कूल वजूर शामिल है। सोचिए, एक सरकारी स्कूल और एक आर्मी स्कूल दुनिया को नया रास्ता दिखा रहे हैं। इसके बाद आती है कम्युनिटी कोलैबोरेशन यानी समाज को साथ लेकर चलना। इस लिस्ट में नोएडा का हेल्दी प्लैनेट स्कूल, बेंगलुरु की इन्वेंचर एकेडमी और नवाबों के शहर लखनऊ का सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल चमके हैं। और रुकिए, लिस्ट अभी बाकी है। पर्यावरण की रक्षा के लिए बेंगलुरु के यूरो स्कूल को चुना गया है, वहीं बच्चों की अच्छी सेहत और लाइफस्टाइल के लिए लखनऊ के ही सेठ आनंदराम जयपुर

पुरी स्कूल ने टॉप 10 में बाजी मारी है। तो दोस्तों, असली बात ये है कि इन स्कूलों का मुकाबला सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं था, बल्कि इन्होंने समाज को नई दिशा दिखाने के प्रयास भी किए। अब आगे का ट्विस्ट ये है कि इन सभी टॉप 50 ग्लोबल स्कूलों के लिए कम्युनिटी च्वाइस अवार्ड की पब्लिक वोटिंग शुरू हो चुकी है। फाइनल विनर्स की घोषणा इसी साल नवंबर में होगी। लेकिन भाई, हमारे लिए तो ये सातों स्कूल पहले ही विनर बन चुके हैं। इन सभी स्कूल्स के टीचर्स और कमाल के बच्चों को हमारा सलाम है। हमारे इन सात महारथियों ने तो आज साबित कर दिया कि भारतीय स्कूलों की सोच और संस्कार ग्लोबल लेवल पर बेस्ट है। इन सभी स्कूलों के टीचर्स, स्टूडेंट्स और माता पिता को पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो बनारस, इस गौरवशाली खबर को सुनकर आपके चेहरे पर स्माइल आई ना? तो यूं ही मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मुस्कुराहटों के सफर में अपने शहर की खबरों का कारवां अभी बाकी है। तो चलिए जान लेते हैं अपने शहर बनारस का हालचाल। वाराणसी को खेल का नया हब बनाने की दिशा में गंजारी राजा तालाब में बन रहा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अब 90% से अधिक पूरा हो चुका है। भगवान शिव की थीम पर आधारित इस 451 करोड़ के प्रोजेक्ट में त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइटें और डमरू के आकार का मीडिया सेंटर बनकर पूरी तरह से तैयार है। वहीं स्थानीय क्रिकेट प्रतिभाओं की बात करें तो यूपी T20 लीग के चौथे सीजन से पहले बनारस के सिगरा स्टेडियम में सफल ट्रायल्स के बाद कानपुर के जेके लोको स्टेडियम में 2 दिवसीय रुद्राक्ष कप 2026 का आयोजन संपन्न हुआ। इस स्काउटिंग टूर्नामेंट के पहले मैच के रोमांचक मुकाबले में वाराणसी रुद्राक्ष की टीम को प्रयागराज रुद्राक्ष के हाथों 6 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि बनारस मंडल के कई युवा खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से मुख्य यूपी T20 ऑक्शन के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत डॉक्टर संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम के बाद अब नदेसर तालाब और शास्त्री घाट पर PPP मॉडल के तहत आधुनिक इंडोर खेल मैदानों और बॉक्स क्रिकेट कोर्ट का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। प्रशासनिक खबरों की ओर रुख करें तो आगामी 30 जुलाई से शुरू हो रहे सावन महीने को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने बड़ा फैसला लिया है। सावन के दौरान VIP प्रोटोकॉल दर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, ताकि आम शिव भक्त सुगमता से बाबा के दर्शन कर सके। मछुआरों और नाविकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की निषाद राज बोझ सब्सिडी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन अब शुरू हो चुका है। वाराणसी मंडल के इच्छुक लाभार्थी आगामी 24 जुलाई तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो ये था शहर बनारस का हालचाल। आइए अब जान लेते हैं 10 जुलाई की इतिहास में खासियत। 10 जुलाई का दिन कहने को तो 24 घंटे का सामान्य सा दिन है, लेकिन इतिहास के झरोके में जाके तो इस तारीख के नाम पर बहुत सी अच्छी और बुरी घटनाएं दर्ज हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण घटना हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में है। भारत के हाथों 1971 में पाकिस्तान को मिली हार के बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था। 1624 में हॉलैंड और फ्रांस के बीच स्पेन विरोधी संधि पर हस्ताक्षर हुआ था आज के दिन। और 1848 में न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच पहला टेलीग्राफ लिंक शुरू हुआ था। 1907 में फ्रांस और जापान के बीच चीन की स्वतंत्रता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था आज ही के दिन। 1946 में राजशाही खत्म होने के बाद इटली गणतांत्रिक राष्ट्र बना था आज के ही दिन। 1965 में महिलाओं के लिए पहला NCC कॉलेज ग्वालियर में खुला था आज के ही दिन। 1972 में मुंबई के मडगांव बंदरगाह से पूर्ण वातानुकूलित पोत हर्षवर्धन का जलावतरण हुआ था आज यानी 10 जुलाई के ही दिन। तो ये था इतिहास में आज का दिन। दोस्तों, अब इसी के साथ ही कार्यक्रम को संपन्न करने का समय हो चला है। शिखा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में यानी 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड क्षेत्र को प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक शहर बीड़ा के रूप में विकसित कर रही है सरकार। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस कार्रवाई तेज। 8 आरोपियों सहित संदेह के दायरे में आए परिजनों के 30 बैंक अकाउंट किए गए सीज। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का किया गठन। और प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार।

0: विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चेक और आयुष्मान कार्ड वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र को यूपी के सबसे बड़े औद्योगिक शहर बीडा के रूप में विकसित कर रही है।
1: मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हमारे बुंदेलखंड के विकास के लिए, यहां की विरासत के संरक्षण के लिए जो भी प्रोजेक्ट शासन के संज्ञान में आएगा, उसको आगे बढ़ा करके बुंदेलखंड को धरती का स्वर्ग बनाने का काम हम लोग करेंगे, आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने बांदा में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में पुलिस की विशेष टीम ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने आठों आरोपियों सहित संदेह के दायरे में आए उनके परिजनों और रिश्तेदारों के करीब

0: 30 बैंक अकाउंट सीज कर दिए। साथ ही पुलिस कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा अब ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे भविष्य में कोई अन्य घटना दोबारा न हो सके।
1: इस बात का विश्वास रखिए कि हम लोग इस कार्य को अब अधिक दक्षता के साथ करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब यहाँ का CEO नियुक्त हो जाएगा उसके पश्चात तो सारी कार्य पद्धति में एक निखार आएगा।
0: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए जारी किए जाने वाले VIP पास की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। विशेष पास की नई रेफरेंस ID अभी तक जारी नहीं की गई है। ऐसे में पहले से जारी किए गए विशेष पास मान्य किए जा रहे हैं, लेकिन नए पास अब नई रेफरेंस ID जारी होने के बाद ही बन सकेंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कल मिर्जापुर में पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए श्री चौधरी ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले पर कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।
2: मंदिर बनने के बाद उसका एक प्रभावित ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट की ही देख रेख में होता है, सरकार का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है और निश्चित तौर से जो भी ट्रस्ट का हेड है वो भी जवाबदेह होगा और जो जांच में दोषी पाया जाएगा निश्चित तौर से कड़ी से कड़ी सजा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति आज से 15 जुलाई तक लखनऊ दौरे पर रहेगी। एक रिपोर्ट।
3: इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना है। PP चौधरी की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति इस अध्ययन दौरे के दौरान उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, राज्य प्रशासन, वित्तीय एवं शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षाविदों, राज्य बार परिषदों, संबंधित उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघों, विभिन्न पेशेवर संगठनों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करेगी। समिति के अध्ययन दौरे में विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक और सार्थक विचार विमर्श होने की अपेक्षा है। लखनऊ से मुमताज अली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी को लेकर अभ्यर्थी 14 जुलाई तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने यह जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। यह समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमिट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। प्रदेश सरकार की ओर से 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस महाअभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे। प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि सरकार हरित क्षेत्र बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है।
4: 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और माननीय योगी जी की सरकार और यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा नहीं। हमने पिछली बार भी 35 करोड़ का टारगेट था तो हमने 36 करोड़ पेड़ लगाए थे एक ही दिन में, तो हमारे लिए 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, हम इससे कहीं ज्यादा पेड़ लगाएं।
0: प्रदेश के कई जिलों में कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कुछ जिलों में भारी वर्षा के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। कल लखनऊ, फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर, संभल, नोएडा, हापुड़, अयोध्या, चित्रकूट, बिजनौर और बस्ती सहित कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। बारिश और जलभराव के चलते संभल, गाजियाबाद, हापुड़ और मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया।

0: उधर अमरोहा में बारिश और बैराज से पानी छोड़ने के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई गांवों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पीलीभीत जिले में कई दिनों से हो रही वर्षा के कारण शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी के बहाव क्षेत्र में जलभराव से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए वहां बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। लगातार बारिश के कारण गंडक नदी कुशीनगर के खड्डा में खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि कल तक के लिए प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: वेस्ट यूपी में हैवी टू वेरी हैवी रेन के साथ कहीं कहीं एक्सट्रीमली हैवी रेन हुई है, और अगर आगे आने वाले दिनों में बात करें तो ये उत्तरोत्तर मध्य उत्तर प्रदेश और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा। यद्यपि यह उत्तरोत्तर कमजोर होता जाएगा, परंतु इसके प्रभाव से सेंट्रल यूपी की तरफ आने पर और थोड़ा कमजोर होने पर वर्षा की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई को भी जारी रहेगा, और इसके बाद 11 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसमें व्यापक तौर पर कमी आ जाएगी और तराई इलाकों में या कहीं कहीं भारी वर्षा तक सीमित हो जाएगा।
0: सोनभद्र जिले के पीपरी थाना क्षेत्र में मड़ेया गांव के पास कल शाम एक ट्रक की चपेट में आ जाने से बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 710 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 229 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड क्षेत्र को प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक शहर बीडा के रूप में विकसित कर रही है सरकार। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के मामले में पुलिस कार्रवाई तेज, 8 आरोपियों सहित संदेह के दायरे में आए परिजनों के 30 बैंक अकाउंट किए गए सीज। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का किया गठन। और प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने कल तक के लिए जारी किया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन। कलाकार हैं अमरेंद्र मिश्रा, राग है ललित।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे अमरेंद्र मिश्रा का सितार वादन, राग था ललित। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने 4थे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने

0: मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत

0: एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल, बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट। यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहाँ बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
2: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइस को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, NCR थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार

0: भारत अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जयपुर के जंगल में सफारी 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष T20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: India Meteorological Department is extensively quoted in dailies on the latest news on monsoon. Monsoon has covered the entire country a day later than normal, announces IMD, is the headline in the Hindu. Deficit falls to 14%, writes the Times of India. And finally, the Pioneer reports that India may soon get a common police uniform after 77 years. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Australia agree to operationalize their civil nuclear cooperation agreement, paving the way for uranium exports to India. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Auckland today on a two-day visit to New Zealand. Home Minister Amit Shah says, secure border, prosperous border region and vigilant society together can make the country secure. Maharashtra government formed seven-member committee to draft uniform civil code for the state. Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei buried in Mashhad 4 months after US-Israeli strikes killed him. France stormed into semi-finals of FIFA World Cup after defeating Morocco 2-0. And in men's cricket, England beat India by 9 wickets in fourth T20 international to take 3-0 lead in five-match series. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के 2 दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खत्ते और चौकस सोसाइटी मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रियासत के लिए यकसां सिविल कोड तैयार करने की खातिर 7 अरकान की एक कमेटी बनाई है। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो 4 महीने पहले अमरीका और इसराइल के हमलों में मारे गए थे। फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और मर्दों के क्रिकेट में चौथे टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। दोनों मुल्कों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथनी एल्बिनीस के दरमियान बातचीत के दौरान दिफाई और बहरी सिक्योरिटी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के लिए अहम इकदामात का भी ऐलान किया है। कल मेलबर्न में तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबराह मीटिंग के अहम नतीजों में दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक के बारे में मुश्तरका ऐलानिया और बहरी सिक्योरिटी तावुन से मुतालिक खाका शामिल हैं। बातचीत के बाद एक मुश्तरका अखबारी बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बहरुल काहिल महज 2 समंदरों के संगम का मकाम नहीं, बल्कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी हम ख्याल जमहूरी मुल्कों की मुश्तरका उमंगों की अक्कासी होती है।
3: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
2: बाद में मीडिया को जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि तरफेन ने भारत को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यूरेनियम की तवील मुद्दती सप्लाई के लिए इंतजामी समझौते को हतमी शक्ल दी है। उम्मीद है कि इस मायदे से माहौलियात के लिए साजगार भारत का तवानाई प्रोग्राम मुस्तहकम हो सकेगा और नेट जीरो के उसके मकासद को तकवियत मिलेगी।
4: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcomes today, adoption of the Joint Declaration on Defense and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration Roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.

0: बाद में मेलबर्न में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द से जल्द दुनिया की चोटी की तीन मईशतों में से एक बनने की भारत की ख्वाहिश ज्यादा तरक्की ज्यादा कामयाबी के मंत्र पर मबनी है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप थ्री इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस कार्रवाई से दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाई अंजाम देने के लिए भारत के अंदरून मुल्क तैयार करदा दिफाई निजाम की सलाहियत और उसके मौसर होने का मुजाहिरा हुआ।
1: भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी नई बुलंदी पर पहुंच गई है और इसमें मुश्तरका अकदार अवाम से अवाम के मजबूत राबतों और मुख्तलिफ अहम शोबों में इश्तराक में वसत का अहम रोल है। वजीर आजम ने भारतीय बिरादरी के 10 लाख अफराद को बाहमी ताल्लुकात का एक अहम सुतून करार दिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज ने भारतीय बिरादरी को दोनों मुल्कों के दरमियान एक जीते जागते पुल से ताबीर किया।
2: The energy that we feel in here tonight defines the Australia-India partnership. It is an enthusiasm and a dynamism that drives the positivity and promise of our two nations and peoples.
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑपोजिशन के लीडर एंगस टेलर से मुलाकात की। नामानिगार ने बताया है कि दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और सियासी इश्तराक पर तबादले ख्याल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: ये मीटिंग वाज़ह इशारा करती है कि ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात को दोनों अहम पार्टियों की किस कदर तायीद हासिल है। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तआवुन पर इत्तेफाक करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क का सच्चा दोस्त करार दिया और मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ताल्लुकात को फरोग देने की तायीद की। आला सतही मुलाकात के नतायज की हिमायत करते हुए अपोजिशन लीडर टेलर ने पुरअमन मकासद के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम फराहम करने और बैनुल अक्वामी शमसी इत्तेहाद जैसे तकनीकी तआवुन के इकदामात की भी तायीद की। ये बातचीत सियासी तब्दीलियों के बावजूद सिक्योरिटी और तवानाई के अहम शोबों में मुसलसल और मुस्तहकम तआवुन को यकीनी बनाने की अक्कासी करती है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज के हमराह आज तारीखी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG गए। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि उनके दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के बढ़ते हुए रोल की अक्कासी होती है।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
0: न्यूजीलैंड मतारिकी मना रहा है जो उम्मीद यादों और नई शुरुआत की अलामत का माओरी नया साल है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का तारीखी दो दिन का दौरा शुरू कर रहे हैं जो पिछले तकरीबन 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा है। न्यूजीलैंड में नए साल और जनाब मोदी के दौरे से इस दिन की अहमियत और बढ़ गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
4: ऑकलैंड में वजीर आजम का इस्तकबाल करने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। वहां आबाद भारतीय अफराद के साथ साथ न्यूजीलैंड के कई लोग भी रिवायती माओरी इस्तकबाल किया ओरा मोदी के साथ उनका खैर मकदम करने के मुंतजर हैं। न्यूजीलैंड के माली और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के वजीर खवातीन नौजवान कारोबारी रहनुमा तालीमी और कम्युनिटी अरकान जनाब मोदी के इस दौरे को भारत न्यूजीलैंड ताल्लुकात में एक नए दौर के आगाज के तौर पर देख रहे हैं। उनका ये मानना है कि इससे तिजारत तालीम सरमायाकारी खेलों

0: सुर्खी है भारत का तहम्मुल और सिफारतकारी पर जोर। दिल्ली में भारत रूस वर्किंग कमेटी की 14वीं मीटिंग से मुतल्लिक खबर को भी अखबारात ने नुमायां तौर पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है दोनों मुल्कों का दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर जोर। नायब सदर जमहूरिया की जानिब से माहिगीरी को फरोग देने से मुतल्लिक कौमी प्रोग्राम के आगाज की खबर को भी अखबारात ने अहमियत के साथ शाया किया है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के दो दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खत्ते और चौकस सोसाइटी मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रियासत के लिए यकसान सिविल कोड तैयार करने की खातिर 7 अरकान की एक कमेटी बनाई है। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो 4 महीने पहले अमरीका और इसराइल के हमलों में मारे गए थे। और फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम मधुरिमा सुनेंगे आप बस इस छोटे से अंतराल के बाद।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
8: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
7: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
8: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
7: बुकिंग है तो संपर्क करें
9: 0542227658
10: 0542227658

कार्यक्रम मधुरिमा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त दीप्ति श्रीवास्तव। कार्यक्रम मधुरिमा में आज हम बातें करेंगे एक ऐसे जज्बे की जो कभी हमें हारने नहीं देता, और ये वो है जिसके साथ हम अपने हर नए दिन की शुरुआत करते हैं, और वो शब्द है आशा यानी उम्मीद, जो जीवन में हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो चलिए इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना।

जब जीवन के रास्ते धुंधले लगने लगे, ऐसा लगने लगे जैसे हर तरफ अंधेरा है, तब हमारे मन के कोने में आशा की एक छोटी सी किरण हमारे जीवन को रोशन करती है। दोस्तों, आशा वो ताकत है जो हमारे

ये विश्वास जगाती है कि अंधेरा खत्म होगा और एक नया सवेरा होगा, यानी जीवन का जो ये कठिन समय है वो जल्दी ही खत्म होगा।

0: से रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा और आज हम बातें कर रहे हैं आशा के बारे में। दोस्तों, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुख दुख धूप और छांव की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन एक चीज जो मुश्किल वक्त में भी हमें जिंदा रखती है वो है आशा। सोचिए, हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो आशा ही हमारी आंतरिक शक्ति होती है जो उस समस्या से उबरने की ताकत देती है और निरंतर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

सोचिए, अगर एक किसान को यह उम्मीद न हो कि उसकी मेहनत रंग लाएगी और बीज से पौधा बनेगा, तो क्या वो कभी तपती धूप में हल चलाएगा? बचपन में हम सभी ने साइकिल जरूर चलाई होगी, ना जाने कितनी बार गिरे होंगे, लेकिन हर बार इसी आशा के साथ दोबारा फिर बैठे होंगे कि अब तो चला ही लेंगे और साइकिल चला ही ली होगी। यही है आशा की ताकत। तो आइए अब सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना।

दोस्तों, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने भीतर की सकारात्मकता को कभी मत खोने दीजिए। हर सुबह अपने साथ एक नया अवसर, एक नई उम्मीद लेकर आती है। बीते हुए कल के दुखों को भूलकर आगे आने वाले कल की खूबसूरत संभावनाओं का बाहें फैलाकर स्वागत करिए। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप अनमोल हैं।

और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे किसी दिन कुछ और बातों और मधुर गानों के साथ। इसी आशा के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों के जीवन में भी आशा की किरण बिखेरते रहिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए प्रयागराज और गाजियाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण मिश्र का।
3: जून माह के मध्य में प्रयागराज के प्रभारी मंत्री जलशक्ति विभाग उत्तर प्रदेश स्वतंत्र देव सिंह जी की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में उत्तर प्रदेश श्री अन्न मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम अंतर्गत मिलेट्स रेसिपी एवं उपभोक्ता जागरूकता पर आधारित प्राकृतिक खेती कार्यशाला विकसित कृषि संकल्प अभियान एवं खेत बचाओ अभियान कार्यक्रमों का आयोजन सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर युवा महिला एवं गरीब कल्याण को समर्पित सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर आधारित 4 दिवसीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर परिवर्तनकारी यात्रा का उत्सव है, जिसने गांव गरीब किसान को विकास की मुख्य धारा में लाने का कार्य किया। 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रयागराज के ऐतिहासिक और पवित्र संगम नोच पर एक भव्य सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम जिला प्रशासन एवं आयुष विभाग प्रयागराज के तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और योगाभ्यास किया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस बृहद कार्यक्रम में योग अभ्यासियों सहित 9,000 से अधिक लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर स्वास्थ्य और कल्याण का संदेश दिया। इस अवसर पर योग और स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा को जोड़ने का पवित्र माध्यम है। नियमित योग करने से न केवल हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है बल्कि यह हमें मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। आज पूरी दुनिया भारत की इस प्राचीन विधा को अपना रही है जो हर भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। जून माह के तीसरे सप्ताह में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 140 नव दंपतियों का विवाह कार्यक्रम आयोजन सकुशल संपन्न हुआ। वैवाहिक कार्यक्रम में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं संबंधित विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे। प्रयागराज उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जून माह के अंतिम सप्ताह में मेजा ब्लॉक परिसर में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम SCP का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं एवं स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न रोजगार परक योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख मेजा गायत्री देवी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। इस दौरान उपस्थित लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा आवेदन प्रक्रिया, पात्रता एवं लाभ प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया। साथ ही स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों का मार्गदर्शन भी किया गया। इस माह के प्रथम सप्ताह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण BBG रामजी योजना लॉन्च कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में BBG रामजी योजना के लॉन्चिंग के सभी को बधाई देते हुए कहा कि BBG रामजी योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों के पारिश्रमिक को 252 रुपए से बढ़ाकर न्यूनतम 300 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत

0: पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी मिलती थी, परंतु जी राम जी योजना के अंतर्गत इसे बढ़ाकर 125 दिन रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लक्ष्य के साथ साथ अब हमारा लक्ष्य विकसित ग्राम सभा बनाने का है। और जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा,
1: देश के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी, प्रयागराज के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी मनरेगा के स्थान पर आए। विकसित भारत जी राम जी आने के बाद गांव का सर्वांगीण विकास होगा। गांव की जो सड़कें हैं, इंटरनल सड़कें हैं, वो भी बनेंगी, तालाब भी बनेंगे, सभी क्षेत्रों में यह बहुत ऐतिहासिक काम होगा।
0: जुलाई माह के प्रथम सप्ताह विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का उद्घाटन अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक डॉक्टर आशु पांडे एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से संयुक्त रूप से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। संचारी अभियान का संचालन दिनांक 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 एवं दस्तक अभियान 11 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी ने स्वास्थ्य विभाग की विशेष भूमिका के विषय में चर्चा की एवं दस्तक अभियान में स्टाफ डायरिया कैंपेन के अंतर्गत आशा एवं आंगनवाड़ियों के द्वारा घर घर पर जाकर डायरिया प्रभावित परिवारों को जिंक, ओआरएस एवं क्लोरीन की गोली वितरण पर चर्चा की। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 3 रोजगार मेले का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 35 से अधिक कंपनियों के द्वारा हजारों युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार प्रदान किया गया। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसको लेकर क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय पर अभ्यर्थियों के लिए हेल्प डेस्क, ऑनलाइन पंजीकरण और पोर्टल पर जनपद में समय समय पर आयोजित होने वाले रोजगार मेले की सूचना प्रदान की जा रही है। इस हफ्ते शुरू हुई हल्की बारिश और आसमान में छाए बादलों से भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं मानसून की दस्तक से किसानों के चेहरे खिले हैं, साथ ही कृषि कार्यों में भी तेजी से कार्य शुरू हो गया है। खरीफ की प्रमुख फसल धान की खेती को लेकर कृषि विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं।
2: प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार शर्मा का।
3: गाजियाबाद स्थित नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन यानी नेट्रा का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी इस अवसर पर मौजूद रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। केंद्रीय मंत्री ने नेट्रा की 52 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में वस्त्र क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का वस्त्र उद्योग लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है और भारत अब केवल अपनी जरूरतें ही नहीं बल्कि दूसरे देशों की मांगें भी पूरी कर रहा है। उन्होंने बताया कि देश में वस्त्र क्षेत्र में बड़े जुड़े हुए कई अनुसंधान संस्थान आधुनिक तकनीक और परीक्षण सुविधाओं के साथ कार्य कर रहे हैं, जिससे शोध और नवाचार को बढ़ावा मिला है। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान और स्टार्टअप को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने अयोध्या का हालिया घटना पर कहा कि मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून अपना काम करेगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गाजियाबाद में वाल्मीकि पार्क में आयोजित 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम में भाग लिया और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने उनके कार्यों की सराहना करते हुए स्वच्छ अभियान में उनके योगदान का महत्वपूर्ण बताया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री विकास भवन पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। दौरे के दौरान आयोजित किसान कार्यशाला में उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों से अत्यधिक उपयोग से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए किसानों को कंपोजिट खाद और पारंपरिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
4: विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर किसानों की कार्यशाला में हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। हम प्रदेश के किसानों से अपील करते हैं, हम सबको प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ना होगा। हमारे जो पुराने संसाधन थे उन पर हमें जाना है, हमें कंपोस्ट खाद का उपयोग मिलाना है।
3: उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध हो सकें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार

0: किसानों के हितों, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। गाजियाबाद में जिला प्रशासन अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में गाजियाबाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के निर्देश पर गांधीनगर क्षेत्र में एक महिला को उसकी परसों पुरानी आवंटित दुकान का कब्जा वापस दिलाया गया। पीड़िता सुमन बत्रा ने सोमवार को जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत की थी कि वर्ष 1992 में नगर पालिका से लीज पर मिली दुकान पर अवैध कब्जे कर लिए गया है। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया। राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान को खाली कराया और उसका कब्जा सुमन बत्रा तथा उसके परिवार को सौंप दिया। जिलाधिकारी रविंद्र मादड़ ने कहा कि अवैध कब्जों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है।
1: प्रमोद बत्रा जी मेरे पास आए थे और इनकी एक पीड़ा थी कि पिछले 28 वर्ष से के दुकान पे कब्जा किया हुआ था और वो कब्जा खाली नहीं कर रहा था। जनता दर्शन में मेरे पास आए थे, इन्होंने अपनी शिकायत मुझे बताई, तो हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में तुरंत एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की और जब ये पुख्ता हो गया कि सारे कागज इनके नाम पे, दुकान इनकी है, जिस दुकान को खाली करा लिया गया और इन्हें कब्जा वापस प्रदान कर दिया गया।
0: उन्होंने कहा कि सरकारी अथवा वैध रूप से आवंटित संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और पात्र लोगों को उनका अधिकार दिलाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। गाजियाबाद के डासना क्षेत्र में दिल्ली मुरादाबाद हाईवे के निकट स्थित करीब 250 बीघा सरकारी भूमि को जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे से मुक्त कराया।
2: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना।

थाना मुगलसराय, कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार मोहम्मद साहिल पुत्र जमील अहमद भिसौड़ी दुलहीपुर मुगलसराय जनपद चंदौली के निवासी हैं। मोहम्मद साहिल की उम्र लगभग 18 वर्ष, लंबाई 165 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ एवं चेहरा लंबा है। ये दिनांक 16 जून 2026 से लापता हैं। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना मुगलसराय जनपद चंदौली को सूचित करें। थाना धीना, कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार ज्योति मिश्रा पत्नी जयप्रकाश मिश्रा ग्राम पांडेपुर पोस्ट मिढ़ान थाना धीना जनपद चंदौली की निवासी हैं। ज्योति मिश्रा की उम्र 32 वर्ष, लंबाई 5 फुट 2 इंच, रंग सांवला एवं चेहरा सामान्य है। ये दिनांक 9 जून 2026 से लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने पीले रंग की साड़ी पहनी थी। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना धीना जनपद चंदौली को सूचित करें।

थाना धीना कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार अनुपमा कुमारी पुत्री दिनेश यादव ग्राम महुरा प्रकाशपुर पोस्ट बरहन थाना धीना जनपद चंदौली की निवासी हैं। अनुपमा कुमारी की उम्र 20 वर्ष लंबाई 5 फुट रंग गोरा एवं चेहरा गोल है। ये दिनांक 14 जून 2026 से लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने नीला टॉप एवं हल्का

का नीला जीन्स पहना था। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना धीना जनपद चंदौली को सूचित करें। खोई व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

दोस्तों, कुछ लोग दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आते, बल्कि अपनी बातों, अपनी यादों और अपनी लिखी हुई तहरीरों से इस दुनिया को और खूबसूरत बनाने आते हैं। एक ऐसा ही नाम जिसने उर्दू शायरी और हिंदी सिनेमा के गीतों को एक नया मुकाम दिया, नाम था कतील शिफाई।

आज नगमगी कतील शिफाई के नाम। गर्मीये हसरते नाकाम से जल जाते हैं, हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। बच निकलते हैं अगर आतिशे सयाल से, हम शोलाए आरिज़े गुलफाम से जल जाते हैं। खुद नुमाई तो नहीं शेवाए अरबाब वफा, जिनको जलना हो वो आराम से जल जाते हैं। रब्ते बाहम पे हमें क्या ना कहेंगे दुश्मन, आशना जब तेरे पैगाम से जल जाते हैं। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। इन सादगी से भरे लेकिन सीधे दिल को छू लेने वाले अल्फाज के मालिक कतील शिफाई साहब का आज जिक्र करेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उनकी एक बेहद मकबूल गजल के साथ।

हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समुंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। हैरा है कई रोज से ठहरा हुआ पानी, तालाब में अब क्यों कोई कंकर नहीं गिरता। उस बंदाए खुद्दार पे नबियों का है साया, जो भूख में भी लुकमाए तर पर नहीं गिरता। करना है जो सर मार का ए जीस्त तो सुन ले, बेबाजुए हैदर दरे खैबर नहीं गिरता। कायम है कतील अब ये मेरे सर के सुतू पर, भूचाल भी आए तो मेरा घर नहीं गिरता।

पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है। तेरा इसरार की चाहत मेरी बेताब न हो, वाकिफ इस गम से मेरा हलकाए अहबाब न हो, तो मुझे जब्त के सहराओं में क्यों रोलती है, शायरी सच बोलती है। ये भी क्या बात कि छुप छुप के तुझे प्यार करूं, गर कोई पूछ ही बैठे तो मैं इनकार करूं, जब किसी बात को दुनिया की नजर तौलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने इस फिक्र में काटे कई रातें कई दिन, मेरे शेरों में तेरा नाम ना आए, लेकिन जब तेरी सांस मेरी सांस में रस खोलती है, शायरी सच बोलती है। तेरे जलवों का है पर तेरी मेरी एक एक गजल, तो मेरे जिस्म का साया है तो कतरा के ना चल, पर्दादारी तो खुद अपना ही भरम खोलती है, शायरी सच बोलती है।

वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ न करे, मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं खुदा न करे। रहेगा तेरा प्यार जिंदगी बनकर, ये और बात है मेरी जिंदगी वफा न करे। ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, खुदा किसी को किसी से मगर जुदा न करे। सुना है उसको मोहब्बत दुआएं देती है, जो दिल पे चोट तक आए मगर गिला न करे। अगर वफा पे भरोसा रहे न दुनिया को, तो कोई शख्स मोहब्बत का हौसला न करे। बुझा दिया है नसीबों ने मेरे प्यार का चांद, कोई दिया मेरी पलकों पे अब जला न करे। जमाना देख चुका है परख चुका है इसे, कतील जान से जाए पर इल्तजा न करे। चलिए इन्हीं जज्बात को समेटे हुए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में उनकी गाई ये बेहद मकबूल गजल।

कतील साहब ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के सिनेमा जगत के लिए भी काफी गीत लिखे जो बेहद मकबूल हुए। फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई का कुमार सानू की आवाज में गीत तेरे दर पर सनम चले आए और इसी फिल्म का अलका याग्निक की आवाज में गीत बादलों में छुप रहा है चांद क्यों और नाराज फिल्म का कुमार सानू की आवाज में संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को कतील शिफाई ने लिखे, जिनको लोग आज भी पसंद करते हैं और मोहब्बत से सुनते हैं।

दोस्तों, 90 की दहाई में जब भारतीय फिल्म मेकर महेश भट्ट ने अपनी फिल्मों के लिए गाने लिखने के लिए सरहद पार कतील साहब को याद किया तो वो तारीख बन गई। इसके अलावा मेहंदी हसन, जगजीत सिंह, पंकज उदास जैसे गुलकारों ने कतील साहब की शायरी को आवाज दी।

सुकूते मर्ग तारी है, सितारों तुम तो सो जाओ, हंसो और हंसते हंसते डूबते जाओ खलाओं में, हमी पे रात भारी है, सितारों तुम तो सो जाओ, हमें तो आज की शब पौ फटे तक जागना होगा, यही किस्मत हमारी है, सितारों तुम तो सो जाओ, तुम्हें क्या आज भी कोई अगर मिलने नहीं आया, ये बाजी हमने हारी है, सितारों तुम तो सो जाओ, कहे जाते हो रो रो कर हमारा हाल दुनिया से,

कैसी राजदारी है, सितारों तुम तो सो जाओ, हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सो ही जाएंगे, अभी कुछ बेकरारी है, सितारों तुम तो सो जाओ।

0: कतील साहब का मानना था कि शायरी दिल का मामला है और दिल की कोई सरहद नहीं होती। 11 जुलाई 2001 को इस अजीम शायर ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके लिखे नगमे आज भी हमारे मोबाइल की प्लेलिस्ट में हैं और हमारे दिलों में महफूज हैं। सामईन, आज के हमारे इस सफर को रोकने का वक्त आ गया है। दोस्तों, कतील शिफाई साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब तक दुनिया में मोहब्बत रहेगी, जब तक टूटे दिलों को सहारा देने के लिए लफ्जों की जरूरत होगी, कतील साहब अपनी शायरी के जरिए जिंदा रहेंगे। आपको कतील साहब का कौन सा शेर, गजल या गाना सबसे ज्यादा पसंद है, हमें जरूर बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। अब अपने दोस्त आसिफ इकबाल को नगमगी प्रोग्राम से दें इजाजत। सुनते रहिए उर्दू प्रोग्राम, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए कतील साहब की शायरी। आकाशवाणी लखनऊ आपके साथ है। आदाब।
1: उर्दू कार्यक्रम समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लोक संगीत आप सुनेंगे बस इस छोटे से अंतराल के बाद।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
2: लोक संगीत में आज के कलाकार हैं शिवापति मिश्रा। पहले सुनिए इनके स्वर में देवी गीत।

शिवापति मिश्रा के गाए पूर्वी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजे हैं, अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। झंकार में सबसे पहले सुनिए पापा कहते हैं फिल्म से ये गाना। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म सातवां आसमान से। इस गीत को लिखा है सूरज सनीम ने और धुन बनाई है राम लक्ष्मण ने।

0: अब सुनिए फिल्म हम आपके हैं कौन से, लता मंगेशकर एवं SB बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में ये गाना। शब्द रचना है देव कोहली की और संगीत है राम लक्ष्मण का।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

झंकार में अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तेरे मेरे सपने से। आवाजें साधना सरगम और हरिहरन की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं बिजू शाह।

अभी आपने सुना हरिहरन की आवाज़ में जिद्दी फिल्म का ये गाना। गीतकार थे समीर और संगीतकार थे दिलीप सेन, समीर सेन। अब सुनिए फिल्म कृष्णा कॉटेज से ये गाना। आवाज़ है श्रेया घोषाल की, शब्द रचना है नीलेश मिश्रा की और संगीत है अनु मलिक का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। झंकार में अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तुम बिन से। आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की हैं। गीतकार हैं फैज़ अनवर और संगीत है निखिल विनय का।

आप सुनिए कुमार सानू और संजीवनी की आवाज़ों में करीब फिल्म का ये गाना। गीतकार हैं राहत इंदौरी और संगीतकार हैं अनु मलिक।

झंकार में अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रंगीला से, आशा भोसले की आवाज़ में। गीतकार हैं महबूब और संगीतकार हैं अनु मलिक।

झंकार में ये आखिरी गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गुलाम से। आवाज़ है कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं जतिन ललित।

इस गीत के साथ ही आज का झंकार कार्यक्रम समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे प्रसारण आपके लिए मीडियम वेव के मीटर, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH, DRM और वेब्स OTT पर एक साथ उपलब्ध है। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।

कार्यक्रम के तमाम सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और श्रोताओं आपको आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है और जो फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा आप जानते हैं 7905519981, यानी 7905519981। सावन को आने दो, रोटी कपड़ा और मकान, संतोष, पेंटर बाबू, तपस्या और अपनापन, ये आज की फिल्में हैं। सावन को आने दो, रोटी कपड़ा और मकान, संतोष, पेंटर बाबू, तपस्या और अपनापन। सबसे पहले फिल्म का नाम लिखें और उसके बाद अपना नाम और जगह का नाम। एक संदेश में एक ही स्थान के दो चार श्रोताओं के नाम लिखें, एक बारी संदेश भेजें और फिर इंतजार करें। बने रहें हमारे साथ कार्यक्रम में। वक्त रहते यानी 11:30 बजे तक अपने संदेश हमें भेज दें ताकि आपका नाम प्रोग्राम में जरूर शामिल हो सके। कार्यक्रमों से जुड़ी प्रतिक्रियाएं भी हमें भेजते रहें। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में वो प्रोग्राम अब अपने नियत समय यानी रविवार शाम 7:31 पर प्रसारित होगा। pkldiarvaranasi@gmail.com वो उस प्रोग्राम की मेल आईडी है ये, और वहां पर फरमाइशें न भेजें। फरमाइशी प्रोग्राम की मेल आईडी है aiarvnsfgexp@gmail.com। आपके बहुत सारे संदेश आ चुके हैं आज की फिल्मों के लिए। आइए आज का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं इस गीत के साथ। गौहर कानपुरी के बोल हैं, राजकमल का संगीत, जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की आवाजें। फिल्म का नाम सावन को आने दो।

सावन को आने दो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और बारिश तो आ चुकी है तमाम इलाकों में और हमारे बनारस में भी आसपास भी और बहुत राहत है अभी मानसून के इस मौसम में। लेकिन सावन का इंतजार है और ये गीत सावन को आने दो के बारे में बातें कर रहा था। और अब हम बातें नहीं करेंगे, आपके नाम बताएंगे जो आपकी फरमाइशें आई हुई हैं इस गीत के लिए। मजनू कटेला दिल्ली से ये संदेश आया है, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग और आकांक्षा मलिक का। निवासा खुपटी ये जगह का नाम है, वहां से हैं माया, शिवांश, चंद्रकला, जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो की फरमाइश आई है जनकपुरी सहारनपुर से। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता हुजा। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत हैं जसपुर उत्तराखंड से। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश की फरमाइश। आशीष कुमार हमें सुन रहे हैं महरेव जौनपुर से। आर्यनगर कोका भिलाई छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार और अजीत कुमार जंघेल। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर के श्रोता है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी और फरदीन अब्बासी। जमानिया गाजीपुर के श्रोता सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल ने भी इसी गीत को सुनना चाहा। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना की फरमाइश लदावली मुरादाबाद से आई हुई है। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज और काजल सीमा की फरमाइश मुरादाबाद दुल्हापुर से आई हुई है। राजेंद्र यादव, भारती, उषा देवी, भारती, दीपांजलि, अनुराग, दीप, भकेलू यादव और राम समुजी यादव हैं वलीदपुर मढ़ा मऊ से। आप हैं चौसा गोला बक्सर से जयराम बिन, सीतामुनि देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रद्युम्न और प्रीतम कुमार। ये फरमाइश किर्रा पलारी छत्तीसगढ़ से आई हुई है वीरेंद्र कुमार साहू, सोनू, आशीष और कपिल साहू की। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से हैं अनिश राजभर, मनीष राजभर, आशीष और आकर्ष राजभर। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। हमारे श्रोता हैं दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। गमहरिया जमशेदपुर से हमें सुन रहे हैं रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल।

राहू और देवंती जायसवाल। ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, आप सभी पिंगावाला चौक गोरया जालंधर के श्रोता हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और जसवी यादव। रवि हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से। गांव कलाना, तहसील भादरा, हनुमानगढ़ राजस्थान के श्रोता हैं विक्रम कणवासरा, सचिन, सतीश और योगेश। ये फरमाइश लेवाई छत्तीसगढ़ से आई हुई है गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी और उज्जवल दास मानिकपुरी की। राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा मऊनाथ भंजन से। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी और नेहा मरावी। मुंदीचक भागलपुर बिहार से ये फरमाइश दिलीप कुमार सोनी की है। हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, दतरेंगी भाटापारा से। भुज कच्छ गुजरात के श्रोता हैं रसिक, अशोक, रमेश और अशोक रबारी। मोसी अंसारी, सरताज अंसारी, शाहिद अंसारी, मुश्ताक अंसारी हैं कोटवा वाराणसी के हमारे श्रोता। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, उदय, वीर सिंह और अमनदीप। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के श्रोता हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान। बहुत सारे श्रोताओं की फरमाइशें हैं इस गीत के लिए। संतोष आनंद के बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत था, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें। फरमाइशें आप सबकी हैं। प्रिंस मौर्य, सुधा मौर्य और उनके परिवार के सदस्य हैं चंदौली से। संतोष पांडे, रेखा पांडे, शिवम पांडे की फरमाइश चौखंडी हाथी बाजार वाराणसी से आई हुई है। गमरिया जमशेदपुर से हमें सुन रहे हैं विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। कलानौर के श्रोता हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, राहुल पाल, हरिमोहन पाल, अंजना पाल, ज्योति बघेल और लक्ष्य बघेल की फरमाइश भांडेर दतिया से आई हुई है। रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। गांव गहमर पकड़ीतर गाजीपुर से त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी और शिवनाथ जायसवाल, अमितेश कुमार तिवारी करनई बलिया के श्रोता। चंद्रनगर सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग की फरमाइश। मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली और लाडली, निशा और उनके दोस्त। जावेद अख्तर अंसारी, निखत परवीन, नुसरत परवीन, सलीम जावेद और शाहिद हसन आजमी की फरमाइश आई है कटरा मुबारकपुर से। फरासी हिसार के श्रोता है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और एक ही नाम दो बार आपने लिखा है। दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से हैं वीणा मस्कीन, तुलसी मस्कीन, पंचकुला चंडीगढ़ से इसी में नाम है राहुल खुराना, रजता और केशु खुराना का दो जगहों के नाम हो तो अलग अलग संदेश भेजें। मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी की फरमाइश बाजार रोड मुंगीसापुर से।

निमनाबाद जिंद हरियाणा के श्रोता हैं जिन्होंने संदेश भेजा है, जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह और लवप्रीत कौर। मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, नसरीन अंसारी, शमा अंसारी और माहेनूर अंसारी की फरमाइश करेली बरेली से आई है। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और रयान बाबू हैं धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। हेमंत गौतम, प्रकाश गौतम, छोटी छाया और रानी माँ काली स्थान नौली गाजीपुर से आपने संदेश भेजा है। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल हैं लगान पंढरिया छत्तीसगढ़ से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह और सुरभि शाह पद्मा टॉकीज नेपानगर के श्रोता। उमेश, हमेश, मुकेश, सोनी, सरिता, सपना और परिवार के सदस्य गुरैनी गाजीपुर से हैं। अस्तुपुरा मऊ से हमें सुन रहे हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी। अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके माता पिता हैं नारी पचदेवरा गाजीपुर से। मुजफ्फरपुर बिहार से ये संदेश आया है, राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी का। ईदगाह रामनगर से है सोनू अंसारी और लंबे बाबू। दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, कनीस, सकीना, हसीना दिलशाद और वसीम फातमा। मुबारकपुर उची तकिया आजमगढ़ से आपकी फरमाइश है, शुक्रिया आपका। राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम और अक्षय शिवाजी नगर खंडवा से। कृष्णा कॉलोनी हासी से सुभाष योगी, सुशील योगी, डब्बू और बब्बू। किदवई मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी और सुहेल हसन अब्बासी। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन के श्रोता। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती और पूजा। तेलंगाना वारंगल से ये संदेश ख्वाजा रिजवानुद्दीन, फसीउद्दीन, आयशा तबस्सुम और जुबेरिया का आया हुआ है। आनंद मिश्रा, ममता मिश्रा शिवपुर वाराणसी से हैं। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा। लाल माता सुदामा नगर रटलाई झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा, मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी, साथ में नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा और फुंदीबाई बागरी। मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फैजान लल्ला, फरहान लल्ला और समायरा आजमिन गुड़िया हमें सुन रहे हैं तेलंगाना भोंगीर से। तो आपने अगर संदेश भेज दिया है बाकी फिल्मों के लिए जो है संतोष, पिंटर बाबू, तपस्या और अपनापन, तो कार्यक्रम में बने रहें, बार बार संदेश ना भेजें और एक बार संदेश भेजें, एक संदेश में एक ही स्थान के कुछ श्रोताओं के नाम लिखें। और संतोष करें, इंतजार भी करें। संतोष इस फिल्म का नाम है जिसका गीत आप तक पहुंच रहा है और ये आवाज आशा भोसले की है, साथ में है नितिन मुकेश।

0: लो सर झुक गया है तुम्हें क्या खबर, लो सर झुक गया।
1: संतोष फिल्म का गीत और इस गाने के लिए फरमाइशें आप सबकी हैं। गुरप्रीत सिंह तांगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत कौर हमें सुन रहे हैं तांगोरी मोहाली पंजाब से।
0: मुझे कुछ पाने की।
1: चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजता खुराना, केशु और रिधान खुराना की फरमाइश। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और कमल साहनी हैं चोहल्दा बागपत से। एक बार अगर नाम शामिल हो जाए तो दोबारा न भेजें। बक्सर बिहार से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम और अक्रम अंसारी, मंगल जनागल, राही रोशनी जनागल, अंकुर जनागल और इंदु चकपांच एमडी पतरोड़ा से। सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन, रितेश सेन और कंचन माही सेन। गुरजीत सिंह है नगर पंचायत बिलसांडा पीलीभीत उत्तर प्रदेश के श्रोता। बजौनिया जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श और सार्थक चंसौलिया। आलिया खान, नाजिया खान, सादिया खान, वसीम खान कस्बा कलां शाहजहांपुर के श्रोता हैं। धरहरा से हैं वाराणसी में जगह है अनुलाक अंसारी, मल्लू अंसारी, इकबाल अंसारी, सलीम आजाद अंसारी और बदरुद्दीन अंसारी। शिव मंदिर हकीकतपुरा माऊ के श्रोता हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिश कौर, तन्मय गजभिये। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु और अर्णव आनंद। नागर कोहरा राजनंद।

गांव से बबलू साहू, जामुन देवी साहू और आराध्या साहू। कविता गौरव अनिल मानसी मदान हैं और परिवार के सदस्य करमपुरा नई दिल्ली से। बहुत शुक्रिया, आप डीटीएच पर हमें सुन रहे हैं। जज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। दादरी गेट भिवानी के श्रोता हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। ये फरमाइश तेलंगाना निजामाबाद से आई है शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख और रहीम मुन्ना की। इसी गीत को सुनना चाहा रईस खान, साबिया खान, अनस खान, शकील खान, दानियाल खान ने फूले नगर अम्बीवली मुंबई महाराष्ट्र से। मुबारकपुर आजमगढ़ से ये संदेश आया है जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा साहिन और तुबा अफरीन का। विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े और अदिति बंसोड़े हैं बीड शहर महाराष्ट्र से। पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन और प्रतीक्षा कुम्हार गली कोलगांव से आपकी फरमाइश आई, शुक्रिया आपका। दिनारा रोहतास से हैं प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, सौरभ कुमार, अर्पित कुमार और हर्षित कुमार। पदमपुर श्री गंगानगर में है, वहां से संदेश भेजा है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने। सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल और प्रथमेश देशमुख ने संदेश भेजा है कालेगांव जाफराबाद से। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग की फरमाइश बटिंडा मंडी डबवाली से। लल्लन मिश्रा, नूतन मिश्रा, अमन पाराशर, आराध्या और लल्लू पंडित नरहन स्टेट समस्तीपुर बिहार के श्रोता हैं। महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, और आपने ठकुराइन साहिबा ही लिखा है, ये कहें महेंद्र मोदी जी कि नाम लिख दिया करें। थोड़ा सा अगर इस तरह की चीजों को हम लोग शामिल करेंगे तो तमाम लोग बनावटी नाम भेजने लगेंगे। यशवंत साहू, रमेशिया, हर्ष और अंश साहू हैं लोहारीडी से। ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुया जाधव, जयराम शिंगड़कर, दिशांत कुमार शिंगड़कर और अर्पिता ने संदेश भेजा पोफाली यवतमाल से। शिवराम प्रजापति, गायत्री प्रजापति, शांतनु और रिया प्रजापति हैं गोसाईगंज सिकरारा बाजार जौनपुर से। मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज और उनके परिवार के बाकी सदस्य नूरमहल महसौल सीतामढ़ी बिहार से। श्रोताओं कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, आप ही के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित है। आज इस प्रोग्राम का सफर आप तय कर रहे हैं अपने दोस्त अरुण पांडे के साथ। वक्त 11:33:16 का और आपके तमाम संदेश बाकी फिल्मों के लिए मिले हुए हैं, तो इंतजार करें कार्यक्रम का, लुत्फ लें गीतों का।

रेलवे स्टेशन जमनिया से इस गीत को सुनना चाहा, और गीत पेंटर बाबू फिल्म से लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में जो आप तक अभी भी पहुंच रहा है, फरमाइश आपकी है। सुरेश चौधरी, राधिका देवी, आशीष कुमार, प्रकाश कुमार और परिवार के सदस्य। मुंदीचक भागलपुर बिहार के श्रोता हैं दिलीप कुमार सोनी। हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, अशफाक और आफरीन कौसर, के एच राही, गुड़िया बेगम, वकील और हम्माद जमील गंज डुंडवारा से हैं। स्टेशन रोड जमानिया से फरमाइश एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल की। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा है छत्तीसगढ़ पलारी से। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा जुबैर, अंजुमन खान और उनके परिवार के सदस्य। मुन्नी, अनुराग, अनुपम, अमृता, स्मृता और परिवार के सदस्य। गुरैनी, गाजीपुर से आपने दो बार आपने नाम भेजे और दोनों ही बार आपने ये बीएचयू का प्रॉस्पेक्टस है उस पर लिख करके रखा है। कोशिश करें, आप उम्मीद है कि जरूर संदेश जैसे बाकी भेजते हैं वैसे ही अपने नाम भी भेज सकते हैं, उसको फोटो खींचने फिर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। विनोद मूडत, नेहा जैन, दीपक और मयंक मूडत हैं बोरखेड़ा पित्रामल से। ये फरमाइश रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम और इमरान खान की है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से आई हुई। पुरानी भिलाई तीन चरोदा से हैं डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी और शाहनवाज अहमद सिद्दीकी। माया, शिवांश, चंद्रकला और देवीदास की फरमाइश। शुरुआत में एक नाम दो बार आया है, बंडू पोपल घट, उम्मीद है यही सही नाम होगा। निवासा खुपटी से हैं आप सब। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी हैं रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से। इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, रविंद्र सिंह।

छाबड़ा नई दिल्ली के श्रोता है। एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम एजाद कुरैशी और अरिबा हबीबा की फरमाइश पटियाली रोड गंज डुटवारा से आई हुई है। अनिल कुमार घोड़के वैशाली अनिल प्राजक्ता घोड़के हैं संभाजीनगर महाराष्ट्र से। प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी गुजरात गांजीग्राम से आपकी फरमाइश आई। और इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद और अजरा तबस्सुम हैं मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहूं से। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल खेड़ा और शालिनी खेड़ा हमें सुन रहे हैं फाजिलका पंजाब से। अम्बाला से हैं सोनाली, नारंग, पथिक और कृषि। गाजीपुर गांव नारी पचदेवरा डी बाबा चौराहा से अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके माता पिता। समर्थ दादा देठे पाटिल, भागवत देठे पाटिल की फरमाइश धामड़ गांव से आई है। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर और करण राहुल साहू। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध। चेतन साहू, गायत्री साहू, खुशी साहू की फरमाइश है रोहासी पलारी छत्तीसगढ़ से। धमदा ग्राम सुखरी कला के श्रोता हैं अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका और आदित्य जंघेल। और अब जो गीत आप तक पहुंच रहा है वो तपस्या फिल्म से है, किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजें। एमजी हशमत गीतकार हैं, रविंद्र जैन का संगीत।

और अब हम बताएंगे आपको उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने इस गीत को सुनना चाहा। आपने लिखा रेडियो सेट पर प्रसारण बाधित हो रहा है, रुक रुक कर आ रहा है, थोड़ा सा मीडियम वेव पर मौसम का भी प्रभाव होता है। बहरहाल आपकी बात हम लोगों ने जो हमारे साथी हैं नियंत्रण कक्ष के उन तक पहुंचा दी है। और आप हैं पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह, तो बहुत शुक्रिया आपको फीडबैक के लिए। शाहिद जमाल, आसिफ जमाल, दानिश जमाल और अनवर जमाल हैं मुबारकपुर पुरानी बस्ती के श्रोता। मगनपुर झारखंड से हैं अब्बास आलम, लोकेश जोशी, पायल जोशी, हंसिका जोशी और अकीता जोशी की फरमाइश बाटापारा छत्तीसगढ़ से आई हुई है। गांव जेवरा हिसार से हैं वीरेंद्र भयाण, सुरेंद्र भयाण और शमशेर भयाण। शम्स तबरेज, शाहिद परवेज, अकील अहमद, हबीब अंसारी, मखदूम नगर, बजरडीहा, वाराणसी से हमें सुन रहे हैं। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर हाजी अफजल मलिक और संदीप। मुबारकपुर पुरानी बस्ती से हैं शाहिद जमाल, आसिफ जमाल, दानिश जमाल और अनवर जमाल। जबलपुर से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, प्रीति सिंह और गुड़िया वेदा सिंह। पंचकुला सेक्टर 9 के श्रोता हैं आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान और लव दीवान। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू और मोनू। राजेश मिश्रा अमलई मध्य प्रदेश के श्रोता है, ये फरमाइश चौटाला हरियाणा से आई है दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा की। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत और चेतन भगत। कस्बा बराड़ा अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर और जयप्रकाश राहुल। शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, सब्जी मंडी बुल्ढाना के श्रोता है। नाना लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से और जयलाम से हमें सुन रहे हैं। छिंदवारा बेरडी से, बड़ा बाम्बो सुपाई गांव ये झारखंड में है, वहां के श्रोता है देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा और रेशमा। बगबुड़वा पथरिया से हैं नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम। गोपालपुर जौनपुर रमईपुर से अवधेश तिवारी, प्रियंका तिवारी अगर ये नाम है, थोड़ा सा नाम देख लेंगे, शिवांगी तिवारी, जयप्रकाश तिवारी और बाबा यादव और रमापति कन्नौजिया। सभी नामों की स्पेलिंग थोड़ी सी इधर उधर है, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा प्रयास करें। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और ओंकार गायकवाड़। भाटापारा छत्तीसगढ़ से फरमाइश अर्चना जोशी और रेणु अग्रवाल की आई हुई है। तकिया अंसार टोला ओला मड़ियाहू से, अच्छा ये ओला है या टोला है। जमील अहमद शाह, मोहम्मद अल्तमश शाह, दानिश शाह, रोमेश शाह, हसरत शाह, निगार बानो, राह जहां, रहनुमा बानो, रोशन जहां और शाइस्ता नाज। जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब के श्रोता है मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, हीना, शकीला और जासमीन। कोल सिटी बरका खाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू और तस्नीम। और अब महेंद्र मोदी जी ने उस नाम के ऊपर लिखा है कि वो जो नाम है वो है एडवोकेट ममता मोदी का। जिस तरह आप बहुत पुराने श्रोता हैं, आपको करीब हमें लग रहा है 30 साल पहले से आपके नाम हम लोग बोल रहे हैं, तो जिस तरह जिम्मेदारी आप पर है कि रेडियो की जो परंपरा है यानी सही शुद्ध बातों को श्रोताओं तक पहुंचाने का, वो प्रयास हमारा रहता है, वरना समय तो बदला है।

भी स्वीकारते हैं, लेकिन सभी श्रोताओं से उम्मीद है कि वो हमारे यकीन को बनाए रखेंगे और सही नाम, दुरुस्त नाम और जो वास्तविक नाम होंगे वो भेजेंगे, जगह के नाम भी सही लिखेंगे, ताकि वो जो बात कहते हैं ना कि दोनों ओर से इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हमारे श्रोता हैं सुरेंद्र संधू, अनिता संधू, रोहित संधू और रितेश, कुलम रोड, हरगोविंद नगर, नवा शहर से। अथर्व अग्रहरी, हनी अग्रहरी, मानसी अग्रहरी, खुशी अग्रहरी, मुरलीधर अग्रहरी और दीपू देवी हैं कालीमोहल दुद्धी सोनभद्र से। आपने लिखा है कि यही नाम पत्र वाले जो प्रोग्राम है उसमें शामिल किया जाए, तो ये तो संभव नहीं है, अलग अलग लोग होते हैं और ये जो व्हाट्सएप के मैसेजेज हैं आपके ये मिट भी जाते हैं समय के साथ। तो चिट्ठियाँ भेजें या फिर अगर आस पास आएँ वाराणसी में तो पहुँचा दें हमारे स्टूडियो तक। और अब हम पहुंचा रहे हैं प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, और ये ट्यून, इसने आपको बता दिया होगा कि ये गीत अपनापन फिल्म से है। जिंदगी का फलसफा, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज से आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

और चूंकि आखिरी गीत है तो ना चाहते हुए भी आपके नाम शामिल करने के प्रयास में हमें आपके नाम बताने होंगे। और पहाड़ी अशोक विहार कॉलोनी फेज दो के हमारे श्रोता अनिल गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, अंकुश कुमार गुप्ता और पूजा गुप्ता गौंड ने फरमाइश भेजी हुई है बहुत पहले, और साथ ही लिखा है कि रेडियो सेट पर प्रसारण थोड़ा सा बार बार तकनीकी दिक्कत आ रही है। इफ्तखार मोहम्मद अहमद, कैफ मोहम्मद, सैफ, एक साथ एक नाम लिखें ताकि नाम सही तरीके से आपके बताए जा सकें। आप हैं नई बाजार चंदौली से, मेरठ से हैं दिग्दर्शन और कविता गौंड, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, छत्तीसगढ़ से हैं श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी मरावी और रानी रजनी मरावी, व्हाइटफील्ड बेंगलुर के श्रोता हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष, मालियान सरदना मेरठ से हमें सुन रहे हैं अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और जीवीएम जैन। ये जो आप जैन साहब लिखते हैं तो क्या यही नाम है, वरना नाम जरूर पूरा सही नाम लिखें। उस्मान शेख, फौजी सायरा बानो शेख, बाबा शेख और सिमर शेख हैं हिप्पर सोगा लातूर से। कट्टू पहाड़िया के पास छतरपुर बुंदेलखंड से हैं बहादुर चक्रवर्ती, नंदकिशोर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, अंशिका, मोहिनी, गोलू, नीरज और उनके परिवार के बाद

किसन से भी। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा हमें सुन रहे हैं पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। इस रोल बाड़मेर से शफी मोहम्मद सोलंकी, गाजी खान, मागे खान, अतीक खान और रियाज खान। हिसार हरियाणा से धर्मेश मौर्य और अंचला मौर्य। मोहम्मद अफजल, अकमल और नफीसा प्रवीण हयात कॉलोनी अरेजय से हैं। और हमारे झालावाड़ के श्रोता ने भी लिखा, मोबाइल ऐप पर भी प्रसारण में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मौसम इधर ठीक नहीं है, इस वजह से ये दिक्कतें आ रही होंगी आपको।

शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी, अभय कुमार और रिया जिया हमें सुन रहे हैं पिहरा बाजार झुमरी तिलैया से। खरगोन सनावा से अशोक वर्मा और अर्चना वर्मा, बुलंदशहर से एमएस अब्बासी, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फारिया, फारिया और ताहिरा। मोहम्मद शहीद अब्बासी हैं आप लग रहा है। बबरी बाजार चंदोली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, सुंदर और सुमन जायसवाल। दिलदारगर गांव पश्चिम मोहल्ला से गाजीपुर से संदेश, जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव। जमानिया गाजीपुर के श्रोता हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल, राजेश खन्ना, चिन्ना पासी, सुनीता राज खन्ना, काठा गोदाम, कोठा गोदाम तेलंगाना से। रमेश नाचानी, भारती नाचानी हैं उदयपुर के श्रोता। ये फरमाइश एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौसर, इशिता साहनी और जयराम बिन सीतामुनि देवी, चौसा गोला बक्सर से। आपका नाम एक बार शामिल हो चुका है। जवाहर नगर उदयपुर से हैं बाबू भाई और भारती देवी, सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, डाबकी रोड अकोला से। दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिमी तनुश्री गुप्ता हैं। बहुरा पोस्ट दिलदारनगर से ये फरमाइश है अकलू राम, केदार राम और दीनानाथ सिंह की। सोनारी जमशेदपुर के श्रोता हैं कृष्णा जायसवाल, पूनम, विनोद और पिंकी जायसवाल। मुंबई से अनु बड़जात्या, शमसुल खान, अनुराज बेनारा। कुछ नाम ऐसे आते हैं जिनको आपस में भी श्रोता फिर लिखते हैं कि ये नाम सही नहीं है और फलाने लिखा और इसे ना पढ़ा जाए। अब बताएं आप ही कि हमें तो यकीन करना है आप पर, तो इसका ख्याल आपको भी रखना है। नंगल खेड़ा पगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश और राहुल शर्मा। शाहकुटी मुगलसराय से संदेश सोनू जायसवाल, मंजू डब्लू और माया जायसवाल का है। और अब जैसा लग रहा है श्रोताओं कि 11:57 तक जो भी संदेश आपके आए हैं वो शामिल हो चुके हैं, यानी अब कोई संदेश आपका बाकी नहीं है।

तो बाकी है वो बात कि आपको बता दें कि जो बुधवार को रिकॉर्डिंग हेलो फोन इन फरमाइश की हुई वो आप कल यानी शनिवार को 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे तक सुन सकते हैं। रविवार को पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम शाम 7:31 पर जरूर सुने और कोई भी प्रसारण से जुड़ी हुई बात आपको भेजनी है तो आप वहां हमें लिख सकते हैं pkldaiarvaranasi@gmail.com पर। आपके हर सलाह सुझाव का हमें इंतजार रहता है, लेकिन उस मेल आईडी पर फरमाइशें न भेजे, बहुत सारे श्रोता वहां फरमाइशें भेजते हैं तो वहां की फरमाइश हम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में शामिल नहीं करते। बुधवार और गुरुवार को जो मेल संदेशों पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस होता है इसी वक्त, उसकी मेल आईडी है aarvnsfgexp@gmail.com। तो वहां पर आप कभी भी फरमाइश भेज सकते हैं। और अब आज का ये प्रोग्राम यानी फरमाइशी गीत एक्सप्रेस समाप्त करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। ये कार्यक्रम श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
1: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
1: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओ, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
1: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
1: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
2: जी।
1: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
2: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक AC की तरह काम कर रहा होता है।
1: श्रोताओ, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है जो हमारे लिए हानिकारक है।
2: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
1: श्रोताओ, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
2: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
1: सचमुच श्रोताओ, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ।

0: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
0: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई दो या तीन कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है? कोई दो या तीन कारण बताइए।
1: 8800 4

0: रहा होता है, कोई दो या तीन कारण बताइए।
1: 8800-440-5559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
0: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
1: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था। मैं नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई।
1: सुने सुने सुने सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदाई भद्र। उदाई भद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदाई भद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धन नंद। बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
3: सिकंदर बढ़े।

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पोरू की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे, उनका मनोबल गिरता जा रहा था, उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी, आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया, सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर सिकंदर।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को

0: एक जगह इकट्ठा करो, ये सिकंदर का आदेश है।
1: जी सम्राट, ऐसा ही होगा,
2: ऐसा ही होगा,
1: ऐसा ही होगा।
3: सिकंदर आ गए, सिकंदर आ गए।
0: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही हम वापस लौटना चाहते हैं। सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें नया खजाना है।
4: मैसिडोनिया चलो,
0: वापस चलो सम्राट। सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों,
1: सबर करो साथियों। अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब जहां तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं डाल सकते।
0: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: पकड़ो दोस्तों को, भाग नहीं पाए, पकड़ो इनको।
1: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
2: महाराज चंद्रगुप्त आप?
1: हाँ
3: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
1: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
4: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए। मैं सावधान हूं।
1: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
5: धन्य हो आचार्य, धन्य हो आचार्य, धन्य हो आचार्य, धन्य हो
6: धन्य हो।
7: मगध सुखी था। चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीस सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी ना जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्यकालीन पाटलिपुत्र, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
2: 0542227658। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज कलाकार हैं प्रिया गुप्ता। पहले सुनिए संत कबीर दास की रचना।

मीराबाई की रचना अभी आप सुन रहे थे प्रिया गुप्ता के स्वर में। सुगम संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर शनीश कुमार ग्यावली का बांसुरी वादन। राग है शुद्ध सारंग, तबले पर संगति की है उदय शंकर मिश्र ने।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शनीश कुमार ग्यावली का बांसुरी वादन। राग था शुद्ध सारंग, तबले पर संगति की उदय शंकर मिश्र ने। फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, अब समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग

0: समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गई हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा से। मंजू, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर वहां के लोगों में कैसा उत्साह है और क्या तैयारियां की गई हैं?
1: जी हाँ कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां यहाँ पे काफी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री जी बस कुछ ही समय में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग ठंड में और अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि भारत और यहाँ के समय के बीच में 6.5 घंटों का फर्क है ऑकलैंड में। उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर, हमने देखा कि 4-5 घंटे पहले से ही जो है वो कतारबद्ध होने लग गए हैं। भारतीय समुदाय के अंदर यहाँ पे काफी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। और साथ ही आज जो है न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय अपना नववर्ष का जो पर्व होता है मातारी की, वो भी मना रहा है। और ऐसे में माओरी समुदाय के लोग भी पारंपरिक अंदाज में किया ओरा मोदी कहकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय समुदाय और स्थानीय न्यूजीलैंड वासियों दोनों में ही प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद मंजू। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर जोराम अनिया ने यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैक्रफी और उनके प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। इसमें बच्चों के विकास, स्कूली शिक्षा और मानव विकास पर सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। नीति आयोग के अनुसार बैठक में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और खंडों में सुरक्षित और समावेशी शिक्षण, मूलभूत साक्षरता, अध्यापकों की शिक्षा, विद्यार्थियों के कल्याण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर बातचीत हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरमौर और सोलन जिलों के सभी शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 747 अंक बढ़कर 77,488 पर, जबकि निफ्टी 223 अंक की बढ़त के साथ 24,186 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस लगातार 3री बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार रोली सोनकर, पिता का नाम कल्लू सोनकर, ये बच्छाओं वाराणसी की निवासी हैं और 27 फरवरी 2026 की सुबह 10 बजे से घर से स्कूल के लिए निकली और तब से लापता हैं। रोली सोनकर की आयु है 20 वर्ष, कद 4 फीट, रंग सांवला, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था स्कूल ड्रेस। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी को

सूचित करें। खुशी गर्ग पिता का नाम गोविंद प्रसाद गर्ग, ये मलहिया रमना सामने घाट लंका वाराणसी की निवासी हैं और 26 मई 2026 से सामने घाट से ही लापता हैं। खुशी गर्ग की आयु है 21 वर्ष, कद 5 फीट 4 इंच,

0: रंग गोरा, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था नारंगी रंग की टी शर्ट और नीली छीटदार लोअर। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी को सूचना दें। बबीता कुमारी, पिता का नाम पांचू राम, ये लखनपुर भुल्लनपुर वाराणसी की निवासी हैं और 7 मई 2026 से अपने घर से लापता हैं। बबीता कुमारी की आयु है 22 वर्ष, कद 4 फीट 8 इंच, रंग सांवला, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था काले रंग का सूट। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय वाराणसी को सूचित करें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। और अब जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। आज रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में डॉक्टर शनिश कुमार ग्यावली का बांसुरी वादन प्रसारित होगा। रात में 10 बजे आप सुनेंगे विज्ञान पत्रिका। इसमें संपादकीय के अलावा डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह से बातचीत होगी, सौंदर्य प्रसाधनों के पीछे का विज्ञान। साथ ही नीरू सिंह की वार्ता सुनिए, भविष्य के ईंधन। रात में 9:30 पर कार्यक्रम होगा अंजुमन। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे प्रिया गुप्ता के गाए भजन सुनवाए जाएंगे। शाम 6:30 पर कार्यक्रम कृषि जगत में धान की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट और उनका प्रबंधन विषय पर बातचीत के अलावा लोकगीत सुनिएगा। कलाकार होंगे शिवापति मिश्र। इनके गाए कुछ लोकगीत आप दिन में 1:45 पर लोक संगीत कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में आज के आकर्षण है आज की बात, सीने दर्पण में अभिनेता जितेंद्र पर जानकारी, यूथ डायरी में आज के शब्द, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। एक ही कलाकार कार्यक्रम होगा 2:30 पर, प्रस्तुति शिखा श्रीवास्तव की। 1:15 पर कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में आज फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा, क्या आप भी विज्ञापन देखकर करते हैं खरीदारी। साथ ही चर्चा और गीत संगीत। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज बीकापुर असेंबली हलके के एमएलए अमित सिंह चौहान के वालिद साबिक वजीर आनजहानी मुन्ना सिंह चौहान के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इसके साथ ही उन्होंने 432,70,09,000 रुपए के 217 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा और मुख्तलिफ स्कीमों के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक, हाउसिंग स्कीम की चाबियां, आयुष्मान कार्ड और टूल किट्स भी तकसीम कीं। जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब अवाम अच्छे नुमाइंदों को मुंतखब करती है तो तब्दीली आती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह अयोध्या में तब्दीली और तरक्की नज़र आ रही है, उसी तरह बीकापुर में भी तरक्की नज़र आ रही है।
1: आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, आज वो 4 लेन और 6 लेन की सड़कें हैं। चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी, आज अयोध्या को नई पहचान दे।

0: ला रहा है।
1: स्वाभाविक रूप से अयोध्या को पहचान मिलेगी तो बीकापुर को भी, रुधौली को भी, मिल्कीपुर को भी, गोसाईगंज को भी उसका लाभ प्राप्त होगा।
2: पुलिस की एक खसूसी टीम ने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के नजराने में बेजाबतगियों की तहकीकात को तेज कर दिया है। पुलिस ने 8 मुलजमीन के तकरीबन 30 बैंक अकाउंट्स को सीज कर दिया है। साथ ही उनके खानदान के अफराद और रिश्तेदार भी शक के दायरे में हैं। पुलिस ने कई दीगर अफराद को भी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस दरमियान श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने कहा कि ट्रस्ट अब ऐसे इंतजाम कर रहा है ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात रूनुमा न हों। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए जारी VIP पास सिस्टम में भी तब्दीलियां की गई हैं। खुसूसी पासेस के लिए नई रेफरेंस आईडी अभी जारी नहीं की गई है, इसलिए पहले से जारी किए गए खुसूसी पासेस की तौसीक की जा रही है, लेकिन नए पासेस नई रेफरेंस आईडी जारी होने के बाद ही जारी किए जाएंगे। मरकजी वजीर मुमलकत बराए खजाना और भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर पंकज चौधरी ने कल मिर्जापुर में पार्टी ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के साथ मीटिंग की ताकि तंजीमी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया जा सके। मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि अयोध्या के श्रीराम मंदिर में नजराने की चोरी की तहकीकात में जो भी कसूरवार पाया गया उसे सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। रियासती हुकूमत ने कल देर रात 20 IAS अफसरान का तबादला कर दिया, जिसके नतीजे में मेडिकल एजुकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बड़ा रद्दोबदल हुआ है। मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर जनरल और मेडिकल एजुकेशन की सेक्रेटरी डॉक्टर सारिका मोहन को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन बनाया गया है। नेहा शर्मा जो इस ओहदे पर काम कर रही थी उनको DGME और सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन का चार्ज दिया गया है। इटावा के चीफ डेवलपमेंट अफसर अजय कुमार गौतम का तबादला करके उन्हें एडिशनल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स गाजियाबाद फर्स्ट बनाया गया है। मुजफ्फरनगर में ADM एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर तैनात संजय कुमार सिंह को इटावा का नया CDO मुकर्रर किया गया है। एक मुल्क एक इंतखाब पर मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी आज से 15 जुलाई तक लखनऊ का दौरा करेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना तथा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना है। PP चौधरी की अध्यक्षता में गठित संयुक्त संसदीय समिति इस अध्ययन दौरे के दौरान उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, राज्य प्रशासन, वित्तीय एवं शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षाविदों, राज्य बार परिषदों, संबंधित उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघों, विभिन्न पेशेवर संगठनों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करेगी। समिति के अध्ययन दौरे में विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक और सार्थक विचार विमर्श होने की अपेक्षा है। लखनऊ से मुमताज अली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
2: रियासती हुकूमत 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे लगाएगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक मीटिंग में खसूसी हिदायत दी थी कि इस मुहिम को अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में अवाम की शिरकत के साथ मनाया जाए। इसको जहन में रखते हुए मरकजी और रियासती हुकूमतों के वज़रा मुख्तलिफ अज़ला में जाएंगे और पौधे लगाएंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक पेड़ माँ के नाम लगाएंगे, जबकि नायब वज़ीरे आला केशव प्रसाद मौर्य झांसी में और ब्रजेश पाठक लखनऊ में एक दरख्त लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर पंकज चौधरी भी लखनऊ में एक दरख्त लगाएंगे। रियासत के कई अजला में कल से वक्फे से बारिश हो रही है। कुछ अजला में मूसलाधार बारिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गई हैं। लखनऊ, फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर, संभल, नोएडा, हापुड़, अयोध्या, चित्रकूट, बिजनौर और बस्ती समेत कई अजला में कल हल्की से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
4: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:15 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
5: मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
6: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
4: 0542227658।
2: ओ 0542227658। लो अभी फोन लगाता हूँ। 0542227658।

0: सखियों के साथ,
1: सखियों की बात,
0: सखियों के जज्बात,
2: गृह लक्ष्मी।
3: कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को आपकी रेडियो सखी अंजना और
4: सिम्मी का नमस्कार।
3: सिम्मी, इतने बेसब्री से इंतजार के बाद फाइनली अब बारिश का मौसम आ गया ना, और थोड़ी गर्मी से राहत भी मिली है ना।
4: अंजना, बारिश की रिमझिम बूंदे पड़ते ही मौसम सुहावना हो गया। और जानती हो, जब मौसम सुहावना होता है, अच्छा होता है ना, तो हमारा मन भी अपने आप अच्छा हो जाता है। और जब मन अच्छा होता है, खुश होता है ना, तो हमारा हर काम में मन लगता है और हम दिन भर एक्टिव भी रहते हैं।
3: बिल्कुल सिमी, खुद को एक्टिव रखने के लिए आपके दिन की शुरुआत सक्रियता और सकारात्मक ऊर्जा के साथ करने के लिए सुबह की आपकी अच्छी आदतें मददगार हो सकती हैं।
4: और साथ ही हमें अपनी जीवन शैली में भी कुछ बदलाव लाने होंगे ना, और हमारी सेहत अच्छी रहे, हम दिन भर एक्टिव रहें, इसके लिए सुबह सुबह जल्दी उठना होगा। और जल्दी हम तभी उठ पाएंगे जब हम रात को जल्दी सोएंगे, क्योंकि जब हम 7 से 9 घंटे की अच्छी और पूरी नींद लेते हैं ना, तो सुबह अपने आप ही आंख खुल जाती है और हम दिन भर तरोताजा भी फील करते हैं।
3: बिल्कुल सखियों, एक अच्छी मॉर्निंग रूटीन न सिर्फ आपके शरीर को जगाती है, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी पूरे दिन के लिए तैयार करती है।
4: और उठने के बाद ना, आपको अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से नहीं करनी है, बल्कि गुनगुने पानी से ही करनी है। और इसके साथ ही सुबह सुबह टहलना भी है, योग भी करना है, क्योंकि
3: जी। और सिमी, ऐसा भी होता है ना, बहुत सारे लोग सुबह उठकर सबसे पहले अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं, और आधा से ज्यादा टाइम तो फोन देखने में ही चला जाता है। सखियों, इससे दिमाग पर बेवजह तनाव बढ़ता है। और सुबह सबसे पहले आप उठकर कुछ घंटे खुद को दीजिए, अपने परिवार को दीजिए।
4: तो इसके लिए आप योगा करिए। जानते हैं, जब हम योग करते हैं, टहलते हैं ना, तो हमारा तन मन स्वस्थ रहता है, क्योंकि जब हम प्रकृति के बीच बैठकर कुछ समय बिताते हैं तो मानसिक और भावनात्मक रूप से भी रिलैक्स रहते हैं और हमारा तनाव भी कम रहता है।
3: बिल्कुल। और सुबह की ताजी धूप और हवा शरीर में सुस्ती को खत्म कर तुरंत एनर्जी भर देता है। और सखियों, सुबह की हेल्दी और पौष्टिक नाश्ता भी जरूरी है, जिससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करते हैं।
4: बिल्कुल। और साथ ही हम सखियों, कोई भी काम बिना तनाव के करें, एकदम रिलैक्स होकर करें, इसके लिए हर काम को करने से पहले उसकी पूरी योजना हम एक दिन पहले बना लें, या काम शुरू करने से पहले बना लें, तो फिर काम को करने में परेशानी नहीं होती, बल्कि उपयोगिता के अनुसार हम उसके कामों को अपने निपटाते रहते हैं ना, तो हर काम बड़े आराम से और आसानी से हो जाता है।
3: बिल्कुल सिमी। और दिन भर के काम में आप थोड़ी देर के लिए आराम भी करें, क्योंकि लगातार काम भी आपको थका देता है ना, थोड़ा आराम भी जरूरी है ना।
4: हाँ। और अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, पूरे उत्साह और उम्मीद से अगर हम करते हैं

0: हमें हर काम में सफलता मिलती है। और अंजना, हर काम में सफलता मिलती है, हम खुश रहते हैं ना, और उसके लिए हम अगर हम पसंदीदा काम करें तो ज़्यादा खुशी मिलती है। और जानती हो, हम सभी को एक चीज बहुत पसंद होती है,
1: शॉपिंग करना। हम महिलाओं की पसंदीदा चीज है ना।
0: और जानती हो, शॉपिंग का नाम सुन के ना मैं तुरंत एक्टिव हो जाती हूँ और कुछ ही मिनटों में ना तैयार भी हो जाती हूँ।
1: बिल्कुल सिमी, आज हमने अपनी सखियों से फोन कॉल के द्वारा भी जाना है कि उन्हें शॉपिंग करना कैसा लगता है और शॉपिंग करते समय वो किन बातों का ध्यान रखती हैं। तो आइए सुनते हैं सखियों से हमारी ये बातचीत।
2: हेलो सहेली, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बोल रही हैं?
3: मैं भूमिका नोएडा से बोल रही हूँ।
2: भूमिका जी, हमारा आज का क्वेश्चन ये है, आपको शॉपिंग करना कैसा लगता है?
3: देखिए, मुझे तो शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है और मेरे जैसी बाकी महिलाएं भी शॉपिंग करने से पीछे नहीं हटती हैं।
2: हाँ, ये तो आपने सही कहा, शॉपिंग हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो आप जब भी शॉपिंग करती हैं यानी खरीदारी करती हैं तो उस समय आप विज्ञापन को देखती हैं या अन्य चीजों को भी ध्यान रखती हैं?
3: देखिए, मैं विज्ञापन को तो नहीं देखती हूँ, मेरी जो रिक्वायरमेंट होती है मैं उसी हिसाब से खरीदती हूँ। मेरा जैसा बजट है मैं सामान उसी हिसाब से खरीदा, जैसे मुझे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है पर कभी सेल लगी है तो मैं सेल में ज्यादा खरीदना प्रेफर करती हूँ बाकी चीजों के मुकाबले। जैसे मान लो कपड़ों पे कभी डिस्काउंट आया या किसी और चीज पे ज्यादा डिस्काउंट मिल गया तो फिर मैं खरीद लेती हूँ।
2: पर कई बार ये भी तो होता है ना कि सेल में हम ज्यादा चीजें भी खरीद लेते हैं और उन चीजों को भी खरीद लेते हैं जिसकी हमें उस समय जरूरत नहीं है, तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या?
3: नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। देखिए, मेरे पास मेरी लिस्ट बनी हुई होती है कि मुझे किस चीज की शॉपिंग करनी है और किस चीज की शॉपिंग नहीं करनी है। मैं फालतू की चीजों पे खर्चा नहीं करती हूँ। जैसे मेरे को ग्रोसरी, जैसे मेरे किचन के काम में मैं अपना ज्यादा सेल का यूज करती हूँ। जैसे मान लो मेरा घर में घी की रिक्वायरमेंट अगर एक महीने में 2 डिब्बे लग रहे हैं तो मैंने 3 ले लिए, मुझे पता है कि एक्सपायरी भाई मेरी इतनी चल जाएगी तो मैं उसके हिसाब से शॉपिंग करती हूँ। और हाँ, कपड़ों में इतना मैं ध्यान नहीं देती हूँ इस चीज के लिए, लेकिन हाँ, लेकिन खाने पीने की चीजों में मैं क्वालिटी और प्राइस दोनों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती।
2: भी यानी कि आप जब भी सामान खरीदती हैं तो एक्सपायरी डेट तो चेक करती ही हैं। और इसके अलावा आप शॉपिंग करते समय ऑनलाइन सामान ज्यादा खरीदती हैं या फिर ऑफलाइन?
3: देखिए, मेरे यहाँ तो सबसे ज्यादा ऑनलाइन सामान ही खरीदा जाता है, लेकिन हाँ, कपड़े वगैरह जो है वो जरूर मैं जाकर मार्केट में घूमती हूँ, कई जगह मैं ट्राई भी करती हूँ, शायद इसके सस्ता मिल जाए, इसके सस्ता मिल जाए, तो मैं उस हिसाब से शॉपिंग करती हूँ।
2: यानी आप सामान देखते खरीदते समय प्राइस का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, उसके बाद ही खरीदारी करती हैं,
3: क्योंकि बजट भी बहुत जरूरी है हमारे
2: बिल्कुल
3: जीवन में। बजट नहीं होगा तो फिर हम क्या ही खरीदेंगे।
2: नहीं, ये तो आपने बहुत सही बात की। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, कॉल करने के लिए धन्यवाद।
3: मेरी पसंद का एक गीत सुनवा दीजिए, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे।
2: जरूर लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: कौन बोल रही हैं आप?
2: ज्योति मौर्य बोल रहे हैं।
0: कहाँ से बोल रही हैं ज्योति जी?
2: शिवपुर तरना से बोल रहे हैं।
0: और ज्योति जी क्या करती हैं?
2: जी मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: और हमारा प्रोग्राम सुनती हैं?
2: जी हाँ सुनते हैं। अच्छा हम आपका सारा प्रोग्राम।
0: अच्छा आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है?
2: बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा ज्योति जी आपको शॉपिंग करना कैसा लगता है?
2: शॉपिंग करना तो किसे भी पसंद है, सबको शॉपिंग करना पसंद है, मुझे भी पसंद है।
0: ये बात तो आपने सही कही क्योंकि महिलाओं को भाई शॉपिंग करना तो पसंद होगा ही। तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करती हैं या फिर ऑफलाइन?
2: मैं तो ज्यादातर ऑफलाइन शॉपिंग करती हूँ, ऑनलाइन कभी कभी मतलब कर लेती हूँ, लेकिन ऑनलाइन हमें ज्यादा अच्छा नहीं लगता है करने में।
0: ऑनलाइन जैसे फोन चलाती है सोशल मीडिया पे या फिर किसी चीज पर कोई विज्ञापन आ जाता है तो आपका मन नहीं करता है कि ये विज्ञापन आ रहा है मैं भी इस चीज को खरीद लूं, ऐसा कभी होता है?
2: हाँ हाँ कभी देखते हैं आता है विज्ञापन तो सोचते हैं कि मंगाए, लेकिन फिर एक दो बार हमने मंगाया भी लेकिन हमें जैसा मतलब प्रोडक्ट चाहिए वैसा आता नहीं है, इसलिए हम ज्यादा ऑनलाइन ही लेते हैं। अरे ऑनलाइन नहीं लेते हैं, ऑफलाइन लेते हैं।
0: जी जी। अच्छा ऐसे कौन सी चीज आपने मंगाई थी जो अभी भी ऐसे पड़ा हुआ है और बहुत महंगा मंगा लिया था आपने और आपके कोई यूज का ही नहीं वो निकला, ऐसा कोई समय था?
2: देखिए मैं तो ऑफलाइन मतलब लेती हूँ और ऑनलाइन अगर मैंने कुछ मंगाया है तो मैंने बहुत ज्यादा महंगा नहीं मंगाया है। मैं जब भी मंगाती हूँ तो अपने बजट के हिसाब से मंगाती हूँ। और मतलब मंगाई थी एक साड़ी मंगाई थी तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, जैसे मतलब फोटो जैसा उसका था वो सब मतलब उस तरह का आया ही नहीं, वो मेरे घर अभी फेंका ही पड़ा है, मैं उसको यूज ही नहीं की मैंने।
0: मतलब आपका ऑनलाइन वाला एक्सपीरियंस खराब निकला है ना?
2: हाँ हाँ बहुत तो बोलता है कि ऑनलाइन का अच्छा होता है लेकिन मुझे नहीं पसंद है।

0: पसंद ही नहीं आया, इसलिए मैंने एक दो चीज मंगाया लेकिन फिर नहीं मंगाती, खुद जाके ले लेती हूँ, वो सही रहता है।
1: जी जी, तो आप ज्यादातर ऑफलाइन शॉपिंग ही करती है ना?
0: जी हाँ।
1: बहुत अच्छी बात है, वैसे ऑफलाइन शॉपिंग करना सही है, चीजों को देखो समझो उसकी क्वालिटी देखो, देखो खरीदो तो सही रहता है,
0: उसमें कोई अभी चार्ज नहीं रहता है।
1: अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि आप ऑफलाइन शॉपिंग कर रही हो और ऐसा होता है ना कि आप किसी मॉल में या फिर शोरूम में या फिर किसी दुकान पर बाय वन गेट वन का भी तो ऑफर आता है, 50% ऐसे ऑफर आता है, तो आप क्या ऐसे लुभावने विज्ञापन पे मतलब होता है कि हाँ ये चीजें खरीद लेते हैं, ऐसा होता है कभी?
0: जी हाँ, मतलब जैसे जाते हैं हम अगर मॉल में तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जो चीज हमें अच्छा लगता है तो देखते हैं, अगर हमारे मतलब बजट के हिसाब से रहता है या वो चीज हमको लेना है उससे है उसपे मतलब बाय वन गेट वन है तो वो चीज है तो ले लेते हैं। ये नहीं होता है कि जैसे कि कोई चीज के लिए हो रहे हम बस देख लिए बस ये नहीं, जो हमको चाहिए होता है वो लेते हैं, चाहे वो मतलब उसमें ऑफर रहे चाहे ना।
1: जी जी, मतलब आप अपने बजट का ख्याल रखती हैं, मतलब आप एक कुशल गृहिणी है ज्योति जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: हेलो।
3: हेलो सहेली, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बोल रही हैं?
2: मेरा नाम शैलजा है, मैं दिल्ली से बोल रही
3: हूँ। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ तो शैलजा जी, आपको शॉपिंग करना पसंद है?
2: शॉपिंग तो मुझे बहुत पसंद है, शॉपिंग तो एक तरीके से मूड फ्रेश कर देता है, कभी भी अगर मैं सैड मूड में होती हूँ या मेरा दिन अच्छा नहीं जाता तो मैं शॉपिंग करने चली जाती हूँ।
3: जी ये तो आपने बहुत सही बात कही, हम सभी को शॉपिंग करना बहुत पसंद है, तो हमारा आज का क्वेश्चन भी यही है कि क्या आप भी विज्ञापन देख कर खरीदारी करती हैं?
2: जी बिल्कुल नहीं, मैं विज्ञापन देखकर नहीं करती, क्योंकि विज्ञापन कई बार इतने अट्रैक्टिव लगते हैं कि जरूरी नहीं है प्रोडक्ट उतना अच्छा हो, और जब भी मैं सामान खरीदती हूँ तो मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स की और कस्टमर की रिव्यूज को जरूर देखती हूँ, और सामान की क्वालिटी हो गई, प्राइस हो गया और कस्टमर रिव्यूज हो गए, इन सबको देख कर ही लेती हूँ। जैसे कि अगर ग्रोसरी का सामान खरीद रहे हैं तो एग मार्क देख लिया, ISI मार्क को चेक कर लिया, और एक्सपायरी डेट हो गई, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई, तो ये सब सारी चीजें देखकर ही खरीदती हूँ मैं, क्योंकि इन मार्क्स को देखना और इन सारी चीजों को देखने से ये लगता है कि क्वालिटी तो अच्छी है और कहीं ना कहीं ये सेफ्टी के प्रोटेक्शन का भी देते हैं कि हाँ जो प्रोडक्ट है वो हमने ठीक चुना है, भरोसेमंद प्रोडक्ट है और सही सामान चुना है हमने, तो ये सारी चीजों को देखकर लगता है कि हमारा प्रोडक्ट ठीक है।
3: यानी आप जब भी कोई सामान खरीदती हैं तो उस पे हॉलमार्क का निशान जरूर देखते हैं, उसके बाद ही खरीदती हैं।
2: जी जी
3: है ना, ताकि हमारे सामान की क्वालिटी अच्छे से आ जाए।
2: हाँ जी।
3: और आप कोई भी सामान लेती हैं तो ब्रांडेड सामान लेना ज्यादा पसंद करती हैं या फिर हमारे आसपास की लोकल मार्केट से?
2: देखिए वैसे तो मैं अपने बजट के हिसाब से ही खरीदती हूँ, अगर लोकल मार्केट में अच्छी क्वालिटी मिल जाए और कम प्राइस मिल जाए तो वहीं से खरीद लेती हूँ, लेकिन जहाँ बात क्वालिटी की आती है और थोड़ी सेफ्टी की आती है तो मैं हमेशा ही ब्रांड को चुनना पसंद करती हूँ।
3: यानी आप ब्रांडेड सामान के साथ साथ लोकल मार्केट का भी सामान लेती हैं?
2: जी बिल्कुल, आदत भी है कि मैं हमेशा जब भी सामान खरीदती हूँ तो एक शॉपिंग लिस्ट बना लेती हूँ, जिसको क्या होता है कि मैं कोई सामान ऐसा ना खरीदूं जो मेरे यूज में नहीं है, तो इन सारे सामान को जो मेरे यूज में नहीं है उनको खरीदने से बच जाती हूँ, तो ऐसे मेरे घर का बजट भी नहीं बिगड़ता।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप जो खरीदारी करती हैं वो बहुत समझदारी से बजट को ध्यान में रखते ही करती हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, कॉल करने के लिए धन्यवाद।
2: थैंक यू।
4: हेलो।
5: हेलो नमस्कार, कौन बोल रही हैं आप?
4: जी मैं माही बोल रही हूँ।
5: कहाँ से बोल रही हैं?
4: इगरा से।
5: और माही आप हमारा प्रोग्राम सुनती हैं?
4: जी हाँ सुनती हूँ।
5: तो आज का विषय भी आपको पता होगा?
4: जी हाँ, ये विज्ञापन सुने थे कुछ, विज्ञापन
5: विज्ञापन देखकर खरीदारी करने के लिए ना?
4: जी।
5: विज्ञापन देखकर आप खरीदारी करती हैं?
4: हाँ करती हूँ।
5: अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आपने टीवी या फिर सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट का विज्ञापन एड देखा और बिना सोचे समझे आपने उसे ऑर्डर किया, ऐसा कभी किया?

0: किया, देखती हूँ पहले अच्छा लगता है, सोचती हूँ समझती हूँ तब ऑर्डर करती हूँ।
1: मतलब ज्यादातर आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं या फिर ऑफलाइन?
0: जी मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों शॉपिंग करती हूँ।
1: सबसे बेहतर आपको क्या लगता है?
0: ऑफलाइन जी, ऑनलाइन पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखने में चीजें अच्छी लगती हैं, मंगवाने के बाद बकवास निकल जाती है, बेकार। और लेकिन
1: ऐसा
0: ये
1: क्या?
0: भी एक फायदा है कि घर बैठे बैठे चीजें आ जाती हैं, जाना नहीं पड़ता
1: जी
0: है।
1: जी ये तो सही कहा कि ज्यादा अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगा लो, मार्केट न जाने का होता
0: हाँ,
1: नहीं।
0: बच्चे छोटे हैं, ज्यादातर बाहर नहीं जा पाते हैं, तो ऑनलाइन कोई भी चीज मंगा लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि चीजें खराब भी आ जाती हैं।
1: जी अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी ऐड देखती हैं और जैसे कि बाय वन गेट वन का या फिर 50% ऑफ का ऐसा आता है ना ऐड, या फिर कोई
0: जी
1: सेल लगा रहता है, तो आप ये ऐड देख करके तुरंत शॉप पर चली जाती हैं या फिर किसी फ्रेंड सर्कल से फीडबैक लेती हैं कि ये सामान सही है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ऐसा कभी होता है?
0: हाँ, मैं अपने फ्रेंडों से पूछती हूँ पहले कि ये चीज लेना चाहिए कि नहीं, तो वो लोग भी यही कहते हैं मुझसे कि माही बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं चीजों पे। देखने में ठीक है लेकिन अच्छी क्वालिटी आती नहीं है, लेकिन जब फ्री देखते हैं तो ऐसा मन होता है कि ले ले, तो ले भी लेते हैं कभी कभी। जी
1: जरूरत न होने पर भी वो सामान आप खरीद लेती हैं जिसपे सेल होता है, ऑफर होता है?
0: हाँ, कभी कभी ले लेती हूँ, हर टाइम नहीं लेकिन ले लेती हूँ कभी कभी।
1: अच्छा, ये भी चीजें तो होती हैं कि आप अपने बजट का भी तो ख्याल रखती होंगी कि
0: हाँ
1: मतलब
0: बिल्कुल,
1: कुछ भी,
0: नहीं
1: मतलब घर में जो
0: बिल्कुल
1: चीजें पड़ी हुई हैं तो भी आप वो सामान
0: जी,
1: खरीद
0: नहीं बिल्कुल, अपना बजट लेके देख के चलते हैं, बजट के हिसाब से ही चीजें लेते हैं। हाँ, घर में नहीं रहता ज्यादातर, जब घर में चीजें नहीं रहती तभी लेते हैं।
1: अच्छा, तो ऑनलाइन शॉपिंग आप ग्रोसरी, कपड़े और कोई भी मतलब ये ब्यूटी प्रोडक्ट सारी चीजें लेती हैं या
0: हाँ
1: फिर?
0: कुछ, हाँ सब कुछ, जो भी पसंद आ जाए, जिसकी भी जरूरत हो कुछ भी ले लेते हैं। कपड़े ज्यादातर कपड़े ही लेते हैं,
1: अच्छा
0: लेकिन अच्छा नहीं आता है, देखने में जो चीजें दिखाई जाती है वैसे आता नहीं है।
1: जी,
0: थैंक
1: अच्छी बात है माही, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: यू,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते। हेलो
2: हेलो, आप कहाँ से बोल रही हैं? आपका नाम क्या है? तो
3: मैं सुमन लक्सा से बोल रही हूँ यहाँ
2: सुमन
3: से।
2: जी, नमस्ते
3: नमस्ते।
2: नमस्ते। सुमन जी,
3: हाँ,
2: आप क्या करती हैं?
3: मैं हाउसवाइफ हूँ।
2: हाउसवाइफ हैं? तो फिर तो आप घर की खरीदारी तो वैसे सभी हम महिलाएं करती हैं। अच्छा ये
3: हाँ,
2: बताइए, आपको खरीदारी करना कैसा लगता है, यानी शॉपिंग पर जाना पसंद है?
3: मुझे बहुत पसंद है शॉपिंग पर जाना, और मैं जाती हूँ हफ्ते में बहुत बार, निकल जाती हूँ 2-3 बार तो, जैसे घर के काम करते हुए, परिवार को देखते हुए, फैमिली के साथ रहते हुए, फिर भी मैं जाती हूँ क्योंकि मुझे शौक है।
2: यानी आपको बहुत ज्यादा पसंद है।
3: हाँ
2: तो जब आप खरीदारी करती हैं तो विज्ञापन देखकर सामान खरीदती हैं या फिर कुछ भी जो मन में आया वो ले लेती हैं, या कुछ बातों का ध्यान भी रखती हैं?
3: नहीं, मैं तो विज्ञापन देख के ही लेती हूँ। जैसे कि अगर मुझे कोई सामान लेना है तो पहले मैं उसका सारा डिटेल देखती हूँ कि वो मेरे लिए, मतलब वो सामान अच्छा है, उसका एक्सपायरी डेट जो है वो कब तक का है, और ये देखती हूँ कि वो मतलब काफी हद तक मतलब चल रहा है, कितने दिनों के लिए बना है, ये सब कुछ देखते हुए मैं सामान लेती हूँ। और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कुछ जैसे खाने पीने का सामान लेती हूँ
2: हाँ,
3: तो ये सब देख के ही मैं सामान लेती
2: यानी आप सामान खरीदते समय उसकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग देखती हैं डेट, और साथ
3: हूँ।
2: ही इंग्रेडिएंट्स भी देखते हैं कि ताकि कोई सामान गलत ना आ जाए। अच्छा, आप जब सामान खरीदती हैं तो ऑनलाइन सामान ज्यादा लेना पसंद करती हैं या फिर आसपास जो मार्केट है, लोकल मार्केट, वहां में जाकर लेती हैं?
3: देखिए, मैं मार्केटिंग तो करती हूँ तो जो चीजें ऑनलाइन मुझे, मतलब कुछ चीजें ऑनलाइन पसंद आती है कि मार्केट नहीं जा पाती हूँ या नहीं मिलता है, तो उसको ऑनलाइन ले लेती हूँ, और वरना नहीं तो मैं खुद से जाके लेना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ चीजें जैसे पैसा भी कुछ थोड़ा ज्यादा होता है, और सामान भी पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं, जो दिखता है वही आता है कि नहीं, ये सब देख के ही सामान लेती हूँ, तो इसलिए जाके लेना ज्यादा पसंद करती हूँ।
2: भाई सही कह रही है, ऑनलाइन में सामान अच्छा भी आ सकता है और थोड़ा कई बार गलत भी हो सकता है, तो आप यानी खुद ही जाके सामान खरीदना पसंद करती हैं। और आप हमारा कार्यक्रम सुनती हैं?
3: हाँ, मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग, आपका कार्यक्रम, आप लोग जो बात करती हैं उसमें अच्छी अच्छी

0: और हाउस वाइफ होने के नाते जैसे घर कुछ भी अच्छी अच्छी डिशेस ये सब बताती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बात करती हैं तो वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि कोई पुराने फ्रेंड अपने हो, ऐसा बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनकर वो।
1: यानी आप हमारे कार्यक्रम से इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाती हैं कि आपको लगता है कि हम सहेली हैं, वैसे भी हम सहेली ही हैं।
0: हाँ, और टाइम जैसे ही होता है मैं तुरंत ऑन कर देती हूँ कि अब आएगा प्रोग्राम, मैं मुझे सुनना है, काम करते करते अपना चालू कर देती हूँ रेडियो, तो सुनती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, और टाइम ही बीत जाता है, काम भी हो जाता है।
1: हाँ जी, रेडियो तो ऐसा साधन है जो काम के साथ साथ अपनी बातें भी सारी सुनवा देता है। जी सहेली, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने कॉल की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: वाकई अंजना, नई चीजें खरीदने से मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, और हमारे जीवन में ये रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें ही होती है ना जो हमारे मन को बहुत खुशी दे देती हैं।
3: बिल्कुल सिडनी, और अगर एक प्यारा सा गीत भी सुन लेते हैं तो मन और भी खुश हो जाएगा।
2: तो सुनते हैं ये गीत।

0: बिल्कुल सखियो, खुश रहने के लिए किसी बड़ी उपलब्धि की जरूरत नहीं होती, बस रोजमर्रा की चीजों में आनंद ढूंढे। और अब हम चलते चलते अपनी सखियों से यही कहेंगे कि खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमें दें अनुमति।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: सखियों के साथ
1: सखियों की बात
0: सखियों के जज्बात
2: गृह लक्ष्मी
3: महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के ठीक 1:45 हुए हैं। लोक संगीत कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं शिवापति मिश्र के गाए लोकगीत। पहले सुनिए एक कहरवा।

0: Palestinian territories, including Jerusalem, the West Bank, and the Gaza Strip. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall in Uttarakhand for this day. IMD said heavy to very heavy rainfall is likely over northern parts of Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim and Northeast India for the next 2 days. Talking to Akashwani News scientist at IMD, Dr. Shashikant said there is no warning for Delhi and NCR today and tomorrow.
1: 9th of July of this month, from 1st June 2026 to 9th July, monsoon rainfall departure was negative in minus 14 over our country, and main zone of negative departures was recorded over eastern parts of Uttar Pradesh, Bihar and northeast India, in south Kerala and coastal Karnataka, and western parts of the country, Saurashtra and Marathwada.
0: Monsoon activity continues to remain active across several parts of Himachal Pradesh, with persistent rainfall affecting many areas. A report.
2: The southwest monsoon continues to remain active in Himachal Pradesh, with widespread rainfall affecting normal life in Shimla, Solan, Sirmaur and several other parts of the state. Pachad in Sirmaur district recorded the highest rainfall of 207 mm since last night. Heavy rainfall has led to a rise in the water levels of the rivers and streams, prompting the administration to advise people to remain cautious and avoid venturing near water bodies. As a precautionary measure, all educational institutions in Sirmaur and Solan districts have been closed today. Continuous rainfall has also triggered landslides in different parts of the state, while power and drinking water supply have been disrupted at several places.
0: In the FIFA World Cup, in the second quarterfinal tonight, Spain will face Belgium. India's women's cricket team will create history today when they play the first test match at the iconic Lord's Cricket Ground in London against England this evening. It will be the first ever women's test to be held at the Lord's. Led by Harmanpreet Kaur, India will look to make the occasion memorable in this historic encounter. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive shortly in Auckland on two-day visit to hold talks with his New Zealand counterpart. Centre amends drugs rules to regulate high alcohol-containing drug formulations. India strongly condemns conflict-related sexual violence at UNSC, describes it as tool of war and terrorism. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Uttarakhand today. In FIFA World Cup, Spain to face Belgium in second quarter-final tonight. And in women's cricket, India to take on England in historic one-off test match at Lord's Cricket Ground in London this evening. The details of these stories and more log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है
4: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया

0: आया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
2: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और

0: संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
1: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
0: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश सोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
3: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल हैं। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की संभावना संभावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी।

0: किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा, वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।
3: नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट शिखा, और आप सुन रहे हैं आपका चहेता शो एक ही कलाकार। दोस्तों, आज हमारा कारवां रुकने जा रहा है हिंदी सिनेमा के एक ऐसे सुनहरे पन्ने पर जिसने जिंदगी के सबसे गहरे दर्शन को सीधे, सरल और आम इंसान के शब्दों में पिरो दिया। राज कपूर उन्हें प्यार से कविराज कहते थे, तो दुनिया उन्हें जन कवि के नाम से जानती है। जी हाँ, आज के हमारे एक ही कलाकार हैं अतुलनीय अमर गीतकार शैलेंद्र। शैलेंद्र साहब का लिखा गाना सिर्फ गाना नहीं था, वो आम आदमी के सुख दुख और उसकी उम्मीदों का एक आईना था। आइए सफर की शुरुआत करते हैं उनके एक ऐसे सदाबहार तराने से जो आज भी हर मुसाफिर की जुबा पर गुनगुनाता है।

वाह, दिल बहलता है जिससे वो राज है, क्या बात कही थी शैलेंद्र जी ने। दोस्तों, शैलेंद्र जी के शब्दों में जो सादगी थी वो सीधे उनके जीवन के संघर्षों से निकल कर आई थी। 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में जन्मे शैलेंद्र का बचपन बहुत गरीबी में बीता। जब वे मुंबई आए तो माटुंगा रेलवे वर्कशॉप में एक वेल्डिंग अप्रेंटिस के रूप में काम करते थे। दिन भर लोहे और आग के बीच काम करना और रातों को कविताएं लिखना। एक बार एक कवि सम्मेलन में वो अपनी मशहूर कविता जलता है पंजाब पढ़ रहे थे। वहीं मौजूद थे शोमैन राज कपूर। राज साहब को कविता इतनी पसंद आई कि उन्होंने शैलेंद्र से इसे फिल्म आग के लिए खरीदने की इच्छा जताई, लेकिन खुददार शैलेंद्र ने साफ मना कर दिया और कहा, मैं अपनी कविताएं बेचता नहीं हूँ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब शैलेंद्र के घर में पैसों की सख्त जरूरत पड़ी तो वे खुद राज कपूर के पास गए। राज साहब ने बिना एक पल गवाए उनकी मदद की और यहीं से शुरुआत हुई हिंदी सिनेमा की सबसे ऐतिहासिक जोड़ी की, राज कपूर, शंकर जयकिशन और शैलेंद्र। फिल्म बरसात में उन्होंने अपना पहला गाना लिखा और वो गाना इतिहास बन गया।

आप सुन रहे हैं एक ही कलाकार और आज हम याद कर रहे हैं गीतकार शैलेंद्र को। दोस्तों, शैलेंद्र की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे बिना भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किए दिल की सबसे गहरी बात कह जाते थे। आवारा, श्री 420 और अनाड़ी जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने राज कपूर को वैश्विक पहचान दिलाई। रूस और चीन की गलियों में जब लोग मेरा जूता है जापानी गाते थे तो वो असल में शैलेंद्र के लिखे जादुई बोलों को ही जी रहे होते थे। शैलेंद्र साहब ने जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को भी बेहद खूबसूरत अंदाज में ढाला। चलिए आपको उनके लिखे एक ऐसे ही रूमानी और सदाबहार गीत की तरफ ले चलते हैं जिसकी सादगी में ही उसका असली जादू छुपा है।

दोस्तों, शैलेंद्र सिर्फ एक गीतकार नहीं थे, वे एक बेहतरीन इंसान और दोस्त भी थे। अपनी इसी दोस्ती और कला के प्रति दीवानगी के कारण उन्होंने एक फिल्म बनाने का फैसला किया, तीसरी कसम। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पर बनी ये फिल्म कलात्मक रूप से एक मास्टरपीस थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे शुरुआती सफलता नहीं मिली। इस बात के सदमे और कर्ज के बोझ ने शैलेंद्र जी को अंदर से तोड़ दिया। मात्र 43 साल की उम्र में 14 दिसंबर 1966 को इस महान कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। विडंबना देखिए, ये वही दिन था जो उनके सबसे अजीज दोस्त राज कपूर का जन्मदिन था। शैलेंद्र चले गए, लेकिन उनका आखिरी लिखा हुआ गाना आज भी हमें जिंदगी जीने का सबसे बड़ा फलसफा सिखाता है।

शैलेंद्र के गीतों की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? सादगी। वो कठिन और भारी भरकम शब्दों के जाल में नहीं उलझते थे। वो लिखते थे, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। जिंदगी और मौत के इस शाश्वत सच को इतनी सादगी से भला कौन कह सकता है? चाहे गाइड फिल्म का वहां कौन है तेरा, मुसाफिर जाएगा कहां हो, या बंदनी का ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, उनके हर गीत में एक तड़प थी, एक गहरा एहसास था। ऐसा लगता था जैसे वो हमारे ही दिल की बात कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस महान रचनाकार की जिंदगी का आखिरी पन्ना बेहद दर्दनाक रहा। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर फिल्म बनाई तीसरी कसम। ये फिल्म नहीं, शैलेंद्र के दिल का टुकड़ा थी। राज कपूर और वहीदा रहमान ने इसमें अद्भुत अभिनय किया। फिल्म कलात्मक रूप से एक शाहकार बनी, लेकिन बॉक्स ऑफिस के क्रूर नियमों ने शैलेंद्र को तोड़ दिया। अपनों के धोखे और कर्ज के बोझ ने इस बेहद संवेदनशील कवि के दिल पर गहरा घाव किया। शैलेंद्र आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं।

लेकिन जब तक इस दुनिया में मोहब्बत रहेगी, जब तक कोई राहगीर अपनी मंजिल ढूंढेगा, जब तक कोई दिल टूटेगा और जब तक कोई जिंदगी से प्यार करेगा, शैलेंद्र के गीत अमर रहेंगे। वो कह गए थे, किताबें बहुत सी, फसाने बहुत से, मगर ये कहानी है सदियों पुरानी।

कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। सचमुच शैलेंद्र साहब, आप भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आपके लिखे ये अनमोल गीत जब तक ये दुनिया रहेगी, इंसानी दिलों को धड़काते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे शो एक ही कलाकार में बस इतना ही। आपको गीतकार शैलेंद्र के जीवन पर आधारित ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। अब अपनी दोस्त शिखा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स डीटीएच डीआरएम वेव्स ओटीटी और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं। आज की हमारी पहली सभा अब सम्पन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 241.5 4 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH, DRM और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। आरंभ होती है सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: मिला क्या प्लान है?
2: सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ।
3: बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है।
2: पर कैसे?
3: RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान।
2: रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ।
3: बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: ऐ मेरी हमरा मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

चन्नी सिंह के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे सुदर्शन फाकिर की ये रचना। सपना मुखर्जी और उदित नारायण की आवाजें थी। यलगार फिल्म का ये गीत था। इस समय आपकी सेवा में है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आइए सुने कार्यक्रम का अगला गाना।

खलनायक फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अलका याग्निक की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। कार्यक्रम का आखिरी गाना आपके रेडियो सेट पर एक बार फिर अलका याग्निक की आवाज, संतोष आनंद के बोल, तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आकाशवाणी वाराणसी इस समय आपकी सेवा में

अलका याग्निक की आवाज में संतोष आनंद की रचना आप सुन रहे थे। सूर्या फिल्म का गाना था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तर्ज बनाई थी। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलें अपने युवा दोस्तों के बीच और सुने उनका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

0: फासले मीलों के हो तो भी कम हो जाते हैं जब रिश्तों में अपनापन जिंदा रहता है, और कभी एक ही छत के नीचे रहकर भी लोग दिलों से बहुत दूर हो जाते हैं।
1: वाह, क्या बात है। सच भी तो है, दूरियां हमेशा रास्तों से नहीं बनती, कई बार रिश्तों में समय की कमी और बातचीत की कमी भी उन्हें बढ़ावा देती है।
0: बिल्कुल, और इन्हीं दूरियों को मिटाने का सबसे आसान जरिया क्या है?
1: एक छोटी सी कॉल या एक प्यारा सा मैसेज, कभी कभी कैसे हो ये सिर्फ दो शब्द भी बरसों की दूरियां मिटा सकते हैं।
0: तो इसी खूबसूरत एहसास के साथ आप सभी श्रोताओं को मेरा स्नेह भरा
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: और मेरी ओर से भी आप सभी को नमस्कार। मैं हूं कृतिका,
0: और मैं हूं जयशालिनी। आपका बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: स्वागत
1: स्वागत।
0: है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में।
1: जयशालिनी, एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि आजकल यादें कम और उनकी तस्वीरें ज्यादा बन रही हैं?
0: बिल्कुल, पहले लोग पल जीते थे, फिर उन्हें तस्वीरों में संजोते थे। आज कई बार तस्वीरें पहले बन जाती हैं और पल कहीं पीछे छूट जाते हैं।
1: और मजेदार बात यह है कि यही छोटा सा फोन कभी हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपनों को हमारे बिल्कुल करीब ले आता है, तो कभी हमारे बिल्कुल पास बैठे लोगों को भी हमसे दूर कर देता है।
0: सही कहा, लेकिन बात फोन की नहीं, उसके इस्तेमाल की है। आखिर यही फोन हमारे परिवार से जोड़ता है और काम को आसान बनाता है। इसके साथ पढ़ाई में मदद करता है और हमारी अनगिनत यादों को भी संजो कर रखता है।
1: हाँ, लेकिन यही फोन सिर्फ यादों का साथ ही नहीं रहता। इसमें हमारी बैंकिंग है, हमारे दस्तावेज हैं, हमारी निजी जानकारियां हैं, यानी हमारे पूरे डिजिटल दुनिया इसी में रहती है।
0: और जब पूरी दुनिया एक छोटी सी स्क्रीन में सिमट जाए तो उसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी हो जाती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जरा सी लापरवाही और साइबर ठग आपकी मेहनत की कमाई और आपकी पहचान, आपका भरोसा, तीनों पर हमला कर सकते हैं।
0: तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल कैसे करें, साइबर फ्रॉड से कैसे बचें और डिजिटल दुनिया में खुद को सुरक्षित कैसे रखें। पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला। क्या प्लान है?
1: सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर।
2: बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है।
1: पर कैसे?
2: RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान।
0: रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ।
2: बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है।
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा

0: आयोजित कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
3: 0542227658।
1: ओ
4: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ,
4: 0542227658।
5: दोस्तों आजकल चोर सिर्फ दरवाजे से नहीं अपने मोबाइल की स्क्रीन से भी घर में घुस जाते हैं।
6: बिल्कुल, पहले जेब कतरे भीड़ में मिलते थे और अब साइबर ठग एक लिंक, एक कॉल या फिर एक ओटीपी से आपकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर देते हैं। दोस्तों
5: जरा सोचिए, अगर अभी आपके फोन पर कॉल आए और सामने वाला कहे मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट बंद होने वाला है, तो क्या करेंगे?
6: यही तो सबसे बड़ा जाल है, डर पैदा करके जल्दबाजी में फैसला करवाना। याद रखिए दोस्तों, कोई भी बैंक कभी फोन पर ओटीपी, एटीएम पिन, सीवीवी या पासवर्ड नहीं पूछता।
5: और सिर्फ कॉल ही नहीं, आजकल व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, क्यूआर कोड और फेक ऐप के जरिए भी लोगों को ठगा जा रहा है।
6: तो आइए जानते हैं कि साइबर फ्रॉड से बचने के कुछ आसान लेकिन बेहद जरूरी उपाय।
5: पहला, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें।
6: दूसरा, ओटीपी, पिन, सीवीवी और यूपीआई पिन किसी के साथ साझा ना करें, चाहे सामने वाला खुद को बैंक अधिकारी बताए या पुलिस ही क्यों ना बोले।
5: तीसरा, क्यूआर कोड सिर्फ पैसे भेजने के लिए स्कैन करें, पैसे पाने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं होती।
6: चौथा है कि एप्स हमेशा आधिकारिक ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें।
5: पांचवा, अपने सभी महत्वपूर्ण अकाउंट्स में मजबूत पासवर्ड और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA जरूर चालू रखें।
6: और अगर गलती से फ्रॉड हो जाए तो घबराइए मत, तुरंत बैंक को सूचना दीजिए और राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। साथ ही cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।
5: याद रखिए दोस्तों, मोबाइल सुरक्षा सिर्फ तकनीकी नहीं, आपकी सतर्कता है।
6: एक छोटी सी सावधानी आपकी वर्षों की कमाई का बचा सकती है, इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और साइबर ठगों से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं।
5: दोस्तों साइबर फ्रॉड से बचने की बात तो हमने कर ली, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन तकनीकों का इस्तेमाल आज साइबर अपराधी कर रहे हैं, उन्हीं में से एक तकनीक हमारी जिंदगी को आसान बना रही है?
6: बिल्कुल, और वो तकनीक है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आज AI एक तरफ ऑनलाइन धोखाधड़ी पकड़ने में बैंकों और साइबर सुरक्षा एजेंसियों की मदद कर रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करके फेक कॉल, डीप फेक वीडियो या फिर नकली तस्वीरें भी बना रहे हैं।
5: यानी बात तकनीक की नहीं है, उसे इस्तेमाल करने की है। सही हाथों में AI भविष्य बदल सकता है और गलत हाथों में परेशानी भी खड़ी कर सकता है।
6: तो चलिए दोस्तों आइए इसके साथ सुनते हैं अब ये गीत।

दोस्तों आइए आप सुनते हैं आज के स्पेशल सेगमेंट सीने दर्पण को, जिसमें आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे अभिनेता जिनको हम जंपिंग जैक के नाम से भी जानते हैं।

0: दोस्तों कहते हैं हर दौर का अपना एक सुपरस्टार होता है, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो दौर से नहीं दिलों से पहचाने जाते हैं। आज हम जिस सितारे की बात करने जा रहे हैं उनकी पहचान सिर्फ फिल्मों से नहीं बल्कि उनके सफेद कपड़ों, दमदार डांस और हमेशा मुस्कुराते चेहरे से भी है।
1: बिल्कुल, अगर मैं कहूँ सफेद टी शर्ट, सफेद जूते, गाने के धुन और बिजली जैसी फुर्ती, तो शायद आपको नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आज के हमारे सितारे हैं जंपिंग जैक जितेंद्र।

0: क्या है कली से प्यार करो सारा जहां है मेरे लिए मेरे लिए।
1: दोस्तों जितेंद्र जी का असली नाम था रवि कपूर। उनका जन्म 7 अप्रैल 1942 को हुआ था। उनके परिवार का फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले नकली आभूषण बनाने का कारोबार था।
2: कहते हैं कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। फिल्मों में आना उनकी योजना नहीं थी, लेकिन स्टूडियो के चक्कर लगाते लगाते कैमरे ने उन्हें पहचान लिया।
1: शुरुआती संघर्ष के बाद साल 1967 में फिल्म फर्ज आई और यहीं से बदल गई उनकी किस्मत।
2: इस फिल्म का गाना मस्त बहारों का मैं आशिक पूरे देश में छा गया। सफेद टी शर्ट और सफेद जूतों में जितेंद्र का डांस इतना पसंद किया गया कि लोग उन्हें जंपिंग जैक कहने लगे।
1: अगर आप 1980 के दशक में सिनेमा देखने जाते तो हर दूसरे पोस्टर पर जितेंद्र नजर आते।
2: लगातार सुपरहिट फिल्में हिम्मत वाला, तोहफा, मवाली, जस्टिस चौधरी, मकसद, औलाद, परिचय, खुशबू, इन फिल्मों ने उन्हें हर घर का पसंदीदा अभिनेता बना दिया।
1: चलिए अब सुनते हैं जितेंद्र से जुड़े कुछ मजेदार तथ्य।
2: दोस्तों उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उनका करियर लगभग 4 दशकों तक चला। वे एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने एक ही साल में कई कई फिल्में रिलीज की और ज्यादातर सफल भी रही। उनका सफेद कपड़ों वाला लुक युवाओं के बीच फैशन ट्रेंड बन गया और इसके साथ ही दोस्तों शूटिंग के लिए समय पर पहुंचना उनकी सबसे बड़ी आदत थी। निर्माता कहते थे अगर जितेंद्र ने समय दे दिया तो वे तय समय पर सेट पर मिलेंगे।
1: हर सुपरस्टार की कोई न कोई सुपरहिट जोड़ी होती है।
2: बिल्कुल दोस्तों, जितेंद्र की जोड़ी श्रीदेवी के साथ इतनी लोकप्रिय हुई कि दोनों ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और इसके साथ जया प्रदा के साथ भी उनकी जोड़ी दर्शकों की पहली पसंद रही थी।
1: अक्सर लोग जितेंद्र को सिर्फ

0: फिल्म्स और कमर्शियल फिल्मों से जोड़ते हैं,
1: लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने परिचय, खुशबू और किनारा जैसी संवेदनशील फिल्मों में भी शानदार अभिनय किया। इन फिल्मों ने साबित किया कि वे सिर्फ डांसिंग स्टार नहीं बल्कि एक बेहतरीन अभिनेता भी हैं।

0: ए संजू, ए बिज्जू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।
1: कहा जाता है कि कई बार निर्माता एक साथ उनकी कई फिल्मों की शूटिंग करते थे। जितेंद्र एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भागते रहते थे, लेकिन समय पर हर सेट पर पहुंच जाते थे।
2: और यही वजह थी कि निर्माता उन्हें बेहद भरोसेमंद अभिनेता मानते थे।
1: आज भले ही जितेंद्र फिल्मों में कम नजर आते हों, लेकिन मनोरंजन जगत में उनका परिवार आज भी सक्रिय है।
2: उनकी बेटी एकता कपूर भारतीय टेलीविजन और OTT की सबसे सफल निर्माताओं में गिनी जाती हैं, और जबकि बेटे तुषार कपूर भी कई फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं।
1: जितेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि उस दौर की पहचान है, जब सिनेमा परिवार के साथ बैठ के देखा जाता था और गाने हर गली मोहल्ले में गूंजते थे।
2: उनकी फिल्में, उनका डांस और उनकी सादगी आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। शायद यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी सफलता होती है।

0: इसी के साथ आज का सिने दर्पण यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे हिंदी सिनेमा के एक और सुनहरे सितारे के दिलचस्प कहानियों के साथ।
1: चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है आज के शब्द कहाँ, जहाँ हम सीखते हैं रोजमर्रा में काम में आने वाली हिंदी और अंग्रेजी के शब्द और उनका सही अर्थ और उसका प्रयोग।
2: तो हमारा आज का हिंदी का शब्द है प्रासंगिकता, जिसका अर्थ है किसी विषय, परिस्थिति या समय के अनुसार उपयुक्त, सार्थक या जुड़ा हुआ होना, यानी जो बात वर्तमान संदर्भ से मेल खाती हो उसकी प्रासंगिकता होती है। और इसे वाक्य में हम कुछ यूँ कह सकते हैं, डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।
1: अब बढ़ते हैं आज के अंग्रेजी के शब्द की ओर, जो कि है जुडिशियस, JUDICIOUS, जिसका अर्थ होता है विवेकपूर्ण या फिर बुद्धिमत्तापूर्ण। और अगर इसका हम सेंटेंस फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। अ जुडिशियस लीडर लिसन टू एवरीवन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, यानी जिसका अर्थ है एक विवेकपूर्ण नेता निर्णय लेने से पहले सभी की बात सुनता है।
2: तो आज हमने सीखा प्रासंगिकता यानी समय और संदर्भ के अनुसार उपयुक्तता, और जुडिशियस यानी विवेकपूर्ण एवं सोच समझकर लिया गया निर्णय।
1: नए शब्द सीखते रहिए, अपनी भाषा को समृद्ध बनाइए, और ज्ञान की इस यात्रा में हम अब आगे बढ़ते हैं इस इतिहास की तरफ।
2: दोस्तों, निकोला टेस्ला का जन्म 1856 में आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने प्रत्यावर्तित धारा यानी एसी प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
1: सन 1949 में 10 जुलाई को भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना की तैयारियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाए, जिसने बाद में जनगणना व्यवस्था को मजबूत किया था।
2: दुनिया का पहला संचार उपग्रह टेलेस्टर 1 अंतरिक्ष में आज ही के दिन 1962 में प्रक्षेपित किया गया था, जिसने वैश्विक टेलीविजन प्रसारण में क्रांति ला दी थी।
1: आज ही के दिन 1973 में द बहामास ने यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त की थी।
2: वर्ष 2006 में भारत के मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कला के क्षेत्र में विशेष सम्मान मिला था।
1: भारत के महान क्रिकेटर और पूर्व कप्तान सुनील गवास्कर का जन्म 1949 में आज ही के दिन हुआ था।
2: और 1996 में आज ही के दिन अमेरिकी उद्यमी और मीडिया हस्ती काइली जेनर का जन्म हुआ था।
1: दोस्तों, कहते हैं ज्ञान वही है जो सही समय पर सही जवाब बनकर सामने आए, तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब वक्त है आपके पसंदीदा सेगमेंट क्वेश्चन ऑफ द डे का।
2: बिल्कुल, जहां सिर्फ सवाल नहीं पूछे जाते बल्कि हर दिन आपके ज्ञान, आपकी जिज्ञासा और आपकी सोच को मिलता है एक नया मंच। कौन जाने आज का सही जवाब आपको भी हमारे विजेताओं की सूची में शामिल कर दे।
1: लेकिन आज का सवाल पूछने से पहले तालियां तो बनती हैं उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने कल के प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर देकर अपनी शानदार पहचान बनाई है।
2: तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे कल के सवाल पर। तो हमने कल आपसे पूछा था ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, जिसका सही जवाब है ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के रूप में कर्नाटक के प्रसिद्ध मैकेनिकल इंजीनियर गिरीश भारद्वाज को जाना जाता है। उन्होंने देश के ग्रामीण इलाकों में 140 से 300 तक कम लागत वाले और पर्यावरण अनुकूल सस्पेंशन पुल बनाए, जिससे हजारों ग्रामीणों की जिंदगी आसान हुई, और समाज सेवा के लिए उन्हें 2017 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था।
1: और इस प्रश्न का सही उत्तर

0: देने वाले हमारे विजेता हैं और सही जवाब देने वाले हमारे सभी साथियों के नाम हैं चंदा चंदौली से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से।
1: इसी के साथ ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधे श्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाक से। इसी के साथ बाबू दिव्यांश भी। रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से हैं सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा। नेपा नगर मध्य प्रदेश से हैं प्रभुदया शिवदे, शिवा, बसंती बाई और गणेश शिवदे। और संगीत की नगरी खंडवा से है श्यामा बाई रायकवार।
0: ग्राम खंडवा तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा।
1: आप सभी विजेताओं को ढेर सारी बधाइयां। उम्मीद है आपको यह सीखने की लगन यूं ही बनी रहेगी और आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे।
0: तो अब इंतजार खत्म, क्योंकि पेश है आज का नया सवाल। जरा ध्यान से सुनिए और हो सकता है इसका जवाब आपको पता हो।
1: तो आज का हमारा आपसे प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एआई आधारित डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विद एआई शुरू की है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने एआई आधारित डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विद एआई शुरू की है?
0: अगर आपको आपको इसका सही जवाब पता है तो बिना देर किए हमें अपना उत्तर भेजिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, यूथ AIR वाराणसी पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं youthairvns@gmail.com पर।
1: हो सकता है अगली बार जब हम विजेताओं के नाम घोषित करें तो उसमें आपका नाम सबसे पहले सुनाई दे।
0: तो देर किस बात की, सोचिए, जवाब दीजिए और बन जाइए हमारे अगले क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर।
1: फिलहाल आपके जवाबों का इंतजार रहेगा और अब सुनते हैं एक शानदार गीत।

0: कहते हैं जिंदगी बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। कभी-कभी बस एक पल, एक फैसला या एक छोटी सी जानकारी इंसान की पूरी दिशा बदल देती है।
1: बिल्कुल, और अफसोस की बात यह है कि कई बार लोग मेहनत तो

0: लगन से करते हैं, लेकिन सही अवसर की जानकारी समय पर ना मिलने के कारण मंजिल उन्हें दूर कर जाती है।
1: इसलिए कहते हैं कि तैयारी जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी है सही समय पर सही सूचना मिलना, क्योंकि एक नोटिफिकेशन, एक भर्ती या एक आवेदन की तारीख आपके सपनों की शुरुआत बन सकती है। तो अपनी उम्मीदों को बनाए रखिए, तैयारी को जारी रखिए और अगले कुछ मिनट हमारे साथ जुड़े रहिए।
0: दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल ने IBPS ने
1: प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी PO के मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि पदों की कुल संख्या 6,715 है और आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि है 21 जुलाई 2026। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर लॉगिन करके देख सकते हैं।
0: बिल्कुल। जैशालनी, जरा बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि आजकल सबसे कीमती चीज सोने या हीरे नहीं बल्कि आपका डेटा है, तो आप क्या क्या क्या आप मानेंगी?
1: बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि आज की दुनिया में आपकी पहचान बैंकिंग, पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि आपकी यादें भी डिजिटल हो चुकी हैं। ऐसे में अगर हम डिजिटल दुनिया को समझेंगे नहीं तो मुश्किल में भी पड़ सकते हैं।
0: यानी अब सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही काफी नहीं, डिजिटल रूप से जागरूक होना भी उतना ही जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा। डिजिटल जागरूकता का मतलब सिर्फ मोबाइल चलाना या सोशल मीडिया इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि इंटरनेट का सुरक्षित, जिम्मेदार और समझदारी से उपयोग करना भी है।
0: लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार क्यों हो जाते हैं?
1: क्योंकि ठग हमारी तकनीक नहीं, हमारी जल्दबाजी और भरोसे का फायदा उठाते हैं। कभी फर्जी लिंक भेजते हैं तो कभी नकली बैंक अधिकारी बनकर कॉल करते हैं या फिर कभी लॉटरी या इनाम का लालच देते हैं।
0: और आजकल तो AI की मदद से किसी की आवाज और वीडियो तक नकली बनाया जा रहा है। इसीलिए सिर्फ देखकर या सुनकर भरोसा करना भी सही नहीं।
1: बिल्कुल, इसलिए कोई भी संवेदनशील जानकारी साझा करने से पहले एक बार नहीं दोस्तों, दो बार सोचिए। याद रखिए, OTP, UPI पिन, ATM पिन और पासवर्ड सिर्फ आपके हैं।
0: एक और जरूरी बात, हर चमकती हुई वेबसाइट असली नहीं। हमेशा वेबसाइट का पता ध्यान से देखें और ऐप केवल आधिकारिक स्टोर से ही डाउनलोड करें।
1: और सोशल मीडिया पर भी सोच समझकर पोस्ट करें। आपकी निजी जानकारी, लोकेशन और दस्तावेज गलत हाथों में पहुंच सकते हैं।
0: अगर गलती से कोई साइबर फ्रॉड हो जाए तो समय बिल्कुल बर्बाद ना करें, तुरंत बैंक को सूचना दें और राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।
1: याद रखिए दोस्तों, डिजिटल दुनिया में सबसे मजबूत पासवर्ड आपका विवेक है और सबसे अच्छा एंटीवायरस आपकी जागरूकता।
0: तकनीक से डरिए मत, उसे समझिए, क्योंकि जागरूक जागरूक उपयोग उपयोगकर्ता ही सुरक्षित उपयोगकर्ता होता है।
1: डिजिटल बनिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा डिजिटल जागरूक बनिए। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और दूसरों को भी जागरूक बनाइए।
0: इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए अंक में नई जानकारी के साथ। आज के आपके साथी थी, मैं थी कृतिका।
1: और मैं जयशालिनी, पर जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस गीत के साथ।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र सुनेंगे भोजपुरी में समाचार। कृपया इस वाद्य संगीत के साथ प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ ही हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में 432 करोड़ रुपया से बेसी की लागत का 217 परियोजना का लोकार्पण आ शिलान्यास कैले। अपने संबोधन में श्री योगी कहने की डबल इंजन का सरकार अयोध्या में विकास का नया इबारत लिख ले हो। वहां के कहने की आज अयोध्या सोलर सिटी के रूप में स्थापित हो चुकल बा।
2: आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन गए हैं। जो सिंगल लेन था, आज वो फोर लेन और सिक्स लेन की सड़कें हैं। चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है।
1: मुख्यमंत्री अजमेर बस्ती में 504 करोड़ रुपया से बेसी की लागत का 77 विकास परियोजना के लोकार्पण आज शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल भेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहने गोरखपुर में कई गो कार्यक्रम में हिस्सा ली है। ऊर्जा का मंडल आयुक्त अनिल ढिंगरा और डीआईजी एस चन्नप्पा आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा ले।
3: मंडल आयुक्त और डीआईजी ने गोरखपुर के भटहट स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन आदोकोद्यम का निरीक्षण किया। वहां संबंधित अधिकारियों को मंडल आयुक्त ने 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले इस ऑडिटोरियम के निर्माण कार्य में तेजी लाकर इसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कल मुख्यमंत्री के प्रस्तावित भटहट बांस स्थान फोर लेन मार्ग के लोकार्पण कार्यक्रम के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लिया। वहाँ चल रहे तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्णायुक्त ने निर्देश दिया कि जनसभा स्थल पर मौसम को देखते हुए आवागमन, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहां डीआईजी एस चन्नप्पा ने पुलिस अधिकारियों को कार्यक्रम के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। आकाशवाणी समाचार के लिए जीएम चौबे गोरखपुर।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी इथेनॉल मिलल पेट्रोल से इंजन के नुकसान पहुंचले आ गाड़ियन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से जुड़ल आशंका के खारिज कर दिए हैं। एगो निजी समाचार चैनल के दिहल इंटरव्यू में श्री पुरी कहने की सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर कार कर रही हो। उनके कहने की ईंधन मानक E20 पेट्रोल के तुलना में करीब 20 रुपया प्रति लीटर सस्ता हुई। केंद्र सरकार अल्कोहल के ढेर मात्रा वाली दवाइयों के नियमन के और वो सख्त करे बदे औषधि नियम 1945 में संशोधन कैले हो। एगो रिपोर्ट।
4: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूचित के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीमीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक मिथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद गुप्ता।
1: प्रदेश सरकार बीतल रात 20 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया।

0: स्थानांतरित होखे वाले अधिकारियन में बलिया, आजमगढ़, आईटावा जिला का मुख्य विकास अधिकारी CDO भी शामिल हैं। राकेश कुमार पटेल के आजमगढ़, आलोक कुमार के बलिया और संजय कुमार सिंह के इटावा का नया CDO बनावल गयल बा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सतही कई गो और जिलों में आज रुक रुक के बरखा का सिलसिला जारी बा। भिन्हीं से आसमान में बादल छोले बाटे आ कहीं कहीं बूंदा बांदी का क्रम आज पूरा दिन जारी रहल। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ से जुड़ल मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह बतौले कि मौसम विभाग बिहने तक खातिर प्रदेश में कई जगहों पर भारी बरखा का ऑरेंज अलर्ट जारी कर लिया है।
1: अगर आगे आने वाले दिनों में बात करें तो ये उत्तरोत्तर मध्य उत्तर प्रदेश और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा, या फिर यह उत्तरोत्तर कमजोर होता जाएगा। परम दुख के प्रभाव से सेंट्रल ऋतु की तरफ आने पर और थोड़ा कमजोर होने पर वर्षा की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई में जारी रहेगा और इसके बाद 11 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसमें व्यापक तौर पर कमी आ जाएगी और तराई इलाकों में या कहीं कहीं भारी वर्षा तक सीमित हो जाएगा।
0: मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी जिलों में 14 जुलाई ले कहीं कहीं भारी बरखा का संभावना बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, आइए आपको बता दें आज के शेष और कल यानी 11 जुलाई सन 2026 को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर सुनिएगा डॉक्टर शनीश कुमार ग्यावाली का बांसुरी वादन। प्रकृति के बाद आकाशवाणी के साथ सुनिएगा शाम 7:31 पर। रात 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका, जिसमें आप सुनेंगे नीरू सिंह की वार्ता भविष्य के ईंधन। और इसी कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह से चंदन सिंह की भेंट वार्ता। विषय होगा सौंदर्य प्रसाधनों के पीछे का विज्ञान। समय याद कीजिए रात 10:00। अंजुमन की महफिल सजेगी रात 9:30 पर। रात 8:00 सुगम संगीत के कलाकार होंगी प्रिया गुप्ता। कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनिएगा शुभम पटेल से रामकृष्ण मिश्र की बातचीत। बातचीत का विषय होगा धान की प्रमुख बीमारियां। और इसी कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं शिवापति मिश्रा का गाया लोकगीत। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर।

संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनिएगा रात 10 बजे से, जिसे हम दिल्ली केंद्र से संप्रसारित करेंगे। उर्दू कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा सुबह 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दिन 12:45 पर और सुबह 7:31 पर सुनिएगा आर्यन मिश्रा का गायन। गैर फिल्मी गीत एवं गजलों की महफिल सजेगी अंजुमन में रात 9:30 पर। रात 8 बजे सुगम संगीत के कलाकार होंगे पंडित सीताराम सिंह और दिन 12:30 पर धनंजय कुशवाहा। स्वरबेला कार्यक्रम में शाम 7:31 पर सुनेगा सीमा सिंह से काव्य पाठ। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनेगा डॉक्टर राजेश कुमार राय से दिनेश कुमार सिंह की बातचीत। विषय होगा फूल गोभी की खेती। और इसी कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं मोहम्मद इस्लाम का गाया लोकगीत। इन्हीं का गाया लोकगीत दिन 1:45 पर और सुबह 9:50 पर भी।

आप सुन सकते हैं। युवा दोस्तों की वाणी सजी के शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात यूथ जंक्शन, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया सुनिएगा शाम 5 बजे से। गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याएं और इनका इलाज, इस विषय पर डॉक्टर सुनीता सुमन से

0: डॉक्टर सुनीता सुमन से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत सुनिएगा अग्नैया कार्यक्रम में दिन 1:15 पर। इसके अलावा गीत संगीत भी होगा। कहकशा सुनिएगा दिन 12 बजे से। हेलो फोन इन फरमाइश आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम लेकर आएंगे अरुण पांडे दिन 11 बजे से। मधुरिमा सुनिएगा सुबह 8:45 पर और गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7 बजे से। श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ सुनिएगा सुबह 6:40 पर। रहिए स्वस्थ और सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम सुबह 6:35 पर। कल का विषय है दूषित जल से होने वाली बीमारियां और इनका इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विनोद कुमार सिंह। विचार बिंदु सुनिएगा सुबह 6:30 पर। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना सुनिएगा सुबह 6:10 पर। करेला की खेती इस विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह सुबह 6:05 पर कार्यक्रम खेती की बातें में। तो ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। आपकी सेवा में है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आइए सुने फिल्म संगीत लेकिन इस अंतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।

इला अरुण और लता मंगेशकर की आवाजों में लम्हे फिल्म का ये गाना। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार शिव हरी। ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

लता मंगेशकर, इला अरुण और सखियों की आवाजों में लम्हे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे शिव हरि। कार्यक्रम का आखिरी गाना ये सुने, फिल्म का नाम प्यासा सावन, आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की, गीतकार संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

बहुत प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, प्यासा साउंड फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजें थी, संतोष आनंद के बोल थे और तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत फिर लेकर आएंगे शाम 7 बजे, रात 8:15 पर कार्यक्रम रसमाधुरी में भी। तो सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6:20 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।

0: पंचो राम राम।
1: और हो दिना भैया,
0: और
1: खेती बारी के का हाल चाल बा?
0: भोला भैया, देखा खेती किसानी के तो हाल चाल ठीक बा हो।
1: और बताओ दीना भैया, धान का रोपनी अपने कुछ कैला कि ना?
0: देखा भोला भैया, रोहनी में जवन धान के बीया पड़ल रहल उ तो देखा रोपाई शुरू हो गल,
1: अच्छा
0: ठीक है। और देखा अदरा के भी जोन बीया डाल रहल ना, ओहू का रोपाई जो ना 10 दिन बाद चालू हो जाए।
1: अच्छा अच्छा दीना भैया, तू तो बड़ा सचेत किसान हुआ हो, कुछ तो धान रोपे ले ले हुआ। देखा दीना भैया, हमन किसान है जा, खेती किसानी के साथे साथे ना हमन के पशुपालन भी कैल बहुत जरूरी है। और पशुपालन कह के अपन हमन किसान अपन पेट पर्दा चलावत है जा। वही में देखा पशुपालन के तरह ही एक है हो अपन मत्स्य पालन।
0: भोला भैया, देखा भाई, रोजी रोटी चलावे बदे कुछ न कुछ करल देखा बहुत
1: बहुत
0: जरूरी हो
1: जरूरी है, सही कहला।
0: भाई। हमने है किसान, परिवार चलावे बदे कहीं मछली पालन, कहीं भैंस पालन, सब्जी उगाना, ये हमने के मूल कर्तव्य है।
1: कर्तव्य,
0: हाँ,
1: सही
0: आ
1: कहला।
0: किसान भाई लोग, आज देखा राष्ट्रीय जौन मत्स्य पालन दिवस हो, जौन ये हर साल 10 जुलाई के मनावल जाला। भोला भैया,
1: हाँ
0: ये
1: दीना
0: दिन
1: भैया,
0: मत्स्य पालन के बहुत मछुआरन के भी सम्मान देवे खातिर ये दिन आज बहुत अच्छा दिन हो।
1: कहे न भैया, जोन मछुआरा समाज अपन जो योगदान करला, योगदान खातिर उनके सम्मान और उनके योगदान के भाई तो सराहे के पड़बे करी।
0: देखा भाई, जे कौनो भी कार्य करत हो, चाहे मछली पालत हो, चाहे खेती में भी कोनो काम करत हो, ऐसे ही मजदूर दिवस, मत्स्य पालन दिवस, ऐसे अगर कोई के उत्साह बढ़ावे खातिर उत्सव न मनावल जा तो भाई कैसे कोई का सम्मान
1: कहे
0: होई।
1: ने भैया, ये राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस जोन हो ना, ये अपने मछुआरा समाज के उत्साह बढ़ाए बदे, उनके प्रोत्साहन करे बदे ही मनावल जला हो दीना भैया।
0: दिन भोला भैया,
1: हाँ दीना भैया।
0: मत्स्य पालन जो न खाली रोजगार का साधन नहीं हो। देखा भाई, ऐसे जवन हो हर मत्स्य पालन वाले जे भी मछुआरा भाई लोग होवन, ऐसे उनकर जिंदगी बढ़िया चलत हो,
1: कहे ना
0: रोजी
1: भैया,
0: रोटी वही से चलत हो
1: बिल्कुल अपन।
0: भाई। उसे पालन करके जो ना 2 पैसा आमदनी कमात हुआ, और जब
1: हाँ
0: आमदनी कमात हो तो भाई परिवार भी मजे में चलत हो।
1: कहे ना भैया, इतने ना दीना भैया, देखा भारत जोन हो ना देश अपन, ये दुनिया में मत्स्य पालन उत्पादन करे वाला एक मतलब चुनिंदा देशन में गिनल जाला। और एकरे साथे साथे मत्स्य पालन से ना देखा ई रोजगार, सिर्फ रोजगार ना हो, इससे लाखों परिवार का रोजी रोटी भी चलत हो।
0: भोला भैया, बात बड़ी एकदम नीमन का कला है। देखा भाई, अभी कुछ दिन पहले जवन हो हम आजमगढ़ साइड गए रही हूँ।
1: अच्छा भैया।
0: देखा जेकर जैसे जैसे कहल जाला ना कि खेत खलिहान जेकर खाली हो, कौनो काम नहीं बा खेते में,
1: नहीं बा
0: तब भाई ओकर मट्टी निकलवा लेलस।
1: निकलवा
0: अब
1: लेलस,
0: मट्टी निकलवा लेलस भाई, मट्टी का भी कहीं बढ़िया जगह ओके
1: उपयोग हो
0: उपयोग
1: गया,
0: कर
1: हाँ
0: लेलस।
1: कर लेलस।
0: और बाद जवन वो जगह खाली बचल, पोखरी टाइप का करवा के और में पानी डाल के बढ़िया मछली पालन के व्यवस्था चालू कर
1: हाँ
0: देलन।
1: बिल्कुल सही कहला भैया। पर मछली पालन जोन आप बोला है कि मट्टी निकलवा के गड्ढा, तो देखा ये जोन अपने पुराने समय से तर तालाब और पोखरी होत रहल है, ओके मछली

0: पारण अगर करत हुआ दीना भैया तो ओमेन देखा का करा पहले को जो तकनीकी जो अनुभवी हो जो मछली पालन के जेके अनुभव रहल हो तो ओके पहले बढ़िया से साफ सुफ करके उनसे समझ ला कि एमन कितना पानी रहे कितना एमन दाना डालल जाए कितना बच्चा डालल जाए इहो जरूरी बा।
1: बोला भैया इस सब एकदम कोठिला से निकाल के बोला देखा जीव एकदम हरियर हो गई हो कौनो भी काम करे से पहले वैज्ञानिक साहब से जवानों के जानकारी ले ले
0: बिल्कुल ले
1: भाई गड्ढा खुनवाइला ठीक है और में जब पानी डलवावत हुआ तो पहले मट्टी के चेक करवाइला है और मट्टी चेक करवाइला ओकरे बाद में पानी डलवावा का कमी हो में ताकि में जो हम मछली डालत समय मछली की समस्या
0: ना हो
1: ये चीज का जानकारी पैदावार
0: पैदावार बढ़िया हो
1: पैदावार बढ़िया हो भाई देखा पैदावार का बात कैला है ना तो जब पैदावार बढ़ी ना तो किसान भाई के भी जीव एकदम हरियर हो जाला
0: कहे ना भैया। और ये जो मछली होला भैया दीना भैया ये देखा ये खाली पोषण जो एमन जो पावल जला एमन खाली पोषण तत्व ना हो एमन तरह तरह का विटामिन प्रचुर मात्रा में होला। कहे देखा इससे का हो कि आँख का अगर रोशनी हो तो डॉक्टर भैया लोग लिखा ना कि भैया देखा हो मछली का सेवन ढेर करा एमन तो के प्रोटीन और जिंक सब मिली ऐसे तो शरीर में ताकत भी मिली और आँख का रोशनी जो जेकर कमजोर होता ओके बराबर डॉक्टर भैया लोग लिखल कि एक सेवन करा।
1: भोला भैया बात बहुत सही कल देखा ये दिवस जोन मनावल जला ये दिवस जो न खाली एक मुख्य उद्देश्य ना होला कि मत्स्य दिवस ही मनावल ऐसे भाई मजदूरन कर सम्मान जे मछली पालत हो सम्मान और यह नहीं आज हम जगह जगह देख ली है ना जहाँ जहाँ भी मछुआरा भाई लोग हो वहाँ देखा भाई स्टॉल लगा के उनका सम्मान कार्यक्रम चलत हो
0: कहे ना भैया
1: कुछ करे बदे गीत गो नहीं भी चलत हो
0: बिल्कुल
1: लोग अपने में खुशी से झूमत हो
0: एकदम बिल्कुल सही कहला दीना भैया इतने ना देखा गोष्ठी तो होबे करला और एक जो मछली पालन जो करे चाहत हुआ नया युवक या किसान भाई लोग तो सरकार के तरफ से एक प्रशिक्षण भी देवल जाला एक प्रशिक्षण शिविर चलावल जाला जेमेन जे अगर इच्छुक किसान हो जे मछली पालन करे चाहत हो ओके बढ़िया से प्रशिक्षित करल जाला ताकि वो प्रशिक्षण लेके अपन व्यापार आगे बढ़ावे।
1: देखा भाई
0: और पैसा कमाए
1: एकदम एकदम एकदम सही कला बात सही कला सरकार भी सोचेला हमनी के किसान भाई लोगन बदे मछुआरन बदे अगर कोई काम छोटा से चालू करत हो तो सरकार भी ओकरे बदे आर्थिक सहायता करत रहे ले
0: कहे न
1: ताकि भाई करब जो के मन लगा
0: सब्सिडी का भी व्यवस्था है मेन सरकार किसान भाई लोग के सब्सिडी में मुहैया करावला कम दर पे ताकि आप अपन व्यापार के चालू कर सका दीना
1: भैया
0: और राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस ना देखा ये एक संदेश देला मत्स्य पालन जे करला किसान या मछुआरा भाई तो ये उनके मतलब मजबूत करे बदे और उनके आर्थिक स्थिति के मजबूत करे बदे उनके आत्मनिर्भर करे बदे जो मत्स्य पालन दिवस हो ये हर साल मनावल जाला।
1: भैया हो एकदम देखा बात बहुत सही कला हो दिसी जिखा जोन छोट छोट निमन निमन गदेला हो जैसे जेकरे जानकारी कम बा ठीक है तो जब से कोनो उत्सव हो गल चाहे कोनो दिवस हो गल अगर एकरा के नाम नहीं हो तो भाई परेशानी हुई उ सबके पता ना चली कि का चीज हो काहे मनावल जाला छोट गदेलन के भी पता हो चाहिए कि दिवस काहे मनावल जाला
0: काहे ना
1: भाई सबके सम्मान बदे कोनो ना कोनो दिवस तो मनावल जरूरी बा ना।
0: देखा दीना भैया अगर आधुनिक तकनीक और सरकारी योजना आप पर्यावरण संरक्षण का ध्यान दिहल जाओ तो मत्स्य पालन जो है ना देश के विकास में और बड़ा योगदान दे सकेला
1: एकदम
0: और देत हो ऐसे हमन सभे के मत्स्य पालन के बढ़ावा देवे खातिर आगे बढ़े के हुई और एक दूसरे के साथ देवे के हुई।
1: देखा भाई डॉक्टर भाई लोग भी जो है ना कहल न कि अगर शरीर में कोनो चीज का कमी होता कोनो तत्व का कमी होता कोनो विटामिन का कमी होता तो भाई मछली का सेवन करे के चाहिए
0: कहे ना भैया
1: ओके सेवन कैले से जो शरीर में जो प्रोटीन रहेला वो सब चीज मिलत रहेले आ यह सब देखा भाई बात बत कही करत करत है एगो सनेर सा किसान भाई लोगन के सुनवा दे भैया
0: बिल्कुल सुनवा दे भैया
1: सुनवा दे भैया।
2: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बोला भैया।
2: हाँ दीना भैया।
1: कितना किसान भाई लोगों के हम देखी ला कि जैसा ही सनेस चालू हुई, सनेस जैसे ही चालू हुई खटिया छोड़ के हट जाए। नहीं भाई, ये जरूरत नहीं है
2: ना।
1: सनेस अगर चलत हो का हो सकल में कोनो निमन जानकारी।
2: निमन जानकारी का ध्यान से सुने।
1: हाँ, बैठ के सुना था भाई। यही के साथे साथे देखा धान की प्रमुख बीमारियां ऐप पे देखा भैया। शुभम पटेल भैया और रामकृष्ण मिश्र भैया है ऐप पे, ती बत कही हो जा तो का कहते सुना दे।
2: हाँ, बिल्कुल सुना दे भैया।
1: अच्छा ठीक है, सुना।
3: शुभम पटेल जी, आप मिर्जापुर से आये हुआ। आज हम आपसे जानल चाहत कि धान जो मुख्य खाद्यान्न वाली फसल है, एकर प्रमुख रोग कौन कौन हन आ ए रोग से कौन तरीके से बचल जा सकत है।
4: देखिए, धान में मुख्य रूप से जो रोग आते हैं उनमें से एक है आपका ब्लास्ट ऑफ राइस, इसे धान का प्रध्वंस रोग भी कहते हैं
3: जी।
4: तो ये रोग जो है मैग्नोपोर्थे ओराइजी नाम का एक फंगस होता है, उससे ये लगता है।
3: अच्छा।
4: और सामान्यतः ये बासमती और जो सुगंधित किस्म के जो आपके चावल होते हैं उन प्रजातियों में इसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिल जाता है
3: जी।
4: तो इसके जो लक्षण होते हैं वो आपको निम्न रूप से मतलब दिख जाएंगे खेतों में। जैसे जमीन के ऊपर के हिस्से का जो भाग होता है धान का, सभी हिस्सों को ये प्रभावित कर सकता है। तो इसमें एक स्टेज होता है जिसको हम लोग रोपण या टिलरिंग कहते हैं, जब पौधा शाखाएं बनाता है उसी स्टेज में या उसी अवस्था में ये उसे ज्यादा नुकसान करता है, नुकसान पहुंचाता है।
3: माने जब पौधा रोपाई के बाद,
4: हाँ जब
3: रोपाई के बाद जब मां से निकले लगे, हाँ,
4: जब कल्ले निकलते हैं उसी समय अच्छा। ये ज्यादा उसको नुकसान पहुंचाता है। और इसके जो लक्षण है वो आपको पत्तियों पे आंख के आकार का या नाव जैसा धब्बा
3: अच्छा।
4: दिख जाएगा, और जो बाद में ये चल के सिलेटी रंग का हो जाता है
3: अच्छा।
4: और इसके बाद जो होता है पत्तियां झुलस जाती हैं, मतलब सूख जाती हैं।
3: माने क्रम धीरे धीरे चलता है, अंत में पत्ती झुलस
4: झुलस जाएगी और जो गांठ रहता है तने का वहां से वो टूट जाएगा काला होके।
3: अच्छा, कमजोर हो टूट।
4: हाँ, कमजोर होके टूट जाएगा। तो इसमें तो आप दो तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे एक तो आप जो बीज है उसको बीज शोध सकते हैं या उसको उपचारित कर सकते हैं।
3: अच्छा।
4: और इसका जो मेन है आपको रोपाई में देरी नहीं करना चाहिए। जुलाई के ही पहले पखवाड़े में रोपाई पूरी कर लेनी चाहिए।
3: कुछ समय का भी माँ होला का हाँ, रोग असर करत।
4: अगर देरी से रोपाई होगा तो इसका संभावना बढ़ जाता है।
3: अच्छा।
4: और अगर जुलाई के प्रथम पखवाड़े में आपने रोपाई पूरी कर ली तो इसकी जो संभावना आने की होती है बहुत कम होती है।
3: माने कि समय के हिसाब से भी ये रोग से बचाव हाँ, कर जाता
4: है। समय का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो इसके अलावा आप धान के खेतों में एक ईडी फेनफास का 500 ml या कार्बिंडा जिम 500 ग्राम
3: अच्छा।
4: एक हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं।
3: ये छिड़काव कहाँ?
4: धान के खेत में।
3: खेत में
4: हाँ, टॉप ड्रेसिंग के रूप में,
3: माने फसल के ऊपर।
4: और इसकी कुछ रोग रोधी किस्में भी आती हैं, जैसे आपका एक हो गया पूसा बासमती 1637, एक आपका हो गया IR64, एक हो गया आपका पंकज, एक जमुना
3: जी।
4: एक सरजू 52 करके आता
3: अच्छा।
4: है ये सब आप रोप सकते हैं।
3: माने ये रोग रोधी प्रजातियां
4: हैं आपकी। इसी क्रम में एक इसका रोग देखने को मिल जाता है जिसे हम लोग बकाने रोग कहते हैं या इसे झंडा रोग भी कह सकते हैं।
3: अच्छा।
4: ये रोग एक होता है जिब्रेला फ्यूजिकुरेई, फंगस है।
3: अच्छा।
4: इसकी एक अपूर्ण अवस्था होती है जिसको फ्यूजेरियम मोनली फोर्मे कहते हैं।
3: अच्छा।
4: और
3: एकर कुछ लक्षण हो कैसे दिखे?
4: हाँ, इसके जो लक्षण है ये मुख्य रूप से तो बीज जनित होता है, मगर कभी कभी सॉयल मतलब मिट्टी के द्वारा भी आ सकता है। बकाने रोग के शुरुआती लक्षण में आप देखेंगे जैसे पौधशाला जो है आपका उसमें कोई पतला

0: पतला पेड़ रहेगा, असाधारण तरीके में वो लंबा रहेगा और पीले रंग का,
1: अच्छा
0: वो आपको नर्सरी में ही दिखाई पड़ जाएगा। जब उसकी अवस्था और उग्र हो जाएगी तो वो रोपाई से पहले ही मर जाएगा।
1: ओ माने कि नर्सरी जो लगल है धान का
0: हाँ
1: वही में का पहचान हो
0: हाँ
1: जाए।
0: बाकी पौधों से ये और लंबा हो जाएगा, आपको दिखाई
1: अच्छा
0: पड़ेगा जनरली, और वो पीले कलर का रहेगा।
1: माने कुछ ज्यादा तेजी से ही वृद्धि
0: हाँ
1: कर जाए।
0: हाँ और वही है कि रोपाई से पहले ही फिर नर्सरी खत्म हो जाती है, और कभी कभी रोपाई के बाद भी ये खेत में ऐसे ही आपको पीला पीला बड़ा बड़ा पेड़ देखने को मिल
1: अच्छा
0: जाएगा बीच बीच में,
1: जी,
0: जो कि बहुत मतलब पतला और
1: हाँ
0: लंबा हो जाएगा, वो ऐसे ही दिख
1: माने
0: सकता है।
1: उत्पादन के हिसाब से पौधा सही ना है।
0: हाँ। और उसमें होता क्या है, एक स्टेज आता है जब पौधा जो है फूल बनाता है, पुष्प गुच्छ जब निकलने वाला होता है, या पकने के पहले ही वो मर जाता है और बालियां खड़ी रह जाएंगी आपकी, मगर उसमें अंदर कुछ नहीं मिलेगा। तो इसके प्रबंधन के भी अलग अलग तरीके हैं।
1: अच्छा वो कहा।
0: उसमें आप जैसे सबसे पहले अगर आपको ये दिखता है तो पानी तुरंत निकाल दीजिए खेत में से,
1: अच्छा
0: क्योंकि इसके जो स्पोर होते हैं वो पानी में ही रहते हैं और वो एक पौधे से दूसरे पौधे पे फिर अपना आक्रमण कर देते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि जो पीला पीला है खेत में निकला हुआ है, उसको आप तुरंत उखाड़ के खेत से निकाल के उसको नष्ट कर दीजिए। और यूरिया की टॉप ड्रेसिंग जो है एकदम मत करिए, यूरिया डालिए ही मत, बंद कर दीजिए। बाकी रोग रोधी किस्मों का चयन आप कर सकते हैं। और इसमें एक और देखा गया है कि बोने से पहले ही गर्म पानी से बीज का उपचार आप कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको बीजों को 3 घंटे तक नॉर्मल पानी में आप भिगो दीजिए, उसके बाद 50 से 57 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी में 15 मिनट तक इसको डाल दीजिए, उसके बाद आप बो सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन में है आपका, जैसे 2% कार्बेंडाजिम का घोल बना के उसमें 5 घंटे तक सीड को भिगो सकते हैं। तो ये इसका मेन प्रबंधन में आ
1: मैंने तरीके
0: जाएगा।
1: से जो ना बीज शोधन करके
0: बीज
1: तब
0: शोधन ही इसमें ज्यादा देखा गया है कि ज्यादा उसमें कंट्रोल के लिए बीज शोधन के द्वारा ही ये हो सकता है, बाद में इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी अभी वो नहीं असरदार नहीं हो पाया है ज्यादा
1: जी।
0: कुछ।
1: और
0: और
1: कोनो रोग?
0: हाँ, एक और रोग है आजकल इसमें आ जाता है जो बैक्टीरियल ब्लाइट के नाम से आप इसे, या इसे जीवाणु पर्ण झुलसा भी कह सकते हैं। इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है जेंथोमोनास ओराइजी, इससे ये होता है। और ये मेनली बैक्टीरिया से लगने वाला रोग है जो धान में लगता है, और इसकी दो अवस्थाएं होती है, मतलब इसका दो स्टेज होता है।
1: अच्छा
0: पहला स्टेज है आपका, इसको हम बोल सकते हैं ब्लाइट, या इसको झुलसा भी लोग बोलते हैं। और दूसरा इसका स्टेज है जिसको मलानी या विल्ट या क्रेसेक कहते हैं।
1: तो का होते माँ?
0: इसमें होता क्या है कि महत्वपूर्ण इसका जो लक्षण है, पत्तियां झुलस जाती हैं रोग की इस अवस्था में, मतलब उस पे पत्तियों पे पीले रंग की पट्टियां ऊपरी सिरे से, मतलब ऊपरी
1: आगे
0: पत्ती
1: से
0: के,
1: शुरू हो
0: हाँ
1: जाए।
0: ऊपरी सिरे से शुरू होके नीचे की तरफ वो बढ़ती है, और जैसे जैसे नीचे बढ़ती जाती है ऊपर वाला जो पत्तियों का भाग होता है वो मुड़ने लगता है। यही इसका मेन आपको लक्षण देखने को आसानी से मिल जाएगा खेत में। और इसका जो मेन आप कह सकते उपाय है, वो खेत में ज्यादा समय तक पानी नहीं रखना चाहिए, उसको निकालते रहना चाहिए। और इसमें आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन करके आता है 5 ग्राम का, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 25 ग्राम, ये 10 लीटर के पानी में दोनों को घोल के 12 घंटे तक आप बीज को उसमें डुबा दीजिए, उसके बाद आप बुआई कर सकते हैं। या फिर एक है इसका और, 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से इसमें आप ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव सिंचाई वाले पानी में आप,
1: माने खेत में ही एकर छिड़काव ब्लीचिंग
0: हाँ
1: पाउडर
0: जो
1: करके।
0: पानी खेत में रहता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर आप 1 हेक्टेयर में 5 किलोग्राम डाल सकते हैं, इसको 15 दिन के अंतराल पे फिर दोबारा भी डाल सकते
1: ये
0: हैं।
1: जो बीज शोधे का बात आप करत हूँ तो ये तो माने हर तरह के रोग बदे फायदेमंद हुई
0: हाँ
1: अगर शोधन कर देता तो।
0: बीज शोधन मेन है, वो एक तरीके से बेस है, अगर आप किसी भी रोग से बचना चाहते हैं तो बीज शोधन, मतलब जितना स्वस्थ आपके पास बीज रहेगा रोगों के लगने की या आने की संभावना खेत में उतनी ही कम
1: माने
0: रहेगी।
1: किसान भाई जो है बीज का शोधन जो है अपन जो बीज तैयार के लिए ओके अपन घरे भी शोध सकत है।
0: हाँ ये दवाइयां जो हमने भी बताया है उसका वो उपयोग करके कहीं नहीं जाना है, बस मार्केट

0: से लेके आना है, उसको जो मात्रा हमने बताया है अभी उसके हिसाब से उसको मिला करके ही बुआई करें, तो
1: अच्छा,
0: उससे आपका संभावना बहुत कम रहेगा रोग का।
1: एकरे अलावा भी और कोनो रोग है?
0: जी, इसके अलावा भी और रोग हैं, जैसे कि इसमें एक और रोग आता है, सीथ ब्लाइट कहते हैं उसको,
1: अच्छा।
0: या इसको हिंदी में कहते हैं परछद अंगमारी। तो ये रोग जो होता है, ये एक आपका फंगस होता है, राइजोक्टोनिया सोलेनी
1: जी।
0: इसका नाम है फंगस का, इसी से ये रोग इसमें आता है।
1: अच्छा।
0: और इसके जो लक्षण है आपको देखने को मिल जाएंगे, ये इसके लक्षण आपको मेनली मतलब जब बालियां निकलेगा तभी आप इसके लक्षण देख सकते हैं, बाली
1: माने जब
0: निकलते टाइम ही।
1: कल्ला बाली निकल जाई
0: हाँ,
1: ओकरे बाद तब ये रोग का लक्षण दिखी।
0: तो बालियां निकलते टाइम ही आप इसके लक्षण को देख पाएंगे, जब
1: जो
0: बालियां निकलेंगी
1: लक्षण का रही के
0: इसमें।
1: बताइए।
0: इसमें देखिए, भूमि का जो सतह होता है, पानी का ऊपरी भाग, उसपे उसके पास जो आपके पड़छद होते हैं, पत्तियों का निचला सिरा, इस पे रोग के जो प्रमुख लक्षण आपको दिखेंगे, इसमें आपको 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा हरा, मतलब हरा धब्बा आपको दिख जाएगा जो बाद में चल के भूरा रंग का हो जाता है, और उसके बाद और जब वो हो जाएगा परिपक्व, तो आपको भूसा या पुआल जो होता जिसको बोलते हैं, उस रंग का ये हो जाएगा,
1: अच्छा
0: और इसके चारों तरफ बैगनी रंग की धारियां बन जाएंगी।
1: जी।
0: तो इसके प्रबंधन के लिए भी आप सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इसमें करना क्या है कि जैसे नाइट्रोजन वाले जो उर्वरक हैं आपका, इसका आप प्रयोग आपको रोग के प्रकट होने के बाद कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए, मतलब खेत में यूरिया वूरिया नहीं डालना चाहिए। और इसमें आता है 2 ग्राम प्रति किलो की दर से आप कार्बेंडाजिम से आप बीजोपचार कर सकते हैं, और आप एक इसमें जैसे रोग लग गया उसके बाद के लिए 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप इसमें हेक्सोकोनाजोल 5 EC करके आता है एक दवाई, उसका छिड़काव आप कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से।
1: इसके अलावा भी और कोनो रोग है?
0: हाँ, एक और इसमें आता है रोग फाल्स स्मट करके, जिसे आप आभासी कंड, या इसी को कुछ लोग हल्दी रोग भी कहते हैं, या इसी को लाई फूटना भी कह सकते हैं आप, जो नॉर्मली मतलब लोग जानते हैं। तो ये रोग क्या होता है, इसमें जो एक फंगस है अस्टिलेजिनोडिया वायरेंस करके, उस फंगस से ये रोग आता है। और ये रोग जो होता है, ये भी आप इसको बालियां निकलने के बाद ही देख सकते हैं, या बालियां निकलने के बाद ही ये आता है।
1: ठीक है, बचाव कैसे हुई?
0: इसका बचाव जो है, आपको अत्यधिक जो आप रोगग्रस्त बालियां आपको दिख जाएंगी खेत में, उसको आप निकाल के जला सकेंगे, उसको
1: अच्छा।
0: निकाल के आप जला देंगे। बाकी जो आपकी शस्क्रियाएं हैं, आपका जो घास वास, उसको समय समय पे आप उसको निकाल के वो कर देंगे। और इसके अलावा एक आता है इसमें खैरा रोग, जो कि मेनली मिनरल की कमी से यही रोग देखा जा सकता है धान में,
1: अच्छा।
0: ये जस्ते की कमी के कारण होता है धान में। तो इसमें होता क्या है कि निचली पत्तियां जो हैं वो पेड़ की पीली पड़ने लगती हैं, और पत्तियों में कत्थई रंग के आपके धब्बे आपको दिखने लगेंगे, जो उभरे उभरे रहते
1: यही
0: हैं।
1: सुनामी का खैर आप।
0: हाँ, खैरा है। तो जब ये ज्यादा लग जाता है, सीरियस हो जाता है, तो पत्तियां जो है पूरा सूख जाती हैं, कल्ला जो है वो नहीं निकलता, और पेड़ जो है वो बड़ा नहीं होता, वृद्धि रुक जाती है। तो इसके प्रबंधन बहुत ही आसान है, इसके लिए आप 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट 33% का प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले ही खेत के तैयारी के समय आप उसमें डाल दीजिए, फिर ये जो है आपका नहीं आएगा। अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं तो फिर 5 किलोग्राम आप वहीं जिंक सल्फेट 33% ही 5 किलोग्राम चूने के साथ 600-700 लीटर पानी में घोल के 1 हेक्टेयर में आप छिड़काव करवा दीजिए, उससे भी आपका ये प्रबंधन कंप्लीट हो जाएगा।
1: जी। तो शुभम पटेल जी, आप बहुत ही अच्छी जानकारी देना। ये तरीके से अगर किसान भाई अपन खेती करत हूँ धान का, जो भी बीमारी बाड़ी ओकर बचाव करत हूँ, तो उनकर उत्पादन अच्छा हुई, उनके लाभ
0: जी
1: हुई। आप जानकारी देना, एकरे बदे बहुत बहुत
0: जी
1: धन्यवाद।
2: भोला भैया,
3: हाँ दीना भैया।
2: देखा भैया, धान की प्रमुख बीमारियां में बातचीत वाला शुभम पटेल और रामकृष्ण मिश्र भैया, कितना फरियाई के
3: फरिया के
2: जानकारी देना
3: बतला।
2: भैया। देखा भाई, कहल जाए ना कि जब बीज का कोनो भी अगर खेती का काम चालू करत हो, तो बीज का शोधन जो ना सबसे जरूरी हो।
3: जरूरी बा।
2: अब बीज का शोधन जब बढ़िया हो जाए ना, तो अपन खेती जो ना एकदम बरियार हुई।
3: बरियार हो।
2: जब खेती बरियार हुई, तो अपन जेबा भी जो ना बरियार हो
3: बरियार हो
2: जाए।
3: जाए, कहे
2: तो
3: ना
2: भाई,
3: भैया।
2: मिलजुल के खेती करा, अब मेहनत करा।
3: मेहनत करा, काहे कि दीना भैया, अब हमन के खेती का जो मूल है ना, वो देखा बीज हो, और जब

0: अगर बीज अच्छा और बढ़िया हुई तो जाहिर सी बात हो अपन किसानी अपन फसल सब अच्छा हुई, और जब वो अच्छा हुई तो अपन आमदनी बढ़ जाए। तो ई तो बात बतकई हो गल। अब मन फेर का समय हो गल हो तो शिवापति मिश्रा भैया का देशभक्ति गीत हो, हम लोग भी सुनल जाए और पंच लोग भी इंतजार देखत हूँ, सुना देवल जाए।
1: अच्छा, सुनवाए दे भैया।

0: बोला भैया,
1: हाँ
0: कौनो फौजी हुई है कौनो किसान मितवा।
1: वाह।
0: ये देखा भैया, शिवापति मिश्रा भैया देशभक्ति गीत गौना है, कितना बढ़िया गीत गई ना।

0: एकदम जीव जो हरियर हो गए
1: एकदम हरियर हो गए
0: भाई। देखा किसान हुओ तो उनकर कुछ बखान करल भी जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है।
0: देश पे हमारे जो पहरुदार रक्षा करत हुओ हमने सुकून का नींद सुतत है ओके भी बहुत जरूरी है हमने की सम्मान देवल जाए। कल बिहाने का सुनावत हुआ भैया?
1: देखा कल बिहाने अपने खेती 6:05 पे हुई खेती के बाद जब मैं विषय रही करेला की खेती जानकारी नहीं अपन दिनेश कुमार सिंह भैया और सांझी के का सुनावत हुआ
0: संजा के देखा भैया 6:30 पे कृषि जगत के कार्यक्रम में फूल गोभी की खेती पे बतकही हुई राजेश कुमार राय भैया और दिनेश कुमार सिंह भैया।
1: पंच लोग ध्यान से सुनिए देखा बात बत कही हो करत करत अब चले के बेला हो गए दीना भैया तो पंच लोगन से आज्ञा लेवल जाए तो पंचो
0: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है, आइए सुने फिल्म संगीत। कार्यक्रम का ये पहला गाना,

चंद्राणी मुखर्जी और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे जुल्म की पुकार फिल्म का ये गाना। गीतकार थे वर्मा मलिक और संगीतकार थे सोनी कोमी। कार्यक्रम का अगला गाना आपका आपके रेडियो सेट पर। शाम के 7:05 और 19 सेकंड आकाशवाणी वाराणसी आपके साथ।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की रचना। यह आवाज थी लता मंगेशकर की और इस गीत को हमने लिया था फिल्म लोफर से। कार्यक्रम का आखिरी गाना आपके रेडियो सेट पर। राज फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश

राज फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, गुलशन बावरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी का ये संगीत। आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना अनुसार फिज़ा जहरा पुत्री आबिदा हुसैन निवासनी गोपालपुर थाना मुगलसराय जिला चंदौली कहीं गुम हो गई हैं। फिज़ा जहरा के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 11 वर्ष, लंबाई तकरीबन 3 फीट, एक गहरा बदन, रंग गोरा और चेहरा गोल है। वह प्रभु नारायण पुत्र हरिराम निवासी हरिहरपुर थाना मुगलसराय जिला चंदौली कहीं खो गए हैं। प्रभु नारायण के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 65 वर्ष, लंबाई 5 फीट और रंग गोरा है। वह अमृता सिंह पुत्री उमाशंकर सिंह निवासनी सवैया महलवार थाना शहाबगंज जनपद चंदौली कहीं खो गई हैं। अमृता सिंह के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 22 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। लापता के समय अमृता सिंह ने हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी। इन सभी खोए हुए व्यक्तियों के बारे में यदि कोई जानकारी हो तो इस पते पर दें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली या अपने निकटतम थाने को भी आप सूचित कर सकते हैं। पता एक बार पुनः सुन लें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला चंदौली या अपने निकटतम थाने को भी आप सूचित कर सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रेडियो एक प्रभावशाली माध्यम है। रेडियो का प्रयोग करें। रेडियो पर विज्ञापन सर्वोत्तम और सस्ता है। रेडियो पर विज्ञापन देकर अपनी आय बढ़ाएं। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप लखनऊ केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया इस वाद्य संगीत के साथ प्रतीक्षा करें।

जी हाँ, ये हसीन शाम ढलने को है और आप हैं आकाशवाणी वाराणसी के संग। राज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गुलशन बावरा के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। फिल्म संगीत हम फिर लगा रहेंगे रात 8:15 पर कार्यक्रम रसमाधुरी में। तो सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी का कार्यक्रम रात 11:10 तक। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 7:15 हुए।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती को 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, प्रदेश में दिख रहा है विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि की गिनती में लगे 23 कर्मचारियों का इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट चढ़ावा प्रकरण से जुड़ी याचिकाओं पर 13 जुलाई को करेगा सुनवाई। प्रदेश में कल से शुरू होगा दस्तक अभियान। संचारी रोग नियंत्रण के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें करेंगी जागरूक। और राज्य में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या के सुहावल में 432 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने यहां पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में अब विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय हो रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में दर्शन करने के लिए देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु यहां का विकास देखकर अभिभूत होकर जाते हैं।
1: आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, आज वो फोर लेन और सिक्स लेन की सड़कें हैं। चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है। स्वाभाविक रूप से अयोध्या को पहचान मिलेगी तो बीकापुर को भी, रुधौली को भी, मिल्कीपुर को भी, गोसाईगंज को भी उसका लाभ प्राप्त होगा।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भदरसा नगर पंचायत का नाम भरतकुंड और ग्राम पंचायत खिरौनी सुचितागंज का नाम मां ज्वाला देवी के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आज बस्ती में 504 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने हरैया में 27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के लिए भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक आदर्श मॉडल बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्ती में मखौड़ा धाम, भद्रेश्वर नाथ धाम और तपसी धाम में चल रहे विकास कार्यों के साथ साथ अब कर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य भी आगे बढ़ाया जाएगा।
1: ये जो विकास कार्य हो रहा है, मखौड़ा धाम का हो, भदेश्वर नाथ धाम का हो, तपसी धाम का हो, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आस्था का सम्मान करते हुए उसके लिए भव्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी करती है और इसीलिए तो 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य बन रूप से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी और अयोध्या धाम के रिंग रोड के रूप में भी वह काम करेगा, इस रूप में उसका विकास किया जा रहा है।
0: अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि की गिनती के काम में लगे 23 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इन कर्मचारियों के इस्तीफे को चढ़ावे में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद व्यवस्था में किए गए बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को अब सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ड्यूटी करनी होगी। इसके साथ ही छुट्टियों में भी बदलाव किया गया है। इन कर्मचारियों के इस्तीफे के बाद अब दान राशि की गिनती के लिए 13 कर्मचारी शेष बचे हैं। वहीं चढ़ावे की गिनती को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की जा रही है। अब इस काम के लिए अलग से विशेष कर्मचारी रखे जाएंगे। इन कर्मचारियों को पुलिस से सत्यापित कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा और बिना जेब वाली विशेष ड्रेस पहनकर काम करना होगा, जिससे दान राशि की निगरानी और पारदर्शिता बनाई जा सके। मामले की जांच कर रही पुलिस की विशेष टीम जांच का दायरा बढ़ाते हुए आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा से भी पूछताछ कर रही है। इस बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष

0: नृपेंद्र मिश्र आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के पदाधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के इंजीनियरों के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और नई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री मिश्र कल राम कथा संग्रहालय में निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में ट्रस्ट के नव नियुक्त अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन पहली बार आधिकारिक रूप से शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ के सामने प्रस्तावित है। इन याचिकाओं में घटना की सीबीआई जांच और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का ऑडिट कैग से कराने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में 7 जुलाई को अयोध्या की एक अदालत ने गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। स्थानीय अदालत ने पिछले महीने की 29 तारीख को सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर का 8वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों को 1071 उपाधियां और 47 पदक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में राज्यपाल ने 300 आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी किट का वितरण और 600 बालिकाओं का HPV टीकाकरण भी कराया। राज्यपाल ने कहा कि छात्राएं तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल कर देश का गौरव बढ़ाएं। प्रदेश भर में कल से संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को मौसमी बीमारियों समेत अन्य बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में जागरूक करेंगी। फतेहपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदय भान सिंह ने बताया कि इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा।
1: सारे ब्लॉकों में जो कार्यक्रम है हमारा, इसमें करीब 7-8 विभाग हमारे जुड़े हुए हैं और 7-8 विभाग का प्लान है। इस तरीके से बनाया गया है कि एक ही स्थान पे उसी दिन सारे लोगों का कार्यक्रम, तो उसमें ये रहता है कि कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि जो छूट जाए, जिससे कि वहाँ की सारी व्यवस्थाएं एक साथ ठीक हो सके। कार्यक्रम में जितना मलेरिया वर्कर है वो लगा है हमारे यहाँ से, HS लगे हुए हैं और नोडल ऑफिसर्स भी बनाए गए हैं और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और उनके अधीनस्थ जितने चिकित्सक हैं वो सभी लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हो रही भारी बारिश से हो रही जनहानि पशुहानि की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से नुकसान का आकलन कर 24 घंटे में मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: राज्य में लगातार हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। भारी बारिश के कारण कई जिलों में आज स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। जिलाधिकारी बदायूं अवनीश राय ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को कल भी बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उधर बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण अमरोहा में खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र की कई बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा के सभी उपाय कर लिए गए हैं। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश का ऑरेंज और पश्चिमी जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आगामी 48 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान जताया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती को 936 करोड़ रुपए की

0: विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, प्रदेश में दिख रहा है विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि की गिनती में लगे 23 कर्मचारियों का इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट चढ़ावा प्रकरण से जुड़ी याचिकाओं पर 13 जुलाई को करेगा सुनवाई। प्रदेश में कल से शुरू होगा दस्तक अभियान। संचारी रोग नियंत्रण के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें करेंगी जागरूक। और राज्य में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 7:31।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज विशेष मेहमान है आशीष अग्रवाल जी, जो हम सबको राह दिखाते हैं कि अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर ही कितना फायदा हमें हो सकता है और हमारी प्रकृति को भी कितना फायदा हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। आशीष जी, सर्वप्रथम जो आपका एक मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं, सस्टेनेबिलिटी माइंडफुल कंजम्पशन अ वे टू मिनिमलिस्टिक लिविंग। ये जो आपका तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर हमें सरल शब्दों में समझा सकें जो हमारे श्रोता सभी समझ पाए कि क्या है ये कॉन्सेप्ट और इसके पीछे की मूल सोच क्या है।
4: तो मैं इसके वाई से शुरू करता हूँ कि ये पूरा मुहिम शुरू क्यों हुआ। तो आज के डेट में समाज में तीन तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सोशल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, वातावरण का जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हमारे सामने आ रहा है। तो ब्रिज फॉर चेंज एक मिशन पर है जहां वो यस आई एम माइंडफुल मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माइंडफुल कंजम्पशन को एज अ प्रोफाउंड टूल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी और हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी, हमारे एक्शंस इंप्रूव होंगे तो आसपास होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप मिटिगेट होना शुरू हो जाएंगे।
3: जी,
4: इसमें हम लोग कहते हैं युवाओं से कि छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जहां पॉसिबल हो वहां एक्शंस लेने हैं, जितना पॉसिबल हो उतना करना है। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं PRR कि क्या हम लोग कभी पॉज लें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रिफ्लेक्ट करें और जिस भी पैरामीटर्स पे, चाहे वो फूड है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशन है, प्रोफेशन है, किसी भी आयाम पे जहां उनको लगता है रेगुलेट कर सकते हैं उस चीज को रेगुलेट करें। और ये एफर्टलेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वही 2 दिन 4 दिन 10 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स, टाइनी एक्शंस कैन ब्रिंग जाइगेंटिक रिपल्स, तो वो हमारा ध्येय है। और सरल जीवन जहां आपको सही लगता है और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स, तो यही पूरा मूवमेंट का थॉट प्रोसेस है।
3: आशीष जी, आप जो बात कर रहे हैं माइंडफुल कंजम्पशन की, वही अधूरी है आपके पूरे जो मुहिम की, उसको और गहराई से समझने के लिए अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि माइंडलेस कंजम्पशन क्या होती है, जिसको काउंटर करने के लिए आप ये जो माइंडफुल कंजम्पशन लेके आए हैं, ताकि हम बेहतर समझ पाए कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
4: जो माइंडलेस कंजम्पशन की बात करें तो जो नीड वर्सेस वांट जो बोलते हैं
3: जी,
4: कि हम लोग सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी नीड तो इतनी है, लेकिन कई बार हमारी चाहतें होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, समाज का स्टेटस होता है, उस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज ऐसी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी इस्तेमाल करते हैं, एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं जिसकी शायद हमें उतनी जरूरत नहीं हो। और उस जर्नी में फिर बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हम लोग ओवर कंजम्पशन करते हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस सामने रखते हैं। तो उस चीज को ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस अनरियलिस्टिक जो हमारे एम्बिशन है उसको कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा बेहतर और मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल की तरफ युवाओं का, हमारे जो भी ऑडियंस है उनका ध्यान लाया जाए।
3: तो आपने जो नीड्स और

0: वॉन्ट्स की बात करी कि एक तो है हमारी जरूरत और एक है हमारी ख्वाहिश,
1: बिल्कुल
0: ये नीड और वॉन्ट का जो अंतर है, क्या आप हमें और गहराई से इसको समझा सकते हैं?
1: ये बहुत मुश्किल है। नीड का तो हमारा मानना है कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वैसा डेवलप है कि हमें पता है कि ये हमारी जरूरत है, और कब वो जरूरत वांट हो रही है उतना हमें अंदर से आवाज आ जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, इतने फास्ट इवॉल्विंग सोसाइटी में, कि वांट का कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है, और वहीं पे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि सपोज मैं आज आशीष एक्स पर हूँ, मुझे वहां 5x तक पहुंचना है, जस्ट बिकॉज मेरे पियर ग्रुप में कोई वहां पर है। तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे स्किल्स क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस पे मैं हूं कि नहीं। मैं बस भागता रहता हूं कि मुझे 5x तक पहुंचना है, क्योंकि मेरे चाचा का बेटा या एक्स वाई जेड इन माई फैमिली इज एट दैट पॉइंट। तो उसमें दो चीजें होती है। पहला तो होता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सही समय पे सही जगह पे नहीं था, तो मैं एक्स से 3x तक पहुंचा। तो सोसाइटी इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी शॉर्ट साइटेड है कि वो उस चीज के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगी कि 3 गुना आगे बढ़ा, बट उस चीज के लिए रेडिक्यूल करेगी कि देखो अभी भी वो इंसान तुमसे कितना आगे है। तो वो जो स्यूडो कमी है ना, जो समाज बताता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, तुम इतने स्किल्ड नहीं हो, उस कमी को छुपाने के लिए हम लोग माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं। उस भड़ास को दबाने के लिए किसी का वो भड़ास फ्रस्ट्रेशन वो वॉइड खाने पे निकलता है, किसी का फैशन पे निकलता है, किसी का रिलेशन पे निकलता है, किसी का दिन भर इंस्टाग्राम और ये सब पे निकलता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं एक्स से 5x पहुंच भी गया, राइट टाइम राइट प्लेस, बहुत मेहनत की, सही लोग मिले, तो भी अगर मैं 5x पे पहुंचा तो ये समाज मुझे शांति वाली जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो बोलता है अब तुम्हारी तुम 6 फिगर सैलरी कमा रहे हो, तो तुम्हें इस तरह का मोबाइल, इस तरह का घर, इस तरह के वेकेशन होने चाहिए। तो हमने जो रिसर्च किया उसमें यही पाया कि वेदर वी आर सो कॉल्ड सक्सेसफुल और नॉट, दोनों ही केस में मैं माइंडलेस कंजम्पशन करता हूं बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर।
0: जी,
1: और वही सारे स्ट्रेस की, वही सारे नॉइस की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोग लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से।
0: जी, तो कैसा डेटा, किस तरह से फायदा, जो आप कह रहे हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होती है, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप कंज्यूम करते हैं, तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि आपको खुद को फायदा होता है, क्लटर कम हो रहा है, आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा पर्यावरण को भी इसका लाभ होता है, जो आप डेटा की बात कर रहे हैं उसको आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं?
1: तो कोई भी चीज जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होती है किसी भी फॉर्म में, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एमिशंस, कुछ पॉल्यूशन हुआ, उस पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के मेजरमेंट में नापा जाता है। जैसे हम लोग होते हैं दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं हम लोग। तो कोई भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट है। तो ये एक अच्छी बात भी है और मुश्किल भी है कि हर चीज का इमिशन हो रहा है तो मैं कंट्रोल कैसे करूं, लेकिन हर चीज का इमिशन हो रहा है तो वहां अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चूंकि सैकड़ों चीजें अपने दिन में कंज्यूम करते हैं, तो जहां जहां हमें पॉसिबिलिटी लगती है हम लोग अगर उसको थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा इनडायरेक्ट पॉल्यूशन बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम में से सब लोग भारत में तो चाय पीना पसंद करते हैं, तो अगर मैं हर दिन सुबह 1 कप चाय पीता हूँ तो हफ्ते में मैंने 7 कप चाय पिए, तो डेटा बताता है, जैसे उसका सोर्स है आवर वर्ल्ड इन डेटा, तो डेटा बताता है कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 किलोग्राम कार्बन इमिशन होता है, और अगर 1 लीटर दूध में 10 कप चाय बनते हैं तो इसका मतलब हर कप का करीब 250 ग्राम हुआ। तो हम लोग जब इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस के साथ तो ये नहीं बोलते कि आप चाय पीना बंद कर दो, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में 1 कप कम कर सकते हैं। तो अगर हफ्ते में 1 कप भी कम किया गया तो साल में 250 ग्राम इंटू 52 करीब 12-13 किलो कार्बन एमिशंस बच जाए। तो ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ऐसे हजारों चीज हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, तो जहां जहां हम लोग कंफर्टेबल है वहां अगर थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा एमिशंस बचाया जा सकता है।
0: इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जो शुरू किया था मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें भी उन्होंने हर एक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को एक महत्वपूर्ण बताया था, जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में। तो वहां पर आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, किन किन आदतों से हम हमारा जो भी वातावरण है उसको हम ज्यादा शुद्ध करने में या उसके संरक्षण में हम अपना योगदान कर सकते हैं?
1: तो इसको शेयर करने के लिए मैं 5R का यूज करूंगा, रिड्यूस रियूज रिसाइकिल। तो 5R में सबसे पहले वही रिड्यूस आता है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कितना भी पेड़ लगाएं, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एमिशंस कम नहीं होंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, जो कि मिशन लाइफ का भी देह है कि अपने लाइफस्टाइल को एनवायरमेंट से कैसे अलाइन किया जाए। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा बताता है कि हर साल करीब 50 किलो खाना हर भारतीय वेस्ट करता है ऑन एन एवरेज। तो फूड वेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें इमीडिएट इमीडिएटली रोक देनी चाहिए अगर अभी तक हम लोग के जीवन शैली में वो चीज नहीं आई है तो। वैसे ही एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, चाहे वो मिल्क हो चाहे वो मीट बेस्ड

0: चीजें हो, जो भी चीज एनिमल से आ रही है, तो उसको हम लोग थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही एयर ट्रेवल का कार्बन इमिशन बहुत होता है, तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में एक आम नागरिक जो करता है तो फूड वेस्ट ना करे और एयर ट्रेवल कम हो। रिड्यूस के बाद अगर रिप्लेस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कपड़े का थैला यूज करें, तो आमतौर पर हर दिन अगर हम लोग सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो 3 प्लास्टिक 4 प्लास्टिक यूज हो जाता है, तो सिर्फ एक बैग यूज करेंगे साल भर में अगर 3 × 365 भी करें तो 1000 प्लास्टिक की बैग्स सिर्फ और सिर्फ सब्जी के मायने में कम हो सकती है। और वही वो प्लास्टिक भी जैसा हम लोग बोलते हैं ना, सिंगल यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो रिप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से। आजकल टिश्यू पेपर को यूज करने का बहुत फैशन चला है, तो टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रूमाल वगैरह से, जो हमारे घर में हमारे माता पिता और दादा दादी हमेशा ही करते आए हैं। तो इससे बहुत सिंपल सा एक्ट है, लेकिन बहुत सारा पानी, बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कार्बन इमिशन बच सकता है। रिपेयर, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है कि रिपेयर कराने का उतना टाइम नहीं है, तो अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा रिपेयर कराने फिर वापस लेने आऊंगा, इतने में तो मैं नया सामान मंगा लूंगा। लेकिन रियल कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते किसी भी चीज का, अगर एनवायरमेंटल कॉस्ट भी जोड़ा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉस्ट जोड़ा जाए, तो किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जहां जहां पॉसिबल हो रिपेयर कराएं। इन सब में जब सब हो गया, रिड्यूस हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपेयर हो गया, तब जो बचा है उसको रिसाइकलिंग के लिए दें।
1: आशीष जी, युवाओं की अगर हम बात करें, आप युवाओं को प्रेरित करने पर काफी बल देते हैं। अब युवा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और वो अपने जो स्वप्न है उनको भी बहुत गहराई से देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं, और एक आधुनिक जीवन शैली भी वो जीना चाहते हैं। तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर साधारण अपनी जीवन शैली को करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, तो उससे आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन बेहतर होगा? तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप इसको अचीव करते हैं, जो युवा है उनको इस दिशा में ले जाने की ओर?
0: थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट इनफ रिपोर्ट्स आर देयर इन मार्केट, जहां पे ये पता है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, जिसको अब अपर मिडिल क्लास बोलते हैं, उसके ऊपर जो एलीट क्लास, एफ्लुएंट क्लास होता है, तो आज के डेट में जितनी भी मॉडर्न एज बीमारियां हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओवरवेट हो, लोनलीनेस हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब उसी एफ्लुएंट क्लास में आ रहा है। तो इसलिए बहुत एविडेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन करने से हमारा लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। उसके लिए अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनों के लिए समय निकालना जरूरी है, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, रिलेशंस पे ध्यान देना जरूरी है। तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे मिशन में वही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सादगी के साथ वो समृद्धि लाई जाए तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर सादगी भरा जीवन रहेगा आपका, माइंडफुल अगर आप रहोगे जीवन में, तो आपका ही ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है, कम होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग इंप्रूव होगी, और आपकी अगर वेलबींग इंप्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, जिससे आपका काम और बढ़ेगा। तो ग्रो करने के अगेंस्ट नहीं है कोई भी थॉट प्रोसेस, बट वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। तो वही थॉट प्रोसेस है। और गांधी जी ने भी बोला है कि कैपिटल में बुराई नहीं है, उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो डिफाइन करता है वेदर इट इज एन एविल और ब्लेसिंग। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि और सादगी को साथ में लेके चलने की कोशिश करो।
1: कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जिनसे उनको समझाते हैं कि कैसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर माइंडफुल कंजम्पशन करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलाइज करते हैं जरूरत के अनुसार, तो किस तरह का फायदा होता है एनवायरनमेंट को, ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं एग्जांपल्स देके?
0: आज के यूथ बहुत इंस्पायर्ड है, बहुत मोटिवेटेड है, बहुत ब्लेस्ड भी है, और हमने देखा है कि दे वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बस उन्हें थोड़ा सा नज की जरूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर रैशनैलिटी बेस्ड बातें की जाए, लॉजिकल तरीके से कोई चीज पुट की जाए, तो उनका सपोर्ट काफी मिलता है। तो ये जो माइंडफुल लिविंग है, ये तो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से करते आए, कोई नई चीज नहीं, हमारे सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशंस में है। बस डेटा की मदद से जब हम लोग पुट करते हैं उनके सामने, कीप इट, तो उनका इमोशंस एक्शन की जर्नी है बहुत इजी हो जाती है। अगर अभी कपड़े की बात करें, तो एक कंपनी का भी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, उसमें उनका कहना था कि जो वो एक जींस बनाते हैं उसके लाइफ साइकिल में, मतलब डेनिम बनाना, स्टिच करना, शॉप पे ले जाना, फिर हमारे जैसे लोग उसको परचेज किए, यूज किए, धोए, यूज किए, धोए और फाइनली फेंके, तो उस पूरे जीवन काल में एक जींस के करीब 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट लाइफस्टाइल जैसा भी हो बहुत बढ़िया है, क्या उसमें छोटा सा बदलाव ला सकते हैं?
1: So, आशीष जी, एक जो प्रोजेक्ट 333 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, शायद आपने उसको खुद अपनाया भी है, तो आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है, न सिर्फ पर्सनली जो भी उसको अपना रहा है, जो भी अडॉप्ट कर रहा है उस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
0: जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया

0: 21 में तो बहुत इम्पॉर्टेंट था कि पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद उसकी शेयरिंग करें। तो उसमें जब रिसर्च किए तो ये एक इनिशिएटिव आया प्रोजेक्ट 333, जहां पे पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो 33 पर्सनल आइटम्स के साथ 3 महीने की जिंदगी जिए। वो पर्सनल आइटम्स मतलब जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसके बिना आपका जीवन नहीं हो सकता, आपका किचन वेयर, आपका सोफा, वो नहीं, आपका खुद का 33 आइटम्स।
1: कुछ अगर आप एग्जांपल दे सकते हैं,
0: जैसे मेरे कपड़े हुए, मेरे स्टेशनरी हुई, मेरा सैनिटरी किट हुआ, मेरा ट्रेवल बैग, लैपटॉप वगैरह हुआ, तो जो चीज अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो अपने साथ रखूंगा। तो वो चैलेंज हम लोगों ने लिया 2021 में और आज 5 साल हो गए मैं उसी 33 सामान के साथ जिंदगी जीता हूँ। तो उससे बहुत वही लिबरेशन हुआ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, बहुत सारी चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारा स्पेस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज अगर अगेन 33 इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट पुटिंग सम फिगर इज इम्पॉर्टेंट। तो जिसको जो इम्पोर्टेंट लगता है, जिसको जो कम्फर्टेबल लगता है, वो एक दायरा बना ले कि मुझे 50 चीजें या 55 चीजें के साथ 3 महीना 6 महीना ट्राई करना है, तो वो एक जो फ्रीडम है उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने क्लटर को कम करने का, जिससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस कर सके। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गई है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कर रहे हैं उसमें क्या थोड़ा कम किया जा सकता है। तो 2 तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, एक तो ग्रोसरीज वगैरह मंगाने में, तो उसमें भी अगर हम लोग बल्क में मंगाते हैं या खुद जाके ले आते हैं तो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है वो कम होगी
1: जी।
0: और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वो है पैकेज्ड फूड, उसको कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें फिर जब सामान आता है तो 1 टाइम प्लास्टिक, 1 टाइम कटलरी, और उसमें फिर जो वो खाना लगा हुआ होता है उसको वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है उसको रिसाइकिल करने में। तो क्या हम लोग इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें, एलिमिनेट कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत तो करें, तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
1: तो इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, एवरेज एक आम नागरिक कैसे ये पहचान करे कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माइंडफुल कंजम्पशन के दायरे में आती है, और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जो माइंडलेस कंजम्पशन के दायरे में आती है और जिसको हम हटा सकते हैं।
0: तो इसमें 2-3 प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको जब भी हम लोग परचेज करने की सोच रहे हैं या शॉपिंग करने का या किसी भी तरीके का कंजम्पशन करने की सोच रहे हैं। तो क्या हमें इसकी जरूरत है इमिडिएटली, अगर मैं इसको 3 महीने बाद भी लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो जो 3 महीने का गैप है या 2 वीक का गैप है, उससे आपको इमिडिएटली पता चल जाएगा कि ये रियल में नीड है या वांट है। तो एक बार नीड वर्सेस वांट की चीज हो गई, तो जैसा बोलते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पल्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब हमें महसूस हो रहा है इम्पल्स है तो बोले कि चलो 2 घंटे बाद ही कर लेंगे, तो फिर हम लोग जजमेंट लेने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये सही में नीड है या वांट है, और फिर नीड है कि वांट है फिर वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज इसको मैं नहीं खरीदता हूं या खरीदती हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद खरीदूंगा, तो फिर 2 हफ्ते कम से कम वो चीज टली, तो 2 हफ्ते तक तो कम से कम वो इमिशन इनडायरेक्टली बचे।
1: जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था, वही वांट में ये भी आ जाता है कि आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कम्पीट करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई चीज है तो आप भी वो ले लेते हैं हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं वांट के, जिसमें शायद अगर हम थोड़ा सा कहें कि हार्श वर्ड है लेकिन उसको लालच या ग्रीड भी कह सकते हैं, तो उससे हमें बचना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता ना, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, वो तो हमने सुना ही है, और उसका वो रेस का एक स्पाइरल है, वो कभी खत्म नहीं होगा, और उससे स्ट्रेस ही होना है। जो पहले मैंने एक बार शेयर किया X से 3X और 5X की बात, वो वही चीज है। तो हमें देखना है कि हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम लोग सबकी जर्नी अपनी अपनी है, और हमारे कैनवस पे जिस चीज की जहां जरूरत है उस पे अगर फोकस करेंगे तो बहुत लाइफ सिंप्लीफाइड रहेगी और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे हम लोग,
1: हेल्दी लाइफ भी जी पाएंगे। और शायद ये भी है कि आपका जो फिजिकल स्पेस जब फ्री होता है तो आपका मेंटल स्पेस भी फ्री होता है, आपको कम चीजों का ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ऐसे में हम अपनी हॉबीज का या अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा टाइम दे सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है?
0: 100% मैम। तो अभी हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का जो लाइफस्टाइल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज गुड, लेकिन उसी में डेटा भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही बहुत ज्यादा लोनलीनेस है, वहां के बच्चों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि वी नीड टू टेक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, तो हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसको बनाकर वेस्ट की जो अच्छी चीजें हैं उसको इनग्रेन करनी है। तो बोलते हैं ना मॉडर्निटी और सभ्यता को मिलाने की जरूरत है।
1: तो जो एक सादगी वाला जीवन शैली है जिसे आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको लेकर अलग अलग धारणाएं हैं सबके बीच। सो आप हमें बताएं कि प्रमुख गलत फहमियां क्या है मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को लेकर, और उनको दूर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है जब आप युवाओं को कन्विंस करना चाहते हैं।

0: हैं इस राह की ओर बढ़ने की तरफ।
1: तो जब भी हम लोग माइंडफुल और सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ना, तो आम तौर पे ये धारणा बनी है कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बोला जाएगा
0: जी
1: बोला जाएगा ये मत करो वो मत करो, होता है ना साधु बन के हिमालय पे चले जाओ। तो उस कारण से क्या होता है कि लोग इस लाइफस्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करने चाहते, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में। तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे वन पे छोटे छोटे एक्शन लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इतनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, फैशन, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी, किसी भी मायने में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करती हैं तो आपकी वेलबींग बढ़ेगी, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल रिलेशंस इंप्रूव होंगे तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो उस चीज को बताना, कई बार होता है कि डे वन पे हम लोग बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि मत कीजिए, और किसी भी चीज में वो हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हमें अगर कुछ 6 महीने बाद कोई चीज अचीव करनी है तो हमें वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट टारगेट, उस टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। तो माइंडफुल लिविंग में भी वैसा ही है, एक छोटे सी चीज से शुरुआत करते हैं और वो चीज भी आपको डिसाइड करनी है। तो देयर इज नो फिक्स गाइडलाइन कि अगर आप एक्स करते हो तो आप माइंडफुल हो, अगर आप वाई करते हो तो माइंडफुल नहीं हो। ये एक्स और वाई हर इंडिविजुअल अपने लिए डिसाइड करे
0: जी
1: कि वो सैकड़ों चीजें कंज्यूम कर रहा है उसमें कहां वो किस चीज को रेगुलेट कर सकता है, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस, क्योंकि लाइफस्टाइल और पीस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
0: हमारे जो श्रोता हैं जो आपकी बात सुनकर इंस्पायर होंगे और वो तुरंत कुछ ऐसा करना, बदलाव लाना चाहें अपने जीवन शैली में जो सिर्फ त्वरित ना हो, लंबे समय तक उसका पर्यावरण को फायदा हो, तो कोई ऐसी कॉमन चीजें बता सकते हैं जो हरेक के लिए लागू है, कोई सरल 2-3 ऐसे उपाय, ऐसी बदलाव अपनी जिंदगी में जो वो ला सकते हैं?
1: जहां जहां अगेन पॉसिबल हो, तो अगर हम लोग कार यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में अगर एक बार कार पूल कर ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। महीने में मैं एक बार ट्रेवल कर रहा हूँ तो साल में 12 ट्रिप ले रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ट्रेवल। तो 12 एयर ट्रेवल करने से कम करके अगर एक भी कम करके मैंने ट्रेन ले लिया तो एयर ट्रेवल का बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है।
0: Yes.
1: वैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हर इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े लोग हो, दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से हमारा मिलना होता ही है, चाहे वो काम के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लेजर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो डेटा बताती है कि एक आम हिंदुस्तानी करीब 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। काम पे तो जो हम लोग करते हैं वो करते ही है, तो उस 3 घंटे को घटा के 2 घंटे भी किया जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इमिशन है। तो अगर 1 घंटे भी कम किया जाए तो साल भर में 365 घंटे हमने स्ट्रीमिंग कम की तो उसका बहुत बड़ा इमिशन बचेगा। सिमिलरली जो वर्किंग लोग हैं हमारे मेल्स में, हम लोग बहुत सारे लोग को मैंने देखा है इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो वो अनरीड मेल क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो किसी कंपनी के सर्वर में सेव है, तभी तो आपके लिए वो जब आप खोलते हैं वहां अनरीड दिखाता है। तो हर मेल का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम इमिशन है, कितना बड़ा मेल है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे इमिशंस बच सकते हैं। तो जो भी पहलू है हमारी जिंदगी का, किसी भी चीज को काम करने में चूंकि एमिशंस हो रहे हैं तो किसी भी चीज को में हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस लाते हैं तो एमिशन बचेंगे, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, ट्रेवल हो, टेक्नोलॉजी हो।
0: कुछ और एग्जांपल्स भी आप बताना चाहेंगे?
1: तो जैसे IIT बॉम्बे के एक सर है, सोलंकी सर, तो उनका बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है वाह का, रिंकल्स अच्छे हैं, तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहने तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आयरनिंग का एमिशन बहुत है, 150 ग्राम, 200 ग्राम एक कपड़े को आयरन करने में एमिशन होता है। एनर्जी हमने यूज की बिजली को, बिजली उत्पन्न करने में जो इमिशन हुआ, हाँ, तो कार्बन इमिशन वैसे कैलकुलेट हुआ कि हमने डायरेक्ट इसके लिए तो बिजली यूज की लेकिन ये बिजली को पहुंचाने में क्या इमिशन हुआ वो मेजर होता है। तो अगर एक कुर्ते में मैंने 100 ग्राम यूज किया एग्जांपल के लिए, तो 52 हफ्ते में मैं सिर्फ 52 कपड़े कम करूंगा तो 5.5 किलो इमिशन हमने कम किए। तो जहां पे भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो वो करने की जरूरत है, और वो जरूरत इसलिए कि कई बार हमें लगता है इस छोटे से एक्ट से बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग छोटा छोटा ही बदलाव लाएंगे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हर देश का चूंकि वर्ल्ड को एक कमिटमेंट है एमिशंस को लेके, तो उस कमिटमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है वो।
0: एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम सबके पास ये शक्ति है कि हम योगदान दें, जो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं, एमिशंस कम करना चाहते हैं। एक और पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के नवाचार आए हैं जो आपको प्रमुख लगते हैं, जिनसे ये उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं।
1: सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये इंटरव्यू ही है कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। देश की बात करें मिशन लाइफ के बारे में, ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 गोल 2030

0: तक के लिए जो है, तो 17 में से 3 गोल, गोल नंबर 3, 12 एंड 13 सीधे सीधे जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे अलाइंड है, क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व ने भी इस चीज को समझा है कि वेलबींग और माइंडफुल लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज में आजकल ESG के ऊपर बहुत फोकस है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो एनवायरमेंट से अलाइंड होने चाहिए। ई एनवायरमेंट, एस सोशल एंड जी इज गवर्नेंस। तो इन तीनों ही मामले में उनको अलाइन होना चाहिए। तो उसपे बहुत सारा काम हो रहा है, हर कंपनीज पे फोकस करे कि उनके एमिशंस को वो लोग कैसे कम कर सके। सेम चीज अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में भी आज बहुत सारी रैंकिंग में होता है ना, गवर्नमेंट रैंकिंग देती है कि आपका ए है, ए प्लस है, बी है, तो उस रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके कैंपस में क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इंसान के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहे हैं।
1: आशीष जी, जो भी युवा चाहे कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़े एनवायरमेंट पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज्यादा खुश हो, डीक्लटरिंग जैसा आप कह रहे हैं कि जब डीक्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज जरूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो इस पूरी जर्नी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यूथ को कि किस तरह के वो एक दृष्टिकोण अपनाएं, माइंडसेट अपनाएं, या कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव लाएं ताकि वो बहुत ही सक्रिय भागीदार बने इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मुहिम में?
0: तो इम्पोर्टेंट बस वो है कि वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि उस चीज को इनसिग्निफिकेंट हम लोग समझने की गलती नहीं कर सकते। या इस चीज को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि जब तक हर इंसान अपनी भागीदारी नहीं करेगा तब तक कोई भी पॉलिसी अपना जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि पॉलिसी को धरातल में सक्सेस या अनसक्सेसफुल जनता करती है। इसलिए हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। किस मायने में कर सकते हैं, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जहां भी उस इंसान को, मुझे मेरा पर्पस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी एक्स वाई जेड का अलग हो सकता है, अपनी अपनी जर्नी को मैं पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, और जहां लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ी इम्प्रूव करने की जरूरत है उस चीज को इम्प्रूव करें। जैसे मुझे मालूम है मुझे 2 किलो वजन कम करना है, तो मेरा फोकस वेट पे होगा, मेरा फोकस थोड़ा एक्सरसाइज करने पे होगा। किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका फोकस डिजिटल डिटॉक्स पे होगा। किसी को लगता है कि उसको बहुत इंपल्सिव आदत है वो शॉपिंग करने की, तो अपने हर अलग अलग इंसान का अलग अलग फोकस हो सकता है और उसका जज वो खुद ही होगा। तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये ही करने की जरूरत है, जो भी आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन करना जरूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें यही पाया कि इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज, बीइंग द चेंज वाला कंपोनेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो हम लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन होने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। तो अभी भारत जिस स्टेज में है, हमें बदलाव होने की भी बहुत इम्पोर्टेंट जरूरत है।
1: सो आशीष जी, आप जो इस राह पर चले हैं माइंडफुल कंजम्पशन को बढ़ावा देने की राह पर, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
0: तो मैम, मैंने इरमा के बाद साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था स्टैब्लिश की, जो कागज बिनने वाली बहनों के साथ काम करता है। तो इट इज ए कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकिंग सिस्टर्स। तो वो इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गए। लेकिन 2014 से 2020 की जर्नी में दो चीज बहुत सामने आई, बार बार आई, कि हमारे जो यूथ है, हमारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अर्बन यूथ प्रिविलेज्ड सेक्शन में जो है, वो बहुत ज्यादा समय कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे। वो आते हैं एज एन इंटर्न, अपना 2 वीक 4 वीक रहते हैं, चले जाते हैं। तो वो एक सवाल था कि सब कुछ है जिंदगी में, फिर भी गिव बैक क्यों नहीं कर पा रहे। और दूसरा सवाल था, 2020 की बात है ये, कि 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हम लोग अभी तक वो भारत क्यों नहीं बना पाए जिसको कल्पना हम लोग करते हैं, डिजायर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाया। तो 2021 में 15 महीने की एक यात्रा की मैंने, प्रोजेक्ट मंथन, जहां 2500 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 95 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करने में, जहां 8 अलग अलग डोमेन के लोगों से हम लोग मिले, किसान से, हाउसवाइफ से, वर्किंग प्रोफेशनल से, IAS, IPS, MLA, सोशल चेंज मेकर, सबसे ये समझने की कोशिश किए कि ये जो इम्पैक्ट है उनके दृष्टिकोण में उनके काम का क्या रहा। तो उस पूरे 15 महीने की जो जर्नी थी उसका निचोड़ यही निकला, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज वी समटाइम्स फॉरगेट टू बी द चेंज। तो माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल कंजम्पशन, सादगी भरा जीवन है उसका एक सार बन के निकला। कि ये जो चीज है वो इस दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम लोग सब लोग बी द चेंज भी हो पाएंगे और सादगी भरे जीवन से तनाव भी कम होगा। इसीलिए फिर इस पूरे मूवमेंट को हम लोगों ने लॉन्च किया और उस पर फिर ये थोड़ा सा समय लिया कि ये बातें अगर युवाओं तक पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी। तो वहां पे फिर डेटा बेस्ड

0: अप्रोच हम लोगों ने लिया कि कैसे डेटा के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल गेम्स के माध्यम से ये सारी बातों को सामने रखा जाए। तो यहां से शुरुआत की और एक नंबर अपने आप को इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर लिया कि 10 लाख लोगों तक ये बात 2030 तक पहुंचानी है। तो इसीलिए ब्रिज फॉर चेंज उस मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जहां पे ये बातें हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से, गेम्स के तरीके से युवाओं तक पहुंचा सके।
1: आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गहन बातचीत के लिए और हमें बताने के लिए कि सादा जीवन शैली सभी के लिए कितनी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हम सब उसमें अपना अपना योगदान करें ये कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: हम आकाशवाणी की वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने सुगम संगीत। सबसे पहले सुनते हैं प्रिया गुप्ता की आवाज़ में तुलसीदास की ये रचना।

आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आज की कलाकार हैं प्रिया गुप्ता। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुने प्रिया गुप्ता की आवाज़ में रैदास की ये रचना।

अभी आप सुन रहे थे प्रिया गुप्ता की आवाज में रैदास की रचना। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे करण मिश्रा और आर्गन पर थे कलीमुद्दीन। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 होने वाले हैं। आइए सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी।

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में किंग अंकल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इंदिवर के बोल थे और राजेश रोशन का संगीत था। आइए सुने कार्यक्रम का अगला गाना।

सचिन देवबर्मन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र की ये रचना आप सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें थी। काला बाजार फिल्म का ये गाना था। भींगी रात इस फिल्म का गीता ये सुने लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार रोशन।

रात्र के 8:31 और 5 सेकंड। आकाशवाणी वाराणसी से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमाधुरी। तेरे घर के सामने फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार थे आर डी बर्मन। वो कौन थी, यह है फिल्म का नाम।

जी एस कोहल के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे ये फारूक कैसर की रचना। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थीं। शिकारी फिल्म का ये गाना था। आइए अब सुने आशा भोसले की आवाज़ में वो कौन थी फिल्म का गाना। राजा मेहंदी अली खान के बोल थे और मदन मोहन का संगीत।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र की रचना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज थी। रात और दिन फिल्म का गाना था। अब कार्यक्रम का आखिरी गाना बरसात फिल्म का ये गाना।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे शैलेंद्र की रचना। शंकर जयकिशन का ये संगीत था। बरसात फिल्म का गाना था। ये फिल्म आई थी सन 1949 में।
1: हाय बरसात में।
0: आकाशवाणी वाराणसी से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:45 होने वाले हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के

0: ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों

0: देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और

0: निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुंच सकेंगे।
2: ऑफ आर ऑर्गेनिक फार्मर्स टू बी एबल टू ग्रो बियॉन्ड द शोर्स ऑफ इंडिया टू फार रीचिंग इंटरनेशनल।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
1: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया के नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेक दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर

आदाब, यह आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने तीन मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब और भारतीय कम्युनिटी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने मस्कत में अपने उमानी हम मनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की। उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समंदरी उमूर, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में तआवुन के मामलात पर तबादला ख्याल किया। पार्लियामानी उमूर के वज़राए मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। रेलवे ने सेफ्टी और ऑपरेशनल कारकर्दगी में इजाफा करने की गरज से शिमाली रेलवे के 680 रूट किलोमीटर पर कवच डिप्लॉयमेंट की मंजूरी दी है। फुटबॉल में आज रात फीफा आलमी कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा।

वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड पहुंचने पर पुरजोश और शानदार इस्तकबाल किया गया, जो न्यूजीलैंड के उनके दो रोज़ा तारीखी दौरे का आगाज है। उनका यह दौरा तकरीबन चार दहाइयों में किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का पहला दौरा है। यह उनके तीन मुल्कों के दौरे का आखिरी मरहला है। आज ऑकलैंड पहुंचने के बाद न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लेक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। उनका इस्तकबाल करने के लिए वहां बड़ी तादाद में भारतीय कम्युनिटी के अफराद मौजूद थे। माहौल जोशो खरोश से भरा हुआ था, क्योंकि लोग उनका खैर मकदम करने के लिए भारतीय तिरंगा लहरा रहे थे और किया ओरा मोदी के नारे लगा रहे थे। जनाब मोदी ने आज शाम ऑकलैंड में कम्युनिटी के खैर मकदम के दौरान भारत की मालामाल सकाफती विरसे की शानदार तकरीब देखी। सोशल मीडिया पोस्ट की एक सीरीज में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पंजाब और तमिलनाडु की सकाफत, कर्नाटक और हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी और वंदे मातरम की मशहूर कुन पेशकश की परफॉर्मेंस काबिल-ए-दीद थी। जनाब मोदी ने नस्लों और बर्र-ए-आज़मों में भारत की सकाफती विरासत को जिंदा रखने और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आवाम से आवाम के राब्तों को मुस्तहकम करने के लिए भारत निजात कम्युनिटी की सताइश की। अपने दौरे के दौरान तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, टेक्नोलॉजी और आवाम से आवाम के राब्तों में तआवुन को मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल कर सकते हैं, जो दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शराकतदारी की अक्कासी करता है। न्यूजीलैंड में भारत की हाई कमिश्नर मुआन पुई साईवी ने उम्मीद जाहिर की है कि यह दौरा बाहमी ताल्लुकात में नई रफ्तार फराहम करेगा। उन्होंने ये कहते हुए इस साल अप्रैल में दस्तखत किए गए भारत न्यूजीलैंड आजाद तिजारती माहदे को भी उजागर किया कि यह तिजारत और कॉमर्स, समंदरी सिक्योरिटी, आवाम से आवाम के दरमियान ताल्लुकात, सकाफती, सियाहती और इंसदादी दहशतगर्दी के मामलों में तआवुन ने मजीद तौसी फराहम करेगा। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का एक तारीखी और इंतहाई अहम दौरा मुकम्मल किया, जो भारत ऑस्ट्रेलिया जामे और मुकम्मल शराकतदारी के लिए मुस्तकबिल महफूज ब्लूप्रिंट फराहम करता है। आला इख्तियारी मीटिंगों से लेकर नुमाया संग मील तक इस दौरे ने दो बड़ी जमहूरियतों के दरमियान सिफारती, इक्तिसादी और तहफुजाती ताल्लुकात में इजाफा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और आवाम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीस का अपने दौरे के दौरान पुरजोश मेजबानी के लिए शुक्रिया अदा किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत मुल्क की साहिली सिक्योरिटी को मजबूत और नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए पुरअज़्म है। जनाब शाह ने आज बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सरबनंद सोनोवाल के हमराह ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के क़याम में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। जनाब शाह ने कहा कि बंदरगाहों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ लाइसेंस याफ्ता प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को दी जानी चाहिए और उन प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया जाना चाहिए जिन्होंने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से ट्रेनिंग हासिल की हो। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज मस्कत में उम्मान के अपने हम मनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब जयशंकर ने कहा कि बातचीत तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समंदरी उमूर, टेक्नोलॉजी, दिफा और साइबर नीज मस्नूई जहानत के शोबों पर मरकूज रही। दोनों लीडरों ने खलीज में जारी हालात और खित्ते में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की काविशों पर जामे तबादला ख्याल किया। उम्मान के वजीर खारजा ने कहा कि भारत और उम्मान के दरमियान तवील मुद्दती समंदरी ताल्लुकात ने सदियों से उनके आवाम को एक दूसरे से जोड़कर रखा है और ये दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी के लिए एक मुस्तहकम बुनियाद फराहम करने के लिए जारी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब बद्र अल बुसैदी ने कहा कि दोनों लीडरों ने आबनाए हुरमुस में आजादी के साथ आमदोरफ्त को बरकरार रखने की गरज से बड़े पैमाने पर सिफारतकारी पर भी तबादला ख्याल किया। इससे कबल वजीर खारजा ने उम्मान में भारतीय निषाद कम्युनिटी के अराकीन के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उम्मान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में उनका जोश व खरोश काबिल तारीफ है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन कल बिहार के शहर गया का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान नायब सदर वहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और देही तरक्की के बिहार इंस्टीट्यूट में कानून साज असेंबली के अराकीन के लिए
तरबियती प्रोग्राम के

0: मंत्री शामिल हैं। भारत के जर मुबादला के जखायर में 30 जुलाई को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान 7.2 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा होकर ये 674 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा मालियत के हो गए। भारत के रिजर्व बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक इन जखायर के सबसे बड़े उनसुर गैर मुल्की करेंसी के असासों में हफ्ते के दौरान 4.5 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा होकर ये 545 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा मालियत के हो गए हैं। सोने के जखायर में तकरीबन 2.7 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा हुआ जो 105 अरब अमरीकी डॉलर मालियत के हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज बहुत सी उजरदारियों की समाअत करेगी जिनमें अयोध्या के राम मंदिर में अतियात की मुबैना हेराफेरी के मामले में एक शफाफ और मुकर्रा वक्ती तहकीकात कराने की दरख्वास्त की गई है। 7 जुलाई को अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में अतियात की मुबैना चोरी से मुतालिक गिरफ्तार शुदा 8 मुलजमान में से 3 को एक रोजा पुलिस रिमांड में दे दिया था। एक मकामी अदालत ने पिछले महीने की 29 तारीख को तमाम 8 मुलजमान को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया था। पिछले महीने की 13 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में मौसूल होने वाले अतियात में हेराफेरी के इल्जाम के बाद मंदिर के ट्रस्ट की जानिब से एक दरख्वास्त पर एक SIT की तश्कील की थी। आज बीजेपी ने बिहार में बांकीपुर असेंबली हल्के के जिमनी इंतखाब के लिए नीरज कुमार सिन्हा के नाम का अपने उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया। पार्टी ने मध्य प्रदेश में दातिया असेंबली हल्के के जिमनी इंतखाबात के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर असेंबली सीट के लिए इस महीने की 30 तारीख को पोलिंग होगी। भारतीय सहेली गार्ड ने आज नई दिल्ली में वाकई कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर में एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें भारत के मुमताज शिपयार्ड्स और डिजाइन हाउसेज ने शिरकत की ताकि मुस्तकबिल के सहेली गार्ड प्लेटफॉर्म्स पर गौर खौस किया जा सके। फुटबॉल में आज रात इंग्लैंड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में फीफा आलमी कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। फ्रांस बोस्टन में पहले क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-0 से हराकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। विंबलडन में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने बर्तानिया के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी आर्थर फेरी को सीधे सेटों में जबरदस्त शिकस्त दी है। दूसरे सीट के ज्वेरेव ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए फेरी को 7-6, 6-2 और 6-4 से हराया। इस कामयाबी के साथ ज्वेरेव विंबलडन के फाइनल में पहुंच गए हैं जबकि आर्थर फेरी की शानदार मुहिम खत्म हो गई जो बरतानवी खिलाड़ी की यादगार तरीन कारकर्दगियों में से एक है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब और भारतीय कम्युनिटी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मस्कत में अपने उम्मानी हम मनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैरी से मुलाकात की। उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समंदरी उमूर, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में तआवुन के मामलात पर तबादला ख्याल किया। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुमलिकत अर्जुन राम इकबाल और एल मुरुगन ने आने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव बर्तानिया के खिलाड़ी आर्थर फेरी को शिकस्त देकर मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: जी आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने गैर फिल्मी गीत एवं गजलों पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन। सबसे पहले सुनते हैं तलत अजीज की आवाज में ये गजल।

तलत अजीज की आवाज में ये गजल आप सुन रहे थे। आइए अब सुने उस्ताद अहमद हुसैन व उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाजों में ये गजल।

गैर फिल्मी गीत एवं गजलों पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। तलत अजीज की आवाज में यह गजल आप सुन रहे थे। अंजुमन कार्यक्रम के आखिर में आइए सुने राजेंद्र मेहता व नीना मेहता की आवाजों में यह गजल।

राजेंद्र मेहता व नीना मेहता की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ये गज़ल। अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी एवं गीत एवं गज़लों पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH, DRM और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुने कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: इस कार्यक्रम में सबसे पहले आप सुनेंगे नीरू सिंह की वार्ता भविष्य के ईंधन। उसके बाद राघवेंद्र प्रताप सिंह से चंदन सिंह की भेंट वार्ता सुनिएगा। भेंट वार्ता का विषय होगा सौंदर्य प्रसाधनों के पीछे का विज्ञान। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं नीरू सिंह की वार्ता भविष्य के ईंधन।
1: श्रोताओं, आज जब हम सुबह सोकर उठते हैं और अपने घर से बाहर निकलते हैं तो सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, आसमान में उड़ते विमान और कारखानों से निकलता धुआं, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया कितनी तेजी से भाग रही है। लेकिन इस भागती हुई दुनिया की नस नस में जो रस दौड़ रहा है, जो ऊर्जा दौड़ रही है, वह मुख्य रूप से आता है पेट्रोल, डीजल और कोयले जैसी चीजों से, जिन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के सीने में छिपा यह खजाना हमेशा तो नहीं रहेगा? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जिस रफ्तार से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अगले कुछ दशकों में ये पारंपरिक स्रोत खत्म होने लगेंगे। साथ ही इनसे होने वाले प्रदूषण के कारण हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो फिर सवाल उठता है, कल क्या होगा? क्या हमारी तरक्की का पहिया थम जाएगा? जवाब है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंसानी दिमाग ने इसका तोड़ ढूंढ लिया है। भविष्य के ईंधन। आज हम जानेंगे कि आने वाले कल में हमारी गाड़ियां, हमारे जहाज और हमारे उद्योग किस ऊर्जा से चलेंगे, वे ईंधन कैसे तैयार होते हैं और कैसे काम करते हैं। श्रोताओं, जब हम भविष्य के ईंधन की बात करते हैं तो हमारे सामने मुख्य रूप से तीन बड़े नाम आते हैं। पहला हाइड्रोजन ईंधन, दूसरा बायोफ्यूल्स यानी जैव ईंधन और तीसरा सिंथेटिक यानी ई फ्यूल्स। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस तत्व की जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है, ग्रीन हाइड्रोजन। श्रोताओं, हाइड्रोजन अपने आप में कोई स्वतंत्र ईंधन के रूप में खदानों में नहीं मिलता, इसे दूसरी चीजों से अलग करना पड़ता है। जब हम पानी में से बिजली गुजारकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं तो इस प्रक्रिया को जल अपघटन कहा जाता है। यह काम कैसे करता है? हाइड्रोजन से ऊर्जा दो तरह से ली जाती है। पहला, इसे सीधे इंजनों में जलाकर, दूसरा सबसे आधुनिक तरीका है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल एक तरह का उपकरण है जिसे हाइड्रोजन और हवा की ऑक्सीजन के बीच एक रासायनिक प्रक्रिया कराई जाती है। इस प्रक्रिया से सीधे बिजली पैदा होती है जिससे गाड़ी की मोटर चलती है, और हम जानते हैं कि इसके धुएं के रूप में साइलेंसर से क्या निकलता है, सिर्फ और सिर्फ साफ पानी की भाप, कोई प्रदूषण नहीं। अब बात करते हैं उस ईंधन की जो हमारे खेतों से आता है, बायोफ्यूल यानी जैविक स्रोतों से मिलने वाला ईंधन। इसमें सबसे प्रमुख है एथेनॉल। यह कैसे तैयार होता है? एथेनॉल मूल रूप से एक प्रकार का अल्कोहल है। इसे गन्ने के रस, मक्के, सड़े हुए अनाज या कृषि अवशेषों को सड़ाकर यानी किण्वन की प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। इसके बाद इसे रिफाइन करके शुद्ध किया जाता है। इसी तरह बायोडीजल को रतन जोत जैसे तिलहन पौधों के बीजों से निकाला जाता है। यह काम कैसे करता है? वर्तमान में एथेनॉल को सीधे हमारे मौजूदा पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, जिसे हम एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। भारत में अब 20% तक एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल किया है। जब यह इंजन के अंदर जाता है तो यह पेट्रोल की तरह ही प्लग की चिंगारी से जलता है, लेकिन पारंपरिक पेट्रोल के मुकाबले इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें बहुत कम निकलती हैं। सिंथेटिक ईंधन या ई फ्यूल्स। श्रोताओं, एक जादुई तकनीकी पर काम चल रहा है जिसे हम इलेक्ट्रो फ्यूल्स या ई फ्यूल्स कहते हैं। मान लीजिए कि हम हवा में मौजूद प्रदूषण यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फैक्ट्रियों की चिमनियों या सीधे वायुमंडल से सोख लें। यह तैयार कैसे होता है? सबसे पहले हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है, फिर पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाती है। इसके बाद औद्योगिक प्लांट में एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया के जरिए इस हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में जोड़ा जाता है। इससे एक ऐसा तरल हाइड्रोकार्बन तैयार होता है जो हूबहू आज के पेट्रोल, डीजल या जेट ईंधन

0: जैसा होता है या काम कैसे करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसके लिए हमें गाड़ियों के इंजन बदलने की जरूरत नहीं है, यह आज के ही इंजनों में सीधे डाला जा सकता है। जब यह जलता है तो उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जितनी इसे बनने के लिए हवा से सोखी गई थी, यानी पर्यावरण के नजरिए से यह कार्बन न्यूट्रल होता है। विशेषकर हवाई जहाजों और बड़े समुद्री जहाजों के लिए यह भविष्य का सबसे व्यवहारिक ईंधन माना जा रहा है। श्रोताओं, जब हम भविष्य के परिवहन की बात करते हैं तो जो क्रांति आज हमारे सामने सड़कों पर दिख रही है वह है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी बिजली से चलने वाली गाड़ियां। ईवी में कोई पारंपरिक इंजन नहीं होता, कोई साइलेंसर नहीं होता, इसमें होती है एक ताकतवर मोटर और उसे ऊर्जा देने वाली एक बड़ी सी बैटरी। आइए आज बहुत सी सरल शब्दों में समझते हैं कि इन गाड़ियों में लगी बैटरियां आखिरकार काम कैसे करती हैं। आजकल की लगभग सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, यह वही तकनीकी है जो आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप में होती है, बस कार या स्कूटर में। इसका आकार बहुत बड़ा होता है। इसके मुख्य रूप से तीन हिस्से होते हैं, एनोड या बैटरी का निगेटिव सिरा होता है जो आमतौर पर ग्रेफाइट से बना होता है, कैथोड या बैटरी का पॉजिटिव सिरा होता है जिसमें लिथियम और अन्य धातुओं का मिश्रण होता है, इलेक्ट्रोलाइट या इन दोनों सिरों के बीच भरा हुआ एक तरल या जेल जैसा रासायनिक माध्यम होता है जिसमें से होकर लिथियम के कण यात्रा करते हैं। यह काम कैसे करती है, इसे आप एक बहुत ही सुंदर खेल की तरह समझ सकते हैं। यहाँ लिथियम के छोटे छोटे आयन दोनों सिरों के बीच दौड़ लगाते हैं। जब आप ईवी गाड़ी चलाते हैं तो एनोड पर जमा लिथियम आयन इलेक्ट्रोलाइट के रास्ते से होते हुए कैथोड की तरफ भागने लगते हैं। जब ये आयन अंदरूनी रास्ते से जाते हैं तो उसी समय बैटरी के बाहरी सर्किट से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के इसी बहाव को हम बिजली या विद्युत धारा कहते हैं। यही बिजली गाड़ी की मोटर तक पहुंचती है, मोटर घूमती है और गाड़ी आगे बढ़ती है। जब आप गाड़ी चार्ज करते हैं तो यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी दिशा में काम करने लगती है। चार्जर से आने वाली बिजली कैथोड पर बैठे लिथियम आयनों को धक्का देती हैं और वे वापस इलेक्ट्रोलाइट के रास्ते तैरते हुए एनोड पर जाकर जमा हो जाते हैं। जब बैटरी फिर से अपनी ऊर्जा को समेटकर तैयार हो चुकी है, इसके पीछे एक बीएमएस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम नाम का एक छोटा कंप्यूटर भी काम करता है जो इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। श्रोताओं, आज हमने जाना कि कैसे पानी से निकलने वाले हाइड्रोजन, खेतों से पैदा होने वाला एथेनॉल, हवा से सोखी गई कार्बन डाइऑक्साइड और लिथियम के छोटे छोटे आयनों की हलचल, ये सब मिलाकर हमारे कल की दुनिया को रफ्तार देने की तैयारी कर रहे हैं। भारत सरकार भी इस दिशा में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन योजना जैसी नीतियों के माध्यम से बहुत तेजी से काम कर रही है। बदलाव की यह बयार सिर्फ तकनीकी तक सीमित नहीं है, यह हमारी इस धरती माँ को बचाने का एक संकल्प भी है। जब हम इन प्रदूषण मुक्त ईंधनों को अपनाएंगे तो हमारे शहरों की हवा साफ होगी, नीले आसमान में शुद्धता होगी और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर पर्यावरण मिल सकता है। भविष्य का यह ईंधन सिर्फ हमारी गाड़ियों की टंकी नहीं भरेगा, बल्कि यह हमारे आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर कल की नींव भी रखेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे नीरू सिंह की वार्ता भविष्य के ईंधन। आइए अब सुने डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह से चंदन सिंह की भेंट वार्ता, सौंदर्य प्रसाधनों के पीछे का विज्ञान।

श्रोताओं, सुबह उठकर चेहरे पर लगाए जाने वाले मॉइस्चराइजर हो या सनस्क्रीन हो या फिर किसी खास मौके पर इस्तेमाल होने वाले सौंदर्य प्रसाधन यानी कि कॉस्मेटिक्स, जो आज हमारे दिनचर्या का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुके हैं। हम अक्सर किसी उत्पाद की खुशबू, उसकी ब्रांडिंग या उसके विज्ञापनों को देखकर उसे खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सुंदर सी कांच की शीशियों और आकर्षक ट्यूब्स में जो सौंदर्य प्रसाधन रहते हैं, उनके

0: के पीछे का क्या विज्ञान है, इसी विज्ञान को विस्तार से समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह। आप हमारे शहर के, हमारे जनपद के प्रतिष्ठित उदय प्रताप इंटर कॉलेज में रसायन शास्त्र में प्रवक्ता के तौर पर कार्यरत हैं। सर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएं कि जैसा कि मैंने बताया कि सौंदर्य प्रसाधन जो

0: की सौंदर्य प्रसाधन जो आज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, वो क्या होते हैं और इनके निर्माण में रसायन विज्ञान की क्या भूमिका होती है?
1: सबसे पहले अगर मैं बात करूं रसायन विज्ञान की, तो बहुत पहले एक चीज और, थोड़ा सा इस टॉपिक पे आने से पहले मैं कुछ आपको इसकी भूमिका की तरफ ले चलता हूं।
0: जी,
1: पहले आपने पिक्चर देखा होगा कि रोटी कपड़ा और मकान आता था, कि मतलब रोटी कपड़ा और मकान हमको चाहिए। फिर आया कि नहीं, उससे काम नहीं चलेगा, पानी ज्यादा जरूरी है।
0: जी,
1: फिर इसके बाद आया कि नहीं, पानी भी नहीं
0: जी,
1: अब हमको जो है उससे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा, पानी बगैर मैं कुछ दिन जिंदा रह सकता हूं लेकिन ऑक्सीजन बगैर नहीं रह सकता। लेकिन बाद में लगा कि नहीं, रसायन एक केमिस्ट्री ऐसी चीज है, अगर एक ग्लाइकोलिसिस की क्रिया हमारी बॉडी के अंदर न हो तो शायद हम एक माइक्रोसेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। ये स्थितियां हैं
0: जी।
1: लेकिन आज के इस युग में जहां पर हमारे युवा अपने शरीर की तरफ, त्वचा की तरफ काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं
0: जी,
1: खाने पीने को लेकर के हो, चाहे हमारा शरीर कितना ग्लो दिखाई दे रहा हो, कितना उसमें ग्लोसी दिख रहा हो, उसके लिए जितने प्रयास करते हैं उसके लिए तमाम कॉस्मेटिक्स जाकर के ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉस्मेटिक के बारे में बात करूंगा आपसे कि ये सौंदर्य प्रसाधन वे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को, हमारी त्वचा को, हमारे बाल को, हमारे पूरे शरीर को साफ सफाई और सुंदर बनाने में अपना कर्तव्य निभाते हैं। इसी को लेकर के इसके निर्माण में जो रसायन विज्ञान का काम है वह मुख्य रूप से इस तरह से आता है कि हम इसमें कौन कौन सी चीजों का निर्धारण करें। जैसे हम सबसे पहले यह देखना चाहते हैं कि जो रसायन हम इसमें ले रहे हैं उस त्वचा के लिए, उस शरीर के लिए वह उपयुक्त है अथवा नहीं। जैसे अगर उपयुक्त रसायन नहीं होगा तो निश्चित रूप से शरीर में एलर्जी या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसी के क्रम में दूसरी चीज हम उसमें देखते हैं कि इसमें सुगंध प्रदान करने वाली कौन कौन सी चीजें हम ले रहे हैं। तो सुगंध प्रदान करने में जिस रसायन का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है उसमें एक आता है रसायन है लिनालूल। यह फूल जैसे सुगंध को देता है
0: जी।
1: इसी तरह से है लिमोनीन, यह भी एक अच्छे फ्लेवर के लिए लिया जाता है जिसमें नींबू और संतरे जैसे सुगंध दिखाई देते हैं
0: जी।
1: जेरानियोल है, एक गुलाब जैसी सुगंध को देता है। बेंजिल अल्कोहल है, यह सुगंध के साथ साथ सबसे बड़ा काम इसका यह है कि एक प्रिजर्वेटिव के रूप में, मतलब कि उसको सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है
0: जी।
1: इसके अलावा भी जैसे हमारी महिलाएं हैं वो लिपस्टिक वगैरह का प्रयोग करती हैं
0: जी,
1: तो उस लिपस्टिक को जो प्रयोग करती हैं वो, तो उसमें जो है कई तरह के फ्लेवर जैसे वेनिलिन है जिसमें वेनिला का सुगंध आता है
0: जी,
1: मेथाल और

0: किसी रासायनिक तत्व का योगदान है जो कि हमारे त्वचा को, हमारे बालों को सुंदरता देता है, हमारे बालों को ग्लो करवाता है, हमारे जो त्वचा है उसको ग्लो करता है। यहाँ पे मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो जितने भी कॉस्मेटिक उत्पाद हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन जितने भी हैं, उनके निर्माण में, क्योंकि ज्यादातर सौंदर्य प्रसाधन जो है वो हमारे चेहरे पे लगाए जाते हैं, त्वचा पे लगाए जाते हैं या फिर बालों को सुंदर बनाने के लिए उसे प्रयोग किया जाता है, हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में बालों और त्वचा की संरचना कितनी महत्वपूर्ण है।
1: ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए जो प्रमुख कारण हैं, नंबर एक, जैसे आप कह सकते हैं उपयुक्त उत्पाद का निर्माण
0: जी,
1: जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वह उपयुक्त है कि नहीं है, जैसे हमारी त्वचा और बालों की संरचना कैसी है उसके लिए किस तरह के हमको क्रीम लोशन ये चाहिए वह जरूरी है। दूसरा चीज है सुरक्षा सुनिश्चित करना, जो त्वचा और बालों को नुकसान न पहुंचाए हमको कैसे सुरक्षित रखता हो और उसकी प्रभावशीलता कितनी है, जो हम कॉस्मेटिक जो सौंदर्य प्रसाधन की चीज हम लगा रहे हैं उसकी प्रभावशीलता कितनी ज्यादा है, हमारे लिए कितना बढ़िया है, यह महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के त्वचा और बालों के लिए अलग अलग उत्पाद हैं, जैसे तेलीय शुष्क संवेदनशील त्वचा तथा रूखे घुंघराले या क्षतिग्रस्त बालों के लिए अलग अलग फार्मूले विकसित हैं। किसी के बाल बहुत चिकने हैं तो उसके लिए दूसरे रसायन हैं, किसी के बाल रफ हैं या घुंघराले हैं तो उसके लिए दूसरे तरह के रसायनों का उपयोग किया गया है प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसी तरह से गुणवत्ता की स्थिरता यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारे त्वचा का जो पीएच है वो लगभग 4.5 से 5.5 के बीच में होता है
0: जी।
1: तो हमारा जो प्रोडक्ट बना हुआ है वह इस स्तर का है कि नहीं, कि उसमें हम वह हमारी त्वचा के लिए फिट बैठ रहा है उस पीएच वैल्यू पे कि नहीं, इसलिए हमको उसके पीएच, नमी और बालों की संरचना को ध्यान में रखकर लंबे समय तक सुरक्षित व प्रभावी उत्पाद बनाए, ऐसा जरूरी है।
0: अच्छा, ये जो मॉइस्चराइजर होते हैं
1: जी
0: और जैसे जो क्रीम होते हैं, जो लोशन होते हैं, ये सब त्वचा को मुलायम करते हैं
1: जी।
0: हमने देखा है कि हम इसको लगाते हैं तो अचानक से बहुत अच्छी फीलिंग आती है, हमारे बहुत अच्छा महसूस होता है हमारे त्वचा को। चाहूंगा हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि ये जितने तरह के ये प्रोडक्ट जो मैंने बताया, मॉइस्चराइजर हो गए, क्रीम हो गए, जो लोशन हो गए, ये त्वचा को जो मुलायम बना करके रखते हैं, इसके पीछे जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वो क्या है, हमारे श्रोताओं को इसके बारे में।
1: हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और जो इसके वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उसमें सबसे पहले ह्यूमेक्टेंट आता है, इमोलिएंट आता है और एक आता है ओक्लूसिव
0: जी,
1: जिसमें ह्यूमेक्टेंट जो है इसमें आपका जैसे ग्लिसरीन है, ह्यूलोनिक एसिड है, जो हवा या त्वचा की गहराई से नमी को खींचकर हमारी त्वचा में बनाए रखता है, जैसे हमारी त्वचा में रूखापन न रहे, इसके लिए जो हमारा ये ग्लिसरीन है या हाइलोनिक एसिड है यह हवा में से नमी को खींचता है या खींचकर हमारे शरीर में बनाए रखता है, जिससे हमारी त्वचा जो है वो मुलायम दिखती रहती है
0: जी।
1: इसी तरह से एक इसमें रसायनज्ञ है इमोलिएंट, जैसे वनस्पति तेल या सिया बटर है, जो त्वचा की सतह को चिकना और मुलायम बनाए रखता है
0: जी।
1: इसी तरह से आपका जैसे मैंने कहा ओक्लूसिव है, इसमें पेट्रोलियम जेली, वैक्स ये सब आते हैं जो त्वचा पर सुरक्षात्मक परत बनाकर पानी के वाष्पीकरण को रोकते हैं ताकि हमारी त्वचा में नमी बनी रहे। ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं
0: जी। जैसे त्वचा की हम जब बात करते हैं और आम महिलाओं जब अपनी त्वचा के बारे में जब बात करती हैं तो अक्सर सुनने में ये आता है कि वो एक सनस्क्रीन लगाती हैं कि गर्मी आ रही है या ठंड आ रहा है, धूप में निकलने के पहले वो सनस्क्रीन लगाती हैं, और जब हम सनस्क्रीन के बॉटल को देखते हैं तो उसमें एक जो शब्द मुझे दिखाई देता है वो SPF होता है, तो मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि जो सनस्क्रीन है वो हमारी त्वचा को कैसे सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उससे कैसे बचाती है, और ये SPF जो है इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: ये बहुत ही अच्छा आपका सवाल है
0: जी।
1: सनस्क्रीन त्वचा पर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है
0: जी।
1: हमारे जो सूर्य की रोशनी है उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं जिन्हें हम यूवी किरणें भी कहते हैं
0: जी।
1: ये किरणें जब आती हैं और हमारे त्वचा को पेनिट्रेट करती हैं जिससे हमारी त्वचा में लालपन, चकत्ते पड़ना, झुलस जाना, ये सारे दिक्कतें आती हैं, सनबर्न हो जाना, आपने गर्मियों में देखा होगा कि लोग चलते चलते शाम को घर पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि उनकी बांह में, उनके चेहरे पर या पेट पर या कहीं भी लाल लाल चकत्ते पड़ गए हैं और ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई गर्म चीज उस पर डाल दी गई हो और उस पर फफोली

0: जैसे बन जाते हैं।
1: जी
0: तो मैं बताना चाहता हूं कि यह जो सनस्क्रीन है वो हमारी त्वचा पर अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं ये दो प्रकार की हैं, यूवीए और यूवीबी, दोनों से हमको सुरक्षा प्रदान करती हैं। कारण क्या है कि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड पाया जाता है
1: जी।
0: ये क्या करता है, किरणों को या तो अवशोषित कर लेता है
1: जी,
0: या तो उनको परावर्तित कर देता है
1: जी,
0: या तो फिर उनको स्कैटर्ड कर देता है, बिखेर देता है
1: जी।
0: जब यह तीनों चीजें करेगा तो यूवी किरणें हमारी त्वचा पर नहीं आ पाएंगी, जिसके कारण हम सनबर्न से या उसके झुलसने से, इन सारी चीजों से आसानी से बच सकते हैं
1: जी।
0: इसका एक दूसरा पार्ट आपने पूछा वो और महत्वपूर्ण है, जिसे हम एसपीएफ, इसको अगर फुल फॉर्म इसका कहें तो ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर
1: जी।
0: यह एक आपका प्रोटेक्टर जो ये बताता है कि सनस्क्रीन यूवी किरणों से त्वचा को कितनी सुरक्षा प्रदान करता है। इसका जो महत्व है एसपीएफ का, यह सनबर्न से तो बचाता ही है। एक चीज इसमें है कि अधिक एसपीएफ, जनरली लोग हम लोग जब सामान खरीदने जाते हैं कॉस्मेटिक का तो हमको ये देखना चाहिए कि अधिक एसपीएफ सामान्यतः अधिक समय तक सुरक्षा देता है यदि सही मात्रा में लगाया जाए। सामान्यतः दैनिक उपयोग में हम लोग एसपीएफ 30 या अधिक वाला ब्रांड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन अक्सर उपयुक्त माना जाता है, यही लगाते भी।
1: अच्छा, जब हम सौंदर्य प्रसाधनों की हम बात करते हैं तो अगर हम उसके लेबल को पढ़ते हैं तो कई बार जो है उसमें देखा जाता है कि इसमें विटामिन सी है, इसमें रेटिनॉल ऐसे तत्व मिले हुए रहते हैं या फिर और भी अन्य उसमें रसायन जो है उसमें मिले रहते हैं। तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि जैसे विटामिन सी हो गया, हाइलोरोनिक एसिड हो गया, रेटिनॉल, ये सब जो तत्व हैं ये क्यों उन सौंदर्य प्रसाधन में डाले जाते हैं, इसके पीछे जो वैज्ञानिक आधार है वो क्या है?
0: सबसे पहले हम विटामिन सी की बात करते हैं
1: जी।
0: यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है
1: जी।
0: विटामिन सी जिसे हम, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है
1: जी,
0: यह जो है त्वचा में फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को बचाता है
1: जी।
0: अब आप कह सकते हैं कि फ्री रेडिकल क्या है, जैसे हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स और अभी सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स। अब इस पर हम ज्यादा इसलिए डिटेल नहीं बता रहे हैं कि हमारे श्रोताओं को वो चीजें कम समझ में आएंगी। मैं एक केवल बताता हूं कि फ्री रेडिकल्स जो हैं, जो ये वातावरण में हैं, इनसे जो हमारे शरीर को नुकसान होता है, नुकसान में ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं फ्री रेडिकल्स, और ये जो विटामिन सी है ये क्या करता है, इनको इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब इलेक्ट्रॉन दे देता है तो अस्थायी हो जाते हैं, अस्थायी होकर के एक जगह तक पड़े रहते हैं और हमारी शरीर की त्वचा के अंदर जाकर के किसी तरह की हानि नहीं पहुंचा पाते। यह विटामिन सी का बहुत बड़ा जो है गुण है। इसके अलावा त्वचा में कोलेजन बनने में मदद करते हैं। कोलेजन का मतलब यह हुआ कि एक उनको दूसरे अणु से मिलाते हैं, जिससे क्या होता है वो बंध जाते हैं, जिससे बंध जाने के कारण नमी जो है वो शरीर से बाहर नहीं जाने, त्वचा से बाहर नहीं जाने पाती। इस तरह हमारा चेहरा जो है वो अधिक कसी और लचीला दिखाई देता है, और काले धब्बों में पिगमेंटेशन को कम करने के लिए और रंगत को निखारने के लिए भी हम विटामिन सी का प्रयोग करते हैं। लेकिन दूसरी चीज जो आपने इसी में जोड़ा कि हाइलुरोनिक अम्ल क्या है और इसका क्या उपयोग है
1: जी,
0: तो यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो त्वचा में पहले से ही मौजूद रहता है। यह अपने वजन से कई गुना ज्यादा पानी शोषित कर सकता है, इसीलिए त्वचा को गहराई से यह नमी प्रदान करता है
1: जी।
0: इसी में रेटिनॉल का आपने किया है कि रेटिनॉल या विटामिन ए का एक रासायनिक नाम है। यह त्वचा की नई कोशिकाओं के निर्माण में गति बढ़ाता है, साथ ही मुहासों को कम करने, पोर्स जो रोम छिद्र होते हैं उनको साफ करने में सहायक होता है
1: जी। अच्छा, यहां तक तो चर्चा त्वचा को लेकर के हुई, अब हम आते हैं बालों पर। जब हम बालों की बात करते हैं तो बालों की साफ सफाई को लेकर के बात करते हैं, बालों को हम कैसे बेहतर बना के रख सकते हैं उसकी जब हम बात करते हैं तो हम सीधा सीधी बात करते हैं कि शैम्पू और हम बात करते हैं कंडीशनर की। तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि जो शैम्पू हैं और जो कंडीशनर हैं वो बालों की सफाई और सुरक्षा में किस प्रकार वो मदद करते हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
0: शैम्पू और कंडीशनर दोनों ही बालों की स्वच्छता व देखभाल में अलग अलग भूमिका निभाते हैं
1: जी।
0: शैम्पू का कार्य मुख्य रूप से बालों से गंदगी, तेल व उत्पादों के अवशोषों को हटाना है ताकि बाल साफ हो जाएं। इसमें जो प्रमुख रसायन पाया जाता है उसका नाम है सोडियम।

0: लॉरिल सल्फेट, लेकिन कंडीशनर जो होता है
1: जी
0: इसमें सिलिकॉन, इसमें जैसे डायोमेथिकॉन कैटायनिक कंडीशनिंग एजेंट पाए जाते हैं
1: जी।
0: कंडीशनर का काम बालों को नमी बनाए रखना, उन्हें मुलायम बनाना व उलझन को कम करना, ये शामिल है। कंडीशनर बालों की सतह को चिकना, मुलायम और चमकदार कर उन्हें अधिक स्वस्थ दिखाते हैं, इनकी अपेक्षा में शैम्पू उतना अच्छा कार्य नहीं करता।
1: अच्छा, जब हम कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं तो हम लोग को अक्सर ये सुनने को मिलता है कि एक कोई सौंदर्य प्रसाधन है उसके प्रयोग से किसी को एलर्जी हो गई, या फिर ये कहा जाता है कि पहले स्किन में कहीं और लगा करके देख लें और देख लें कि वो आपको उससे एलर्जी तो नहीं है। तो ये जो एलर्जी होती है, जो त्वचा संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, इसका क्या कारण है, इसके बारे में हमारा श्रोता को?
0: इसके कई कारण हैं सर
1: जी।
0: एलर्जी उत्पन्न करने वाले जो रसायन हैं उसमें आपके कुछ त्वचा सुगंध परिरक्षक जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, डाइज हैं या अन्य रसायन के प्रति संवेदनशील हैं, जिसमें खुजली, जलन, चकत्ते हो सकते हैं। चकत्ते का मतलब लालिमा से है, हो सकते हैं। दूसरा, आपका संवेदनशील त्वचा अगर किसी की है तो जिन लोगों के साथ इस तरह की त्वचा है स्वाभाविक रूप से संवेदनशील होती है, उन्हें सामान्य कॉस्मेटिक भी प्रतिक्रिया कर देता है। तीसरी चीज, अधिक या गलत तरीके से उपयोग, अगर हम ज्यादा लगा ले रहे हैं या उनका लगाने का जो तरीका है वो हमको नहीं मालूम है, तो इससे प्राकृतिक सुरक्षा परत प्रभावित हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये जरूर देख लें कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। होता क्या है, दुकानदार रखे रहते हैं सामान बेचने के लिए, हम पहुंचे और हमने कहा, उन्होंने सामान दे दिया, हमने उनको एमआरपी देख ली, उस हिसाब से उनको पैसा दिया और चले आए। एमआरपी बाद में देखें, एक्सपायरी डेट पहले देखें, अगर एक्सपायरी डेट की है तो निश्चित आपकी त्वचा को प्रभावित करेंगे
1: जी। निसंदेही, जितना भी आपने बताया, जो सौंदर्य प्रसाधन है वो हम अपने बालों में लगाते हैं, हम अपनी त्वचा में लगाते हैं, और इनका हमारे ऊपर प्रभाव जो है वो अच्छा ही होना चाहिए, इसका कोई बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ना चाहिए। तो बाजार में जो उपलब्ध जो उत्पाद है हमारे अभी, उनकी गुणवत्ता और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से परीक्षण जो है वो किए जाते हैं इन सौंदर्य प्रसाधनों के, आप इसके बारे में बताएं?
0: ये बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि परीक्षण के बाद ही सौंदर्य प्रसाधन की चीजों को अगर हम लगाएं
1: जी
0: तो हमारे शरीर के लिए शायद सबसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी अच्छा होगा, और अच्छा तो होता ही है
1: जी।
0: सबसे पहले इसमें भौतिक परीक्षण, जिसको हम फिजिकल टेस्ट कहते हैं, इसमें हम उनकी रंग, गंध, बनावट और पीएच की जांच, कि शरीर की त्वचा का जो पीएच है वो लगभग 4.5 से 5.5 के बीच में होता है, इसलिए हमारी जो कॉस्मेटिक है उसका भी पीएच लगभग ये होना चाहिए, ताकि वो हमारी त्वचा के लिए सूट करता हो। तो हम पीएच की जांच करें, और यह पीएच की जांच दो तरीके से होती है, एक लिटमस पेपर के द्वारा और एक डिजिटल पीएच मीटर के द्वारा
1: जी।
0: दूसरा है रासायनिक परीक्षण, उत्पाद में मौजूद रसायनों की मात्रा, शुद्धता व हानिकारक पदार्थ, जैसे भारी धातुएं, भारी धातुएं का मतलब ये हम कह सकते हैं जैसे इसमें सीसा पाया जाता है, मरकरी पाई जाती है, और आर्सेनिक जैसे हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं कॉस्मेटिक के सामानों में, तो इनकी मात्रा बहुत सीमित है और सुरक्षित होनी चाहिए त्वचा के लिए
1: जी।
0: तीसरी चीज माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट है, इसको हम सूक्ष्म जीव परीक्षण कहते हैं, इसमें उत्पाद में हानिकारक बैक्टीरिया, फफूंद या अन्य सूक्ष्म जीव की जांच होती है कि वो तो नहीं पाए जा रहे हैं
1: जी।
0: फिर है स्टेबिलिटी टेस्ट, प्रकाश व आर्द्रता में उत्पाद की गुणवत्ता कितने समय तक बनी रहती है यह उसकी जांच करते हैं। इसी तरह से है त्वचा सुरक्षा परीक्षण, एक टेस्ट इसमें जो है जिसे हम पैच टेस्ट कहते हैं, जिसका आपने खुद एक बार प्रयोग किया कि हम थोड़ा सा लगा के पहले चेक करते हैं, तो पैच टेस्ट यही है, थोड़ा सा पदार्थ लेके हम अपने कान के पीछे हल्का से लगा लें और कुछ देर देख लें, अगर उससे मुझे कहीं एलर्जी हो रही है तो फिर उसका प्रयोग न करें, यही पैच टेस्ट कहलाता है। या कोई भी हम सौंदर्य प्रसाधन की चीजें उपयोग में ला रहे हैं तो इसको जरूर करें, पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। और अंत में एक टेस्ट है जिसे हम परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं, इससे हम यह जानना चाहते हैं कि हम जो चीज ले रहे हैं वो जो दावा कर रहा है उसमें वह पूरी तरह से सही उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है
1: जी। निसंदेही सौंदर्य प्रसाधन जो कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, और इसके पीछे का जो रसायन है वो उतना ही वृहद है, और ये हमारे जीवन को और हमारे त्वचा है और हमारे जो बाल हैं और हमारे जो बाहरी निखार है उसको ये बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और कुल मिलाकर इसके पीछे एक बहुत ही जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जो कि हमारे त्वचा को

0: हमारे बालों को सुरक्षित रखती है और हमें सुंदरता प्रदान करती है। डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और सौंदर्य प्रसाधनों के पीछे का रसायन शास्त्र क्या है इसके बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर शनीश कुमार ग्यांवाली का बांसुरी पर बजाया राग जोग।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शनीश कुमार ग्यावाली का बांसुरी पर बजाया राग जोग। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उदय शंकर मिश्रा। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार दिल्ली केंद्र सुनेंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेज़ी में।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का

0: स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया, जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 40 years.